मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून सन 2026। श्रोताओं, हम उपस्थित हैं आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। स्वीकार करें हमारा अभिवादन।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम

0: upcoming T20 international series against Ireland and England, the men's selection committee has named Prasidh Krishna as Siraj's replacement for both T20I series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। आरंभ करते हैं समूह स्वर में मातृ वंदना से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अनूप जलोटा और साथी की आवाज में पंडित किरण मिश्र की रचना।

इस भक्ति पद के साथ ही आज का सुप्रभातम संपन्न होता है। कृषि संकेत के अंतर्गत किसान भाई सुने मछली पालन हेतु सुझाव संबंधी जानकारी।

किसान भैलो मनई खेती बाड़ी त करते है, आजो एके साथे साथ मछली पाली जाए त निकही आमदनी प्राप्त कर सकी थे। बहुत मनई ऐसा हा जो की मछली पाल के निकही आमदनी ले रहे हैं। देखी मछली पालन बारिश में आधारित उद्योग आए या पूंजी या उत्पादन के एक ठे निकास स्रोत माना जाता है। मानसून आवे के बाद 15 जून से 15 अगस्त तक मछली बीज संचयन के निता निकास समय होता है।

0: मछली बीज क्षेत्र अपने यहाँ ज्यादातर पौड़ी मैहर के कार्य क्षेत्र में है। अपने रीवा संभाग के जो सतना जिला है ओके अंतर्गत मैहर पौड़ी का मछली पालन क्षेत्र के रूप में घाल जाना जात है। मछली पालन के नीता गर्मी ऋतु के बड़ा महात्म है। मछली पालन एक वर्षीय दुई वर्षीय आ बहुवर्षीय जलाशय में कीन जात है। पर कुछ तालाब ऐसा हो था जो की 6 महीना बाद पूरी तरह से सूख जाता, ता ऐसा तालाब में वैज्ञानिक नियमन का अपनाई के मछली पालन करे के चाही। एक नीता सबसे पहले जो 6 माही तालाब हो था जो की 6 महीना में सूख जाता, वह तालाब के निकाह से साफ सफाई करके चूना फेज मैनूरिंग गोबर की खाद छोड़े के चाहिए। अजू सांप के बिल हो था ओखा ताज दे दीमा का अन्य हानिप्रद स्थिति में नियंत्रण करे चाहिए। एका समान प्रक्रिया घाल कहा था। किसान भाइयों जऊ एक वर्षीय तालाब हो था ई फरवरी से मार्च अकि अप्रैल तक सूख जात, अया तालाब में मछली पालन निकाह तरीके से कीन जा सकत है। एक वर्षीय तालाब में अपने यहाँ मछली पालन ज्यादा से ज्यादा कीन जात है। ई तालाब राजस्व विभाग के नजूल भूमि के अंतर्गत आवा था आ ग्रामीण पंचायत से संबंध रखा था। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 10 वर्ष के पट्टा दई के लीज पर दीन जात है। बड़े तालाब के जितना उत्पादन क्षमता हो थी उतना उत्पादन क्षमता मौसमी एक वर्षीय तालाब के उत्पादन प्रतिशत लगभग समान हो थी। काहे से उत्पादन बढ़ावे वाली जो निकही मछली CRM है जैसन कतला रोहू वगैरह इनखर वजन एक वर्षीय माना जात है। कहे के मतलब यह आए कि इनका एक वर्ष में तालाब से निकाल के बाजार में बेच सकित है। तबई मछलियन का मेजर कार्य अकी महामत्स्य संघ में शामिल कीन गए है। इनमा स्वयं उर्वरा शक्ति निर्मित होती, यदि कीट पावा जाता है तो कीट नियंत्रण के प्रयोग कीन जा सकत है। सर्प उन्मूलन के निता मात्र चूना के प्रयोग कीन जाए चाहिए, दूसर केमिकल के उपयोग तो बिल्कुल न करी। किसान भाइलो दुई वर्षीय की बहुवर्षीय तालाबन में जल संचयन की स्थिति में मछली पालन के निता जल स्तर का ध्यान रखे का पड़ा है। एकर मतलब तापक्रम से है, काहे से कि अप्रैल मई में तापक्रम 40°C के लगभग होत है। यदि जल स्तर या मेर के है कि बढ़त तापक्रम के असर पड़ सकत है तब एक वर्षीय तालाब के नई स्थिति हो जाती। ऐसा स्थिति में फरवरी मार्च में मत्स्य खेत करा ली जाए। बहुवर्षीय तालाबन में ग्रीष्मकालीन वाहन व्यवस्था समान रहा थी। एलगल ब्लूमस खरपतवार यदि हो तो ओखर साफ सफाई नियमित रूप से कीन जाए चाहिए जौने मछली के उत्पादन में एकर असर न पड़े। आ यदि कौने मेर के जानकारी ले चाही थे तो मछली पालन विभाग से ले सकी थे। काहे से हुआ मछली पालन के नीता विधिवत जानकारी दीन जाती। इतने भर नहीं मछली पालन के नीता 7 से 15 दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण दे के हितग्राहीन का प्रशिक्षित कीन जात है। मछली पालन का बढ़ावा दे के नीता सरकार कैसे अनुदान राशि घाल दीन जाती। भाईलो मछली पालन समय बहुत कुछ सावधानी बरते का पड़त है। जैसन की जौने तालाब में मछली पाली जाए उमा घूर कचरा न डारे के चाहिए, ऐसन करे से पानी प्रदूषित हो जात है। आ पानी जब प्रदूषित हो जात है तब मछली के जीवन खतरे में पड़ जात है। बरसात के समय में किसान भाई खेते में कैयक मेर के कीटनाशक दवाइन के छिड़काव करा था। यदि तालाब के आसपास खेत हाँ ता जब तेज बारिश होती तो खेत के पानी बह के तालाब में मिल जात है, तो वह पानी में कीटनाशक के असर राहत है जो की मछली का हानि पहुँचावत है। यही से जहाँ ऐसा स्थिति हो वहाँ तालाब के चारी कैती के मेड़ का बांध दे के चाहिए जौने खेत के पानी तालाब में न जा पावे। ऐसा तालाब में जो उजार कचरा बह के चला जात है ओहू के साफ सफाई समय समय में करत रहा है जौने पानी प्रदूषित न हो पावे। बाजार में मछली के नीता पोषण आहार मिलत है, ओखा खरीद के दाना के छिड़काव तालाब में करे जौने मछलिन का उचित आहार मिलत रहा है।
1: मछली पालन हेतु सुझाव। अभी किसान भाई इस विषय में जानकारी सुन रहे थे। कार्यक्रम था कृषि संकेत। आकाशवाणी रीवा से प्रस्तुत है मानस गाना।

वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

0: अभी आप रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह का था। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में हम आपको बता रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। समाचार पत्रिका आज सवेरे का प्रसारण समय होगा 7:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी भोपाल से सुबह की सभा में 9:30 पर। जिले की चिट्ठी का समय होगा 10:00। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का लुत्फ लिया जा सकता है सुबह की सभा में 7:20 पर और 8:30 पर। इसमें आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष फिल्म संगीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकर
3: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घतमः निर्वाचितः प्रधानमंत्री अभवत्।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने

0: 20 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, विश्व के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हराया, अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 12 से 18 जून 2026 की अवधि में जिले के प्रत्येक विकासखंड, नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा की शिकायत पर यह कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने की है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जानकारी छिपाई गई थी, यह एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की बैठक भी होगी। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने फर्जी खातों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय, पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा और वसूली तंत्र, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्मों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में अधिक जवाबदेही और

0: अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सुझाव दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। रंगिरी दम्बुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से होगा। सभी मैच दम्बुल्ला में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर की शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की EKYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। देने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आरंभ करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में इस गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रोफेसर से। संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को हैं। समाचार पत्रिका आज सवेरे कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी।

0: सुप्रभात, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
1: गुड मॉर्निंग विशाल एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल वेलकम अलोंग, दिस इज आज सवेरे विथ मी शगुन चोपड़ा एंड विशाल शर्मा। वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ विच वी हैव लाइंड अप फॉर यू, वेरी इन्फॉर्मेटिव स्टफ विच इंक्लूड्स नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस। फर्स्ट आवर मेट्रो सिटी अपडेट्स, वील एक्सप्लोर अबाउट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड टुडे इट्स 10th of June 2026। वील ऑल्सो एक्सप्लोर टुडेज हिस्ट्री इन ग्रेट डिटेल एंड वील ऑल्सो टेल यू व्हाई 10th of June इज स्पेशल। So without any further delay, let's get started with the headlines, Vishal.
0: जी शगुन, सब शुरुआत प्रमुख समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।
1: A meeting of the National Democratic Alliance or NDA will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP including Prime Minister Modi are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories besides the leaders of all alliance constituents.
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने देश भर में परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों मंत्रालयों ने छात्रों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
1: The Ministry of Education has issued 3 letters of approval to 3 globally reputed foreign higher education institutions. These institutes are the University of Bristol, the University of York, and University of New South Wales. The letters of approval were handed over by University Grants Commission Chairperson Dr. Vineet Joshi in the presence of Union Minister for Education Dharmendra Pradhan. Speaking on the occasion, Mr. Pradhan said that the setting up of campuses by these universities in India marks a significant step in advancing the internationalization of education vision of NEP 2020. He said that these institutions will further strengthen quality education, global learning partnerships and research collaboration in India.
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। उन्होंने बताया कि वाराणसी आसानी से कनेक्ट उड़ानों के मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर है। उन्होंने इसे भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय हवाई संपर्क को महानगरों से आगे ले जाने के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
1: The National Highways Authority of India has introduced a series of technology-driven initiatives aimed at strengthening maintenance practices across national highways and expressways. So as part of the measure, National Highways Authority of India has issued comprehensive guidelines for mechanized maintenance of drainage systems in urban and built-up areas and deployment of advanced mechanized road maintenance equipment. And this includes automatic pothole filling and mechanized road sweeping machines as well. The Ministry of Road Transport and Highways said that these initiatives are aimed at

0: improving efficiency and quality of national highway maintenance through adoption of modern technologies, also preventive maintenance practices and stricter enforcement of contractual obligations.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने मार गिराया। ये स्पष्ट नहीं है कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार खतरे में रहेंगी।
0: Now on to sports, and this is about the achievement of Bengaluru Srishti Kiran, who has become the world's number one in under 13 tennis player after winning 5 straight ITF junior titles and finishing runner-up at the ITF World Tennis Tour Juniors J100 Guatemala. So this 13-year-old Srishti Kiran climbed to a career-high ITF junior ranking of 357, the highest among under-13 players globally. She achieved the feat despite competing in only 8 ranking events and 2 fewer than the maximum 10 tournaments which are used for ranking. How great! And this makes her ascend to the top of the under-13 rankings even more noteworthy. Srishti Kiran.
1: जी, जूनियर टेनिस में सृष्टि किरण की उपलब्धि के बाद बात क्रिकेट की। इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 और कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले दिल्ली।
0: Exactly. We can begin जी,
1: दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और 2 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के अनुसार मामले की जांच जारी है और अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की ओ जोन में बसी कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में कल एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण पर विध्वंस की कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने ओ जोन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि जो आदेश है वो नए चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने बताया है कि मानसून की तैयारियों के अंतर्गत नालों से गाद निकालने का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार गाद हटाने का उद्देश्य बरसात के मौसम में पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित करना, सड़कों पर जल भराव रोकना, यातायात जाम कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के मौसम के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के समग्र रखरखाव में सुधार करना है। प्राधिकरण ने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण होने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए DDA अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शेष कार्य इस महीने की 15 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के बाद अब वाणिज्यिक राजधानी देश की मुंबई की बात करते हैं। महाराष्ट्र का उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग सभी जिलों में 40 CET सेल छात्र सहायता केंद्र स्थापित करेगा, जो छात्रों को CET परीक्षा, प्रवेश, छात्रवृत्ति, करियर परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कल एक समीक्षा बैठक के बाद इसकी घोषणा की। इन 40 केंद्रों में से 26 पहले से ही काम कर रहे हैं, 6 लगभग तैयार हैं और 8 जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इन केंद्रों पर सेवाएं 10 जून 2026 से शुरू होंगी, जिससे छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शहर जाए बिना प्रतियोगी परीक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। बृहन्नी मुंबई नगर निगम बीएमसी ने चेंबूर के वाशीनाका में भूस्खलन से 400 से अधिक परिवारों को बचाने के लिए एक सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु 4,46,00,000 रुपए की मंजूरी दी है। ये दीवार मिट्टी, चट्टानों और मलबे को आसपास के घरों और सड़कों तक पहुंचने से रोकेगी, जिससे मानसून के मौसम से पहले सुरक्षा में सुधार होगा।

0: तो अब मानसून की भी बात हो गई, मौसम की भी बात हो गई। शगुन, अब बात कर लेते हैं आज 10 जून की तारीख के बारे में। आज की तारीख पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं, इस बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन आज विश्व नेत्रदान दिवस भी है।
1: Exactly. So we were telling our listeners that today it's a very special day. Today it's World Eye Donation Day. And there is a quote that I remember. What greater legacy can one leave behind than the gift of sight? How beautiful if we delve on that.
0: जी, मृत्यु के बाद अगर आंखें किसी दूसरे के जीवन में उजाला बन सकती हैं, ये इसको इसको इस बात का अगर हम एहसास करने से ही एक कितनी खुशी होती है कि अगर हम मृत्यु के बाद अपनी आंखों को दान दे जाएं और किसी के जीवन में उजाला हो जाए, इस प्रकृति को, इस दुनिया की सुंदरता को देख सके,
1: Witness the beauty of the world with their own eyes.
0: ये भावना ही अपने अंदर एक खुशी का संचार कर देती है।
1: Sure.
0: तो भारत ने, अगर हम नेत्रदान की बात करें, तो भारत ने इस दिशा में राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम और देश भर में स्थापित नेत्र बैंकों के माध्यम से महत्वपूर्ण पहल की है। फिर भी इन प्रयासों की सफलता जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी पर बहुत हद तक निर्भर करती है।
1: एंड विशाल, आई डोनेशन इज वन ऑफ द नोबलेस्ट एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट? नॉट मेरली अ मेडिकल प्रोसीजर। एंड इफ यू प्लेज योर आईज एंड इनफॉर्म आवर फैमिलीज अबाउट आवर डिसीजन, वी कैन एक्चुअली हेल्प ब्रिज द गैप between the need for corneal transplants and the availability of donor tissues as well. And this day serves as a reminder that a simple act, very simple act of generosity, it can transform lives, right? By restoring sight to those suffering from corneal blindness.
0: So, इस विश्व नेत्रदान दिवस पर आइए हम सभी भ्रांतियों को दूर करके जागरूकता को बढ़ावा दें और नेत्रदान का संकल्प लें, क्योंकि जीवन भले ही समाप्त हो जाए लेकिन दृष्टि का उपहार किसी और के जीवन को रोशन कर सकता रह सकता है।
1: Wow. And if you need more information, I'm talking to our listeners, for more information on eye donation and organ donation, citizens, they can contact the NOTO, NOTTO, toll-free helpline at 1-800-11-4770.
0: और अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो की टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-11-4770 पर संपर्क किया जा सकता है।
1: So pledge your eyes today and let your vision become someone else's tomorrow. It's the most noblest act, right?
0: जी, तो शगुन अब बताइए 10 जून की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास में दर्ज?
1: Well, we are taking our listeners way back in time. In 1752, Benjamin Franklin successfully conducted his historic kite experiment during a thunderstorm, and this demonstrated for the first time that lightning is a form of electricity.
0: 1890 में आज के दिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के श्रम नेता नारायण मेघाजी लोखंडे के प्रयासों के बाद कपड़ा मिल श्रमिकों के लिए पहली बार रविवार को साप्ताहिक अवकाश, वीकली हॉलीडे के रूप में घोषित किया था।
1: पीपल वेट फॉर
0: छुट्टी के नाम से कितनी खुशी आ जाती है चेहरे पर।
1: In 1907, the Lumiere brothers publicly introduced autochrome Lumiere in France, which became the world's first commercially successful and practical color photography technology.
0: 1935 में आज के दिन अमेरिका के एक्रोन, ओहियो में बिल विल्सन और डॉक्टर बॉब स्मिथ द्वारा शराब की लत से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना की गई थी।
1: Alcoholics Anonymous, right? In 1966, the state-owned Hindustan Aeronautics Limited successfully rolled out the design plans for manufacturing supersonic MiG fighter aircraft at its Nashik division.
0: जी, और 10 जून का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1986 में आज ही के दिन भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली बार टेस्ट मैच में जीत दर्ज की थी। लॉर्ड्स को शगुन क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, और वहां जीत दर्ज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: बिग अचीवमेंट।
0: कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 10 जून 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर यह इतिहास रचा था।
1: एंड इसरो in 2024 released images of solar activity captured earlier by Aditya L1's instruments. So the Aditya L1 mission was launched on 2nd of September 2023 and reached the Sun-Earth L1 point on 6th of January 2024.

0: इतिहास में दर्ज घटनाओं के बाद अब उल्लेख करते हैं उन व्यक्तित्वों का जिनकी आज जन्मतिथि है या आज के दिन जिनकी मृत्यु हुई थी, आज ही इनकी पुण्यतिथि है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन, उनका पूरा नाम जो है ओंकार नाथ धर था और फिल्मी पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को बड़ी संजीदगी से इन्होंने निभाया। वैसे तो अभिनेता जीवन ने अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी एक भूमिका ऐसी थी जिसमें दर्शकों ने उन्हें देखना हमेशा पसंद किया। देवर्षि नारद के रूप में उनकी द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। अभिनेता जीवन को दर्शकों ने नारद मुनि की भूमिका में काफी सराहा। नारायण नारायण बोलते जीवन ने देवर्षि नारद के उस पौराणिक पात्र को 60 से भी अधिक फिल्मों में पर्दे पर जीवंत किया था।
1: नारायण नारायण, मैं भक्त भी हूँ और कर्म योगी भी हूँ। मैं संसार के सामने ये साबित कर दूंगा कि भक्ति से एक अज्ञानी बालक भी भगवान को पा सकता है।
0: प्रमुख फिल्मों की बात करें तो दिल ने फिर याद किया, आबरू, हमराज, बंधन, तलाश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, हीर रांझा, फूल और पत्थर, बहुत फिल्मों में इन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। और धर्मवीर फिल्म से आइए सुनते हैं जीवन का एक और डायलॉग।
2: जब मेरे पिताजी ने राजपाट छीन कर मुझे धर्मदर कर दिया था, उस सब पाप का एहसास किसी को हुआ था? अब मेरा बेटा राजकुमार बनेगा और ये नवाब ज्यादा उसकी गुलामी करेगा। मेरे बेटे के सर पर मुकुट रखा जाएगा और ये नवाब के जूते साफ करेगा और मैं चैन की नींद सोऊंगा।
3: Wow, such an expressive voice it is. We were telling you about Jeevan. Listeners, today we are also remembering pioneering singer, songwriter and pianist Ray Charles. One of the most influential artists of all times, Charles pioneered the sound of soul music with his blend of R&B, jazz, blues, gospel. And in the 50s and 60s, Charles broke several glass ceilings as an artist, and he found crossover success on the pop charts as well. Charles won 18 Grammy Awards, and this includes a Lifetime Achievement Award and 5 posthumous awards as well. Let's listen to one of his creations, I Believe to My Soul.

0: आज ही पुण्यतिथि है जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अभिनेता गिरीश कर्नाड की। गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में ययाति, तुगलक, हायवदन, अंजु मलिग्गे, अग्निमतु माले, नागमंडल, अग्नि और बरखा बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे हैं इनके। गिरीश कर्नाड ने ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया था और ये काफी लोकप्रिय भी हुए इनके लिखे नाटक। नाटक तुगलक से गिरीश कर्नाड को बहुत ही प्रसिद्धि मिली और कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया।
1: वेल राइट, गिरीश कर्नाड, the prominent actor, playwright, scholar. His legacy as a playwright and actor, it continues to inspire generations of Indian artists, and whether it was his memorable roles in movies such as Nishant, Manthan, you were also telling about it. Well, his versatility as an actor and writer, it was unmatched.
0: So, aiye sunte hain Girish Karnad ki abhinit film ka ek dialogue.
1: Sure.
2: Aap meri shikayat darj karenge ki nahi? Koi gawahi hai? Kyon nahi? सारे गांव ने देखा है।
3: या को गांव वालों को गवाही को बुलाओ।
2: कृष्णराव, चलो तुम्हें गवाही देनी। सुनो, तुम गवाही नहीं दोगे तो मेरी शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा। यादगिरी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं दूसरे गांव का हूं, इसलिए मेरी मदद भी नहीं करोगे? ठीक है, नको करूं मदद। मैं तालुके थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगा, मैं कानून जानता हूं।
0: और गिरीश कर्नाड को मिले सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसके अलावा 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया, 1998 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जो माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी इनको दिया गया और 1998 में कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। और इसके अलावा गिरीश कर्नाड को कन्नड़ फिल्म संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है।
1: Wow, we are remembering Girish Karnad. Listeners, today we are also remembering Bhai Veer Singh, the poet, scholar and theologist of the Sikh revival movement, playing an important part in the renewal of Punjabi literary tradition. Well, very important figure of the Singh Sabha movement and is considered the father of modern Punjabi literature.
0: जी, भाई वीर सिंह की प्रसिद्धि कवि के रूप में अधिक है। राणा सूरत सिंह, लहरा देहार, प्रीत वीणा और कंब की कलाई, कंत महेली और साइया जियो इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। पंजाबी साहित्य और कविता लेखन के क्षेत्र में भाई वीर सिंह को उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और अब बात करते हैं जयंती और जन्मतिथि की। आज जन्मतिथि है, आज के दिन जन्म हुआ था MS गोपाल कृष्णन, जाने माने वायलिन वादक भारत के। गोपाल कृष्णन ने 7 दशक तक वायलिन के सुरों से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रेमियों को बांधे रखा था। इनके पिता भी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे और कुशल वायलिन वादक भी थे इनके पिता, और उन्हीं से उन्होंने सीखा भी। MS गोपाल कृष्णन को कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय और हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय दोनों का ही बहुत ही गहरी समझ थी।
1: And well, these two genres, they demand very different performance mindsets and practice, but MS Gopal Krishnan was remarkably fluent in both Carnatic and Hindustani classical music. He was presented with the Padma Bhushan in 2012 for his excellency in Indian classical music.
0: शगुन, बैडमिंटन की बात हो और प्रकाश पादुकोण का नाम ना हो तो बात पूरी भी नहीं होगी वो बात। और आज प्रकाश पादुकोण का जन्मदिन है और इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहा जाए बैडमिंटन में तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बैडमिंटन में कई महान एकल खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन भारतीय बैडमिंटन के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो प्रकाश पादुकोण ने किया। इन्होंने ही सबसे पहले ये दिखाया कि चीन के बैडमिंटन खिलाड़ियों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है।
1: How great. Well, he has inspired generations and he became the first Indian to win the prestigious All England Open Badminton Championship in 1980. Well, he's co-founder of the Olympic Gold Quest, the former world number one, revolutionized Indian sports and inspired generations.
0: जी, और इन्होंने लगभग 15 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते 1980 से तथा 1981 में विश्व रैंकिंग में भी ये पहले स्थान पर रहे और 1972 में प्रकाश पादुकोण को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: Well, today it's also playback singer, pop singer and music composer Roop Kumar Rathore's birthday. He has performed a number of songs, Hindi, Gujarati, you talk about Marathi, Tamil, other languages as well, Kannada even.
0: फिल्म बॉर्डर का जो गाना इन्होंने गाया संदेशे आते हैं, ये इसने राठौर के करियर को, रूप कुमार राठौर के करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा।

0: तो आज सवेरे में बस इतना ही, हमें आपसे यहीं अनुमति लेनी होगी। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं और आज सवेरे कार्यक्रम अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in। नमस्कार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के

0: नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा।

0: सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 225,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी'स ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
6: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over three consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress. During this period, India has strengthened its position as the world's fastest-growing major economy, concluded major trade agreements with leading economies and emerged as a more influential voice on global issues, including development, technology, climate action, and the priorities of the global south. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister of the country. We have a report.
7: World leaders have hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anuradha Kumar Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. He also highlighted India's remarkable economic and social transformation and noted that Prime Minister Modi's vision has inspired many beyond India's borders, including Sri Lanka. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in a personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership.
8: Hello and greetings from Papua New Guinea to my friend Prime Minister Modi. Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving Prime Minister of India. India remains a friend of Papua New Guinea. You personally have come here. I give respect to you as a senior leader of the Global South, and I am happy that you have now a whole record as the longest serving Prime Minister of India.
7: Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, also highlighted Prime Minister Modi's journey from humble beginnings to leading a nation of 1.4 billion people across three terms and underscored India's significant achievements in foreign policy, economic growth, infrastructure and socio-economic development. With Anupam and Rishu's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. Our correspondent has more details on the meeting.
9: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, अभी यानी दो दिन पहले 8 जून सन 2026 को आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक बधाई। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सत्येंद्र सेंगर। श्रोताओं, कहते हैं कि आवाज की कोई दीवार नहीं होती,

वो हवाओं पर सवार होकर सीधे दिल तक पहुंच जाती है। यही काम पिछले 9 दशकों से आकाशवाणी करती आ रही है। पीढ़ियां बदल गईं, तकनीक बदल गई, मनोरंजन के साधन बदल गए, लेकिन रेडियो की आत्मीयता आज भी वैसी ही है। भारतीय सिनेमा और रेडियो का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है जैसे सुर और संगीत का। फिल्मों के गीत जब पुराने समय में रेडियो तरंगों पर गूंजते थे, तब लाखों श्रोता उन्हें सुनकर गुनगुनाने लगते थे। किसी नई फिल्म की सफलता का रास्ता अक्सर रेडियो से होकर ही गुजरता था। गीत जो लोकप्रिय होते, लोग उन्हें याद करते और फिर उन्हीं गीतों के आकर्षण में सिनेमा घरों तक पहुंच जाते थे। यही वजह है कि फिल्म जगत ने भी रेडियो को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया, और इसका सिर्फ एक कारण था, और वो था रेडियो की लोकप्रियता। कई फिल्मों में रेडियो उद्घोषक, रेडियो स्टेशन और रेडियो का स्टूडियो महत्वपूर्ण पात्रों की तरह उपस्थित रहे। अनेक गीत तो आकाशवाणी के स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए थे, क्योंकि उस दौर में रेडियो ही लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रतीक था। यानी एक बात स्पष्ट है, भारतीय सिनेमा और आकाशवाणी का रिश्ता केवल प्रसारण का नहीं बल्कि सृजन और संवेदना का भी रहा है। वर्ष 1949 में प्रदर्शित फिल्म सुनहरे दिन का लोकप्रिय गीत मीत सब झूठे पड़ गए, जिसे मुकेश और शमशाद बेगम ने स्वर दिया था, आकाशवाणी के स्टूडियो में फिल्माया गया था। इस गीत के रचनाकार थे गीतकार D.N. मधोक और संगीत दिया था ज्ञान दत्त ने। यह तथ्य बताता है कि रेडियो केवल गीतों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम ही नहीं था, बल्कि वो भारतीय फिल्म संगीत की सांस्कृतिक यात्रा का एक जीवंत उपाध्याय भी रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर जब हम रेडियो और फिल्म संगीत के स्वर्णिम संबंध को याद कर रहे हैं, तो आइए बढ़ते हैं उस गीत की ओर जो केवल एक फिल्मी गीत भर नहीं है बल्कि भारतीय संगीत की विरासत का एक अमर दस्तावेज है। यह है वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म बरसात की रात का ऐतिहासिक गीत, बल्कि इसे कव्वाली कहना ज्यादा सही होगा, जो अपने शब्दों, सुरों और प्रस्तुति के वैभव के लिए आज भी बेजोड़ मानी जाती है। गीतकार साहिर लुधियानवी के कालजयी शब्द, संगीतकार रोशन का अनुपम संगीत और महान गायक मोहम्मद रफी सहित अनेक स्वरों का संगम इस रचना को अद्वितीय बना देता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कव्वाली जो समय की सीमाओं से परे जाकर आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उसी शान से गूंज रही है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में रेडियो ने न केवल गीत संगीत का प्रसारण ही किया, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, भावनाओं और स्मृतियों को भी स्वर दिया है। हिंदी सिनेमा ने भी समय समय पर रेडियो की इसी महत्ता को अपनी कहानियों में सहेजा है। वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म अनुराधा इसका एक अत्यंत मार्मिक उदाहरण है। इस फिल्म में रेडियो केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि नायिका अनुराधा के जीवन का आईना बनकर उभरता है। ऑल इंडिया रेडियो पर गूंजती उसकी पुरानी आवाज उसे उस पहचान, उस सम्मान और उस सपनों की याद दिलाती है जिन्हें उसने परिवार और दाम्पत्य जीवन के लिए पीछे छोड़ दिया था। रेडियो यहां अतीत के गौरव, वर्तमान के त्याग और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु बन जाता है। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी हमें ये बताती है कि भारतीय जनजीवन में रेडियो हमेशा मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि भावनाओं का सबसे आत्मीय साथी रहा है। इसकी तरंगों ने न जाने कितनी प्रतिभाओं को घर घर पहुंचाया और अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। इन्हीं स्मृतियों और सुरों की कड़ी में अब सुनते हैं वर्ष 1964 की चर्चित फिल्म चा चा चा का एक सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की मखमली आवाज में। यह गीत आज भी उतना ही ताजा और मधुर लगता है जितना अपने समय में था। तो आइए सुनते हैं ये मनभावन नगमा और महसूस करते हैं उस दौर की संगीतमयी धड़कनों को जिन्हें रेडियो ने पीढ़ियों तक संजो कर रखा है।

श्रोताओं, ये केवल एक मधुर फिल्मी गीत नहीं बल्कि उस दौर की एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसमें रेडियो जीवन बदलने वाली शक्ति के रूप में सामने आता है। फिल्म चाचा चा में पूरन का संघर्ष, उसका आत्मसम्मान और फिर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश भर में लोकप्रिय गायक बन जाना इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा किसी जाति, वर्ग या सामाजिक बंधनों की मोहताज नहीं।

0: होती। रेडियो ने उसे केवल पहचान ही नहीं दी बल्कि समाज के सामने उसकी वास्तविक क्षमता को स्थापित किया। फिल्म के अंतिम पड़ाव पर जब लल्ली रेडियो पर पूरन की गूंजती हुई आवाज सुनती है तब उसे एहसास होता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र, उसका संघर्ष, उसकी प्रतिभा होती है, न कि उसका जन्म या सामाजिक दर्जा। इस प्रकार रेडियो इस कहानी में सफलता, स्वाभिमान और सामाजिक चेतना का सशक्त प्रतीक बनकर उभरता है। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को स्मरण करते हुए ये प्रसंग हमें बताता है कि रेडियो केवल ध्वनि का माध्यम नहीं है बल्कि सपनों को उड़ान देने वाला वो मंच है जिसने अनगिनत प्रतिभाओं को घर घर तक पहुंचाया है। इसी भावना के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सुरों और यादों का ये खूबसूरत कारवां अभी जारी है।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरव गाथा को स्मरण करते हुए आज हम उन फिल्मों को भी याद कर रहे हैं जिनकी कहानियों में रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि कथा का एक महत्वपूर्ण पात्र बनकर उपस्थित हुआ था। वर्ष 1964 में प्रदर्शित फिल्म दूल्हा दुल्हन इसका सुंदर उदाहरण है। इस फिल्म में राज कपूर द्वारा अभिनीत नायक राजकुमार एक आकाशवाणी का गायक है। उसकी पहचान, उसका संघर्ष, उसकी आजीविका और उसके जीवन की प्रेम कथा सब कुछ रेडियो से जुड़ा हुआ है। उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और वही आवाज उसे लोगों के दिलों तक पहुंचाती है। फिल्म ये भी बताती है कि रेडियो केवल गीतों का मंच नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का सेतु भी है। कभी कोई आवाज किसी अजनबी को अपना बना देती है तो कभी कोई गीत बिछड़े हुए एहसासों को फिर से जीवित कर देता है। यही वो जादू है जिसने रेडियो को 9 दशकों तक श्रोताओं का सबसे आत्मीय साथी बनाए रखा है। तो अब प्रस्तुत है फिल्म दूल्हा दुल्हन का एक अत्यंत भावपूर्ण और लोकप्रिय गीत मुकेश की दर्द भरी भीगी आवाज में। शैलेंद्र के हृदयस्पर्शी बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी के मधुर संगीत से सजा ये गीत प्रेम की गहराई और समर्पण का अद्भुत दस्तावेज है। तो आइए सुनते हैं मुकेश का

मरस्वर, हमने तुझको प्यार किया है जितना, और महसूस करते हैं उस युग की संवेदनाओं को जिन्हें रेडियो ने घर घर तक पहुंचाकर अमर बना दिया।

श्रोताओं, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों को नमन करते हुए हम सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये सुनहरा सफर। 1965 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म फरार में रेडियो एक बेहद चालाकी भरी कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया बनता है। इस फिल्म में हेमंत कुमार का संगीत था और कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें अनिल चटर्जी मुख्य संदिग्ध बन जाते हैं। फिल्म में रेडियो का उपयोग पूरी मिस्ट्री को सुलझाने और सस्पेंस पैदा करने के लिए किया गया है। खास बात यह है कि रेडियो हत्या के वक्त का मुख्य सबूत बन जाता है। फिल्म की मिस्ट्री में जब शेखर की उसके अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तब पुलिस जांच शुरू करती है और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हत्या किस सटीक समय पर हुई है। यहां यह दिखाया जाता है कि रेडियो कमरे में चल रहा है और रेडियो और उस पर प्रसारित होने वाला कोई खास कार्यक्रम ही का गाना पुलिस को क्राइम का सटीक समय स्थापित करने में मदद करता है। संदिग्ध

छात्र ये दावा करते हैं कि वो उस वक्त वहां नहीं थे, पर रेडियो पर उस समय प्रसारित होते ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट उनके झूठ और सच का पर्दाफाश कर देता है। हेमंत कुमार द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर और रेडियो से आने वाली आवाजों को डर और रहस्य का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। पड़ोसी गोली की आवाज सुनते हैं और उस दौरान रेडियो पर एक न्यूज चलती होती है और इससे सटीक टाइम का पता चल जाता है कि उस न्यूज के प्रसारण का समय क्या है। जब भी कोई किरदार किसी गहरे संकट में होता तो कमरे में बजता हुआ रेडियो उस तनाव को दुगना कर देता था। इसी तरह एक और फिल्म आई थी जिसमें एक गीत नायिका को रेडियो के स्टूडियो में गाते हुए दिखाया जाता है। यह थी 1969 में आई फिल्म खामोशी, जिसका गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत तैयार किया था हेमंत कुमार ने। बोल थे, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। आकाशवाणी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए इस गीत से कहानी के भावनात्मक वातावरण और संगीत की प्रस्तुति में रेडियो की उपस्थिति महत्वपूर्ण रूप से महसूस की जा सकती है। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू जैसे अमर गीत रेडियो पर अत्यंत लोकप्रिय हुए। इन गीतों ने फिल्म के प्रदर्शन से पहले और बाद में श्रोताओं के बीच एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव बनाया कि खामोशी की पहचान उसके संगीत से भी होने लगी। यहां रेडियो यानी आकाशवाणी कहानी का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं था, लेकिन स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए फिल्म के गीत ने आकाशवाणी के माध्यम से घर घर पहुंचकर फिल्म की संवेदनशीलता और लोकप्रियता को कई गुना बढ़ाया। रेडियो ने भी इस फिल्म की भावनाओं को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो आइए सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये गीत।

यही तो जादू है फिल्म संगीत का। समय बीत जाता है लेकिन अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते। रेडियो ने पुराने समय से आज तक ऐसे अनगिनत गीतों को केवल सुनाया ही नहीं बल्कि उन्हें लोगों की स्मृतियों का हिस्सा बना दिया। एक समय था जब किसी फिल्म का गीत रेडियो पर बजना ही उसकी लोकप्रियता की पहली सीढ़ी माना जाता था। लोग ट्रांजिस्टर लेकर बैठ जाते, गीतों की फरमाइशें भेजते और अपने पसंदीदा गानों का इंतजार करते। उस समय से लेकर आज तक रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा है, वो भावनाओं का सेतु भी बना। फिल्मों की कहानियों में रेडियो सपनों, पहचान और सफलता का प्रतीक बनकर भी उभरा। ऐसी ही एक यादगार फिल्म है वर्ष 1973 की, अभिमान। जी हां, इस फिल्म की कहानी एक लोकप्रिय गायक सुबीर कुमार और उसकी प्रतिभाशाली पत्नी उमा के इर्द गिर्द घूमती है। सुबीर पहले से स्थापित कलाकार है जिसके गीत रेडियो पर खूब सुने और सराहे जाते हैं। विवाह के बाद जब उमा की मधुर आवाज भी मंचों और रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो वो अपने पति से अधिक लोकप्रिय हो जाती है। रेडियो पर गूंजती उसकी सफलता धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में अहम, ईर्ष्या और भावनात्मक दूरी का कारण बन जाती है। इस प्रकार अभिमान में रेडियो केवल गीतों के प्रसारण का माध्यम नहीं बल्कि कलाकार की पहचान, लोकप्रियता और उसके मनोवैज्ञानिक संघर्षों का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आता है। रेडियो की तरंगों पर मिली प्रसिद्धि कैसे रिश्तों की परीक्षा ले सकती है, यह फिल्म बड़े संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। इन्हीं भावनाओं से जुड़ा फिल्म का एक अत्यंत मार्मिक गीत स्वर है लता मंगेशकर का, संगीत एसडी वर्मन का और शब्द हैं मजरूह सुल्तानपुरी के। विरह, अकेलेपन और मन की व्यथा को बड़ी कोमलता से व्यक्त करता हुआ यह गीत आज भी श्रोताओं के हृदय को छू लेता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान का वो अमर गीत, एक ऐसा गीत जिसकी संवेदना रेडियो की तरंगों पर आज भी ताजा महसूस होती है उतनी ही जितनी 5 दशक पहले होती थी।

Na sunsani. Na utejna. Na shor din ra. केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला मधुर गीत जो अपने दौर में रेडियो श्रोताओं की पहली पसंद रहा। जी हां, ये गीत है फिल्म अनुरोध का, जिसका नायक रेडियो सिंगर है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए आज हम उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी कहानियों में रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि कथा के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में उपस्थित रहा है। वर्ष 1977 में प्रदर्शित फिल्म अनुरोध इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिल्म का नायक अरुण चावला, जिसे राजेश खन्ना ने निभाया है, एक प्रतिभाशाली गायक है। उसकी आवाज रेडियो के माध्यम से लाखों श्रोताओं तक पहुंचती है और वो एक लोकप्रिय रेडियो तथा मंच गायक के रूप में अपनी पहचान बनाता है। फिल्म की कहानी में रेडियो उसकी प्रसिद्धि, उसके संघर्ष और उसके प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बन के उभरता है। उसकी गायकी रेडियो की तरंगों के सहारे लोगों के दिलों तक पहुंचती है और यही उसकी सफलता की पहचान बनती है। दरअसल उस दौर में रेडियो कलाकार और श्रोता के बीच सबसे मजबूत सेतु था। कोई गीत जब आकाशवाणी पर गूंजता था तो वो केवल संगीत नहीं रहता था बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन जाता था। फिल्म अनुरोध की कहानी भी इसी सच्चाई को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है और अब प्रस्तुत है इसी फिल्म का एक सदाबहार मधुर और बेहद लोकप्रिय गीत। गीतकार आनंद बख्शी के भावपूर्ण शब्द, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कर्णप्रिय संगीत और किशोर कुमार की जादुई आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया है। फिल्मी पर्दे पर इसे राजेश खन्ना और सिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया है। तो आइए सुनते हैं फिल्म अनुरोध का वो गीत जिसने रेडियो की तरंगों पर गूंज कर करोड़ों श्रोताओं के दिलों में स्थायी स्थान बनाया।

श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों के पूरा होने के अवसर पर हम उन फिल्मों को याद कर रहे हैं जिनकी कहानियों में रेडियो केवल एक यंत्र नहीं बल्कि फिल्म की कहानी में हिस्सेदारी निभाने वाला एक प्रमुख घटक है। वर्ष 1998 में प्रदर्शित फिल्म दिल से में रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिल्म का नायक अमर वर्मा, जिसे शाहरुख खान ने निभाया है, ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और रेडियो पत्रकार है। उसका काम देश के दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों की आवाज, उनकी समस्याओं और उनकी भावनाओं को रेडियो के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। कहानी की शुरुआत भी एक रेडियो असाइनमेंट से होती है। पूर्वोत्तर भारत में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर कार्यक्रम बनाने के दौरान अमर की मुलाकात एक रहस्यमयी युवती मेघना से होती है। यही मुलाकात आगे चलकर प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और बलिदान की एक असाधारण कहानी में बदल जाती है। इस फिल्म में रेडियो केवल अमर का पेशा नहीं है बल्कि वो माध्यम है जो उसे देश की धड़कनों और मेघना के दर्द से जोड़ता है। और अब प्रस्तुत है इसी फिल्म का ये भावपूर्ण गीत। गीतकाल गुलजार के संवेदनशील शब्द, एआर रहमान का सम्मोहक संगीत और उदित नारायण की आत्मीय आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया है। ये गीत उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो दूरी के बावजूद दिल में जीवित रहता है, जो बिछड़कर भी साथ चलता है। तो आइए रेडियो की तरंगों पर बहती भावनाओं के साथ सुनते हैं फिल्म दिल से का ये कालजयी गीत। ए अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से। एक ऐसा गीत जिसमें प्रतीक्षा है, तड़प है, प्रेम है और उस अनदेखे रिश्ते की अनुगूंज है जो सीधे दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है।

श्रोताओं, बदलते समय के साथ रेडियो का स्वरूप भले बदला हो, लेकिन उसकी आत्मीयता और प्रभाव कभी कम नहीं हुए। वर्ष 2003 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई MBBS में भी रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में दिखाई देता है। फिल्म के कई प्रसंगों में रेडियो रेडियो पर प्रसारित होने वाले गीत पात्रों की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। विशेष रूप से अस्पताल के वातावरण में संगीत और रेडियो लोगों के जीवन में उम्मीद, मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह मुन्ना भाई अपने अनोखे अंदाज में लोगों के दिलों का इलाज करता है, उसी तरह रेडियो भी वर्षों से लोगों के मन को सुकून और खुशी देता आया है। इस फिल्म का संगीत भी इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बना। संगीतकार अनु मलिक की मधुर धुनों ने इसे सजाया। गीतकार राहत इंदौरी ने शब्दों के भावनाओं के रंग भरे और अब प्रस्तुत है इस फिल्म का वो गीत जो दिल को छूता है। सोनू निगम और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में सजाइए गीत दोस्ती, अपनत्व और खुशियों के महत्व को खूबसूरती से व्यक्त करता है।

0: सीख ले।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत और रेडियो का ये साथ आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को हमारा सादर नमन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने सबसे आत्मीय साथी आकाशवाणी के साथ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: क्षेत्रीय समाचार एकांश
1: सुर्खियों में।
2: नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की यात्रा और विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की बढ़ती भूमिका पर। पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण, कृषि, उद्योग, स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे हैं। इन राष्ट्रीय पहलों का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
3: धन्यवाद दीपा जी।
2: और हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर।
4: नमस्कार।
2: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजय सर, पहला सवाल आपसे है, हम जानना चाहेंगे कि एनडीए सरकार के 12 वर्षों को आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, एनडीए सरकार के जो 12 वर्ष हैं और मध्य प्रदेश का जो विकास, ये दोनों लगभग एक साथ चल रहे हैं
2: जी।
3: और मेरे ख्याल से ये 1 और 1 11 वाली स्थिति ज्यादा है
2: जी,
3: क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी कई करीब 115 योजनाएं कल्याणकारी तो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है
2: जी जी।
3: और लगभग 1 दर्जन के आसपास जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के विकास में अपने ढंग से योगदान दे रही हैं। मेरे ख्याल से जो ये योजना जो केंद्र सरकार की है, खासतौर पर मैं उनका जिक्र करूंगा, ये 5 अलग अलग तरह की हैं। तो कृषि और कृषि किसान कल्याण की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाएं हैं, बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजनाएं हैं, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाएं हैं और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं
2: जी।
3: तो इनमें जो मध्य प्रदेश में काम हो रहा है अलग अलग तरीके से, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। और खास करके जो किसानों की योजनाएं हैं उसके अंदर तो ये है कि केंद्र सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से एक थोड़ा योगदान उसमें दे रही है, तो किसानों को इसका दोहरा लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो मध्य प्रदेश का जो तेजी से विकास पिछले कुछ सालों में लगातार देखने को मिल रहा है, उसके पीछे ये है कि जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो उसी तरह से ये डबल डिब्बे जो हैं योजना के, मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश को।
2: अक्षय जी, आपकी दृष्टि में इन वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं?
4: सबसे पहले तो 12 साल में जो हमने परिवर्तन इसमें महसूस किया है मोदी जी के 12 साल पूर्ण होने पे, कि उनकी जो नीति रही है वो हमेशा से राष्ट्र प्रथम की नीति पे वो चले हैं कि मेरा देश सबसे पहले। और उसको अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, जैसे कि आज की अपने चर्चा का विषय है, तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ने अपने आप अपने विकास को अपने प्रगति को सबसे आगे रखते हुए और मोदी जी के कार्यकाल में अपने आप को सबसे तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहले वो शिवराज सिंह जी की सरकार रही और अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। इसमें दोनों ही, और जैसे अभी डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी और कई जगह तो लगभग ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी है, कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इस समय तो जनता की भी अपेक्षा है और शासन तंत्र भी उस तरह का है कि आपको विकास की गति जो है वो सबसे अधिक होनी चाहिए। और इसमें से जो सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा कि आपका प्रश्न था कि इन 12 वर्षों में हम जो देख रहे हैं जो हुआ है, पहला तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वाला का उल्लेख करना चाहूँगा। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का जो बहुत लंबे समय से अपेक्षित था, उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, फिर राज्य अनुकूल राज्य सरकारें हुई, केंद्र की सरकार हुई, तो उन्होंने सबने आपस में बैठ के समझौता किया और उस पर हम आगे बढ़े हैं। हाईवे एक्सपेंशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से हम उस पर काम किया है। बहुत सारे एक्सप्रेसवेज मध्य प्रदेश में बनने शुरू हो गए हैं और वो केंद्र सरकार के मदद से ही उसमें हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। इसके अलावा रेलवे को लेकर काफ़ी बड़ा एक मॉडर्नाइजेशन कैंपेन पूरे देश भर में चला है। इसमें भोपाल से दिल्ली, इंदौर, नागपुर इस तरफ का पूरा जो, और वंदे भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इससे नेटवर्किंग में रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क, इन दोनों ने बहुत बड़ी उसमें हमें मदद करी है। एविएशन के सेक्टर में भी कई नए हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स खुले हैं। उस अभी कई वर्षों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पीएमसी हेली सर्विसेज, हेली पर्यटन सेवा शुरू, जिन्होंने धार्मिक केंद्रों को जोड़ने का प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मध्य प्रदेश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभा।
3: एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा मैं, कि मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी ये केवल मध्य प्रदेश को नहीं जोड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में बसा हुआ है तो हम अपने साथ और कई राज्यों को भी जोड़ते हैं। तो मतलब ये जो क्रॉस कनेक्शन है राज्यों का, ये भी अपने आप बढ़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे ख्याल से, कि हम केवल अपना ही विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने साथ दूसरे राज्यों को भी लेके चल रहे हैं।
4: एज ए कैटलिस्ट के रूप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हृदय प्रदेश में केंद्रित हैं, तो हम एक कैटलिस्ट के रूप में पूरे देश के विकास में कैटलिस्ट के रूप में।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, निश्चित तौर पर हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अजय सर, विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है और कहा है कि हम को प्रगति करनी है ताकि हम विकसित हो जाएं 2047 तक, जो अभी तक प्रगति हुई है उस दिशा में, आप उसे कैसे देखते हैं?
3: देखिए, जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है
2: जी।
3: 2047 का मतलब ये कि भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे
2: जी।
3: तो 100 साल में भारत को दुनिया के 4-5 जो विकसित देश हैं उसकी पंक्ति में लाना, उसका मतलब ये है कि हमारा सामाजिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, हमारा जो है वो आर्थिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, स्वास्थ्य भी है इसके अंदर, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, तो तमाम इन सारे पहलुओं को लेकर के और उस स्थिति में आए कि हम एक देश सुखी और समृद्ध देश, जिसके बारे में कह सकते हैं कि जहाँ पर रहने की जीने की जो श्रेष्ठतम सुविधाएं वहाँ पर हों, भारत उस श्रेणी में आए जैसे कि कुछ दुनिया के देश 4-5 इसमें गिने जाते हैं, तो वो बड़ा लक्ष्य है। एकदम ये हासिल करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि उस दिशा में ये धीरे धीरे लगातार देश आगे बढ़ रहा है और उसी चूंकि बड़ा टारगेट है
2: जी।
3: तो

0: संसाधन भी उतने ही चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो सरकार के पास जितने संसाधन है उसके हिसाब से जो कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत करने की कोशिश कर रहा है और मध्य प्रदेश का उसमें योगदान है, तो हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इसी गति से काम होता रहा तो मेरे ख्याल से वो लक्ष्य प्राप्त करना कोई असंभव नहीं है।
1: सही कह रहे हैं सर। अक्षय सर, युवाओं की भूमिका आप कैसे देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है इन सब में युवाओं की भूमिका?
2: सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी का सबसे ज़्यादा फोकस उनके ऊपर रहता है और वो हमारे जो डिविडेंड, यूथ डिविडेंड की बात करते हैं कई बार, इस तरह की हमारे पास सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हमारे पास
1: जी,
2: में
1: जी,
2: तो उसको लेकर ही जो डिजिटल इंडिया का उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया है, ये युवाओं को केंद्र में रख के किया है क्योंकि वो युवा शक्ति ही इसके पीछे ऊर्जा है। इसके कारण से हम अपने देश में भी रोजगार भी सृजन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके उस रोजगार के आधार पर हम अपने देश को एक प्रगति के पथ पर, जिस 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम कल्पना कर रहे हैं भारत की, उसकी यदि दिशा में हमें बढ़ना है तो युवाओं को सबसे पहले शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा वो निश्चित रूप से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया का वाला जो कैंपेन है पूरा, उनको जनधन योजना के माध्यम से रोजगार के, उद्योग के अवसर प्रदान करने वाले जो कदम है, निश्चित रूप से उनको सशक्त करें, युवाओं को सशक्त करेंगे और वो देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे।
1: बिल्कुल, वाकई तो कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में। अजय सर, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका मध्य प्रदेश पर क्या असर देख रहे हैं आप?
0: देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि चूंकि 11 योजनाएं जो मेरी जानकारी में हैं, वो उसका लाभ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मिल रहा है। अगर हम उसे अगर मोटे तो एक मोटा मोटी बात हम बात देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों को सीधे आर्थिक सहायता सालाना जो है 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती है, तो इससे ही मध्य प्रदेश में करीबन 81 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान की जो आय है वो फसलों पर निर्भर करती है, उसको पहले लगाना पड़ता है, फिर फसल आती बेचता है तो पैसे उसके हाथ में आते हैं। लेकिन इस फसल आने के बीच के दौर में जो है हाथ खर्चे के लिए पैसे कई बार उनको दिक्कत आती है, तो ये जो पैसा है भले ही ये राशि उतनी बड़ी ना हो लेकिन ये भी उनके लिए बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल।
0: और खास बात यह है कि केंद्र सरकार तो दे ही रही है 4,000 रुपये जो है वो मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें ऐड कर रही है, तो जो 6,000 रुपये सरकार दे रही है केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो है किसान कल्याण योजना के तहत जो है उस 4,000 और दे रही है, तो किसान तक 10,000 रुपये सालाना जो है ये नकद राशि पहुंच रही है। तो मेरे ख्याल से किसान, खासकर जो गरीब किसान परिवार छोटे किसान हैं, उनके लिए 10,000 रुपये की राशि बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो फसल बीमा योजना है, अभी तक तो ये था कि पहले फसलें उजड़ जाती थी, ख़त्म हो जाती थी मौसम के कारण, आगजनी के कारण या किसी और कारण से भी, तो किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता था। तो कम से कम फसल बीमा योजना से इतनी राहत तो है कि उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मध्य प्रदेश में भी इससे करीबन 14 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, और अभी तक जो जब से ये योजना चल रही है करीबन 13-26 करोड़ से ज़्यादा पैसा बांटा जा चुका है किसानों को, तो ये किसानों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक और बड़ी योजना आयुष्मान भारत वाली है
1: जी, जी,
0: क्योंकि भोजन के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य, और ये सभी के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है। तो गरीब परिवारों को जो है वो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराना मुफ्त में, ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती है। तो और इसमें अलग 70 के ऊपर तो सरकार ने जो है 5 लाख का टॉपअप भी दे रखा है, तो सभी के लिए है 5 लाख तक, बाकी का जो है वो तो खैर फिर भी एक निश्चित आय वर्ग के लिए है, लेकिन 70 के ऊपर सभी के लिए है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सौगात है और ये सरकार की संवेदनशीलता को जाहिर करती है कि भाई लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंता है और उनको मुफ्त में या बहुत कम पैसे में इलाज कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये उसका है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अपने प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है, उसके अंदर जो है वो सरकार बहुत नाम मात्र के प्रीमियम पर जो है वो 18 से 50 साल के लोगों का बीमा करती है
1: जी जी।
0: और जब भी मुसीबत में आए तो उसको जो है 2 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। तो ऐसी अलग अलग कई योजनाएं हैं, तो उसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो वेलफेयर स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी सरकार जो कहते हैं, वो उसको कैसे काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये उसका उदाहरण है।
1: बिल्कुल बहुत सही कहा आपने सर। अक्षय सर, निवेश और उद्योग की बात करते हैं तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, किस तरह से हम लोग एमएसएमई स्टार्टअप इन सब में आगे बढ़ रहे हैं?
2: जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा

0: उसमें उनको अच्छा प्रतिसाद भी मिला है,
1: जी
0: कई
1: जी
0: बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी किया है और केंद्र सरकार ने भी उसमें बहुत अपनी भूमिका निभाई है। एक आपने देखा होगा कि रीवा में एक अल्ट्रा मेगा सोलर
1: सोलर
0: पावर
1: प्लांट लगाया
0: प्लांट
1: गया।
0: लगाया गया, 750 मेगावाट का लगाया गया है। तो उसमें वो उसके शायद एशिया के प्रमुख सोलर प्लांट्स में उसकी गिनती होती
1: बिल्कुल
0: है। तो उसने हमें वैश्विक मानचित्र पे अपने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का एक मौका प्रदान किया है। ये सब इस तरह के जो प्रकल्प हैं वो सारे मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर भी है और एसएमई सेक्टर है, इन सबको एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उनको शक्ति प्रदान कर रहा है। और सरकार ने जितनी अपनी योजनाओं में उनको सहूलियत देने का प्रयास किया है, अपने उनको जमीन आवंटन के लिए है, उनको बिजली आवंटन के लिए है, पानी है और कुछ सब्सिडीज़ हैं,
1: बिल्कुल
0: तरह तरह की सब्सिडीज़ नए उद्योग लगाने के लिए दी जाती हैं। फिर वो हर क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर में हो या उसमें फ्लोरिकल्चर में हो या दूसरे किसी उद्योग में लगाना चाहते हो, युवाओं को उसके लिए प्रोत्साहित किया है। तो एक ऐसा वातावरण बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि इसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों को, देश के और विदेश के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आके उद्योग लगाने में सहूलियत मिले।
1: बिल्कुल कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास के अनुकूल पूरा वातावरण प्रदेश में बनाया गया है, ताकि जो बाहर उद्योगपति हैं वो हमारे यहाँ आए तो उनको हर तरह की फैसिलिटीज दी जा सके। सर, डिजिटल इंडिया अभियान का देखा जाए तो मध्य प्रदेश पे वोकिल सर क्या असर पड़ रहा है?
2: देखिए, डिजिटल अभियान का सबसे बड़ा दो उदाहरण यही है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जिस तरह तेज़ी से बढ़ा है, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद सबसे नंबर वन पर भारत पहुंच गया है, जिसमें इतने अभी शायद अभी पढ़ रहा था मैं, 30 अरब करीबन ट्रांजेक्शन्स हुए। मतलब ये है कि एक अनपढ़ आदमी भी जो
1: बिल्कुल
2: मोबाइल ऑपरेट कर लेता है और वो डिजिटल ट्रांजेक्शन से जो है पैसा पैसे का लेन देन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस देश में साक्षरता अभी 100% नहीं है, जहाँ
1: बिल्कुल
2: पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, वहाँ अगर लोग इतने मॉडर्न तरीके से, जो शायद अमेरिका में भी नहीं होता है आज की तारीख में, और इस पर जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से सरकार की भी सफलता है, सरकार की संकल्प शक्ति की सफलता है कि हमने जो है उसको लागू लागू करके दिखाया और वो अब अमल में आ रहा है। दुनिया इसको लेकर के चकित है कि भारत जैसे देश में इतने बड़े पैमाने में ट्रांजेक्शन के कैश ट्रांजेक्शन घट गया। उससे उससे एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि रिजर्व बैंक को नोट भी कम छापने पड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा फायदा ये भी है। और दूसरी बात यह है कि हम जिस आधुनिक जमाने में जा रहे हैं, वो जब AI का जमाना आ रहा है, शुरू भी हो गया है, तो उस तरीके से अगर भारत उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से हम उस स्थिति का भी मुकाबला कर पाएंगे। एक तरह से ये एजुकेशन है, एक तरह का डिजिटल एजुकेशन की तरह मैं इसको देखता हूँ कि एक शुरुआत है ये, कि आगे और जब जटिल चीज़ें सामने आएंगी तो लोग उसको भी धीरे धीरे अपनाएंगे।
1: बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं, हाल ही में खबर आई थी कि मई के महीने में सबसे ज्यादा अभी तक यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो एक नया
2: बिल्कुल
1: रिकॉर्ड बना है अपने आप
2: बिल्कुल
1: में। डिजिटल इंडिया में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अक्षय सर, देखा जाए तो सामाजिक जो कल्याण की योजनाएं हैं उनमें कैसे देखते हैं कि उनका जो केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उन किस तरह से मध्य प्रदेश में फॉलो की जा रही हैं?
0: उसको पूरी तरह से उसको मध्य प्रदेश में उनको लागू किया गया है। हम अगर जनजाति समाज को लेकर ही देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री ने ही शहडोल से इसका शुभारंभ किया था, सिकल सेल एनीमिया
1: एनीमिया के
0: उन्मूलन
1: लिए।
0: मिशन का उद्घाटन उन्होंने किया था, और जिसमें कि ग्रामीण अंचलों में जो सैकड़ों कई लोग हैं जिनको क्या वंशानुगत इस तरह की बीमारी होती थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था और उसमें बहुत सफलता भी मिली है। हाल ही में हमने राज्यपाल जी को भी उसमें
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सक्रियता से भाग लेते हुए देखा। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान केंद्र के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे चलाया गया, जिसका कि मैदानी स्तर पे हमने उसका पालन होते हुए देखा, उसके परिणाम भी आते हुए देखे।
1: जी
0: कई तरह की जिस तरह की उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में जो पहले चूल्हे जलते थे उसके द्वारा गैस के कनेक्शन अब मिलने लगे हैं, तो अब उससे धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिली है, प्रदूषण से भी निजात मिली है, और एक एक आत्मविश्वास का भाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और जनता के बीच में आया है इस योजना के माध्यम से भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहुत जो गरीब व्यक्ति था वो भी अपने घर का सपना साकार होते हुए देख रहा है। तो ये सब योजनाओं के माध्यम से समाज में एक जो विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है उसने भारत को एक नई मजबूती प्रदान करी है, और जिस तरह की मजबूत बुनियाद हमें विकसित राष्ट्र के लिए चाहिए उस

0: उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर। अजय सर, उपलब्धियों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उपलब्धियां जब आती हैं तब चुनौतियां भी आती हैं, और आगे किन किन क्षेत्रों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है?
2: देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जिसमें काम तो हो रहा है लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। जैसे कि पीने का पानी, हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो जल मिशन के तहत काफी काम हुआ है और काम हो भी रहा है, लेकिन अभी भी ये बड़ी चुनौती है कि हम, जैसे कि कभी अटल जी ने कहा था कि हर गांव के हर व्यक्ति को साफ पानी उपलब्ध कराना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, तो वो चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। तो जाहिर है कि उसमें काफी काम करने की जरूरत है, काम हो रहा है लेकिन उसको और तेज गति से करने की जरूरत है, क्योंकि अगले 25 सालों के अंदर मैं भारत में लगभग हर घर हर व्यक्ति को साफ पानी हर परिवार को मिले, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको न सिर्फ उस तरह के जो है वो जल संचय भी करना पड़ेगा और जल वितरण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो उस दृष्टि से काम होना है। दूसरी बात आवास वाली बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास सरकार दिलाई रही है, शहरी और ग्रामीणों को, लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी सरकार उसको लेकर आएगी और उनको भी ध्यान लिया जाएगा। और तीसरा मुद्दा रोजगार का है, तो रोजगार के लिए भी सरकार जैसे वो जो स्व सहायता समूह वगैरह इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही है, ताकि खासकर महिलाओं के लिए
1: हर जिलों में रोजगार मेले भी आयोजित,
2: वो भी है। दूसरे वो अंत्योदय जो है रसोई योजना है, उस तरह के तहत हर 5 रुपए भरपेट थाली भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी है। तो काम तो काफी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, जैसे काम जैसी उपलब्धियां बढ़ेंगी तो नई चुनौतियां भी सामने आएंगी।
1: चुनौतियां तो आएंगी, उपलब्धियां आ रही हैं, क्योंकि तो चुनौतियों का सामना करने के लिए देश और प्रदेश लगातार तैयार हैं। अक्षय सर, देखा जाए तो मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य में अपना और किस तरह से योगदान दे सकता है?
0: जैसा कि शुरुआत में हमने बातचीत करी कि मध्य प्रदेश जो है वो हृदय प्रदेश है हमारे देश का, और सभी जो कनेक्टिविटी है के माध्यम से भी, एक लॉजिस्टिक हब के माध्यम से भी हम जो है भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम उसके लिए जो औद्योगिक संरचना, औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, उस दिशा में हम आगे तो बढ़े हैं लेकिन अभी उसमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। उसको और जिस तरह के महाराष्ट्र में या गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पहुंचता है, वैसा एक हमें उसके लिए कुछ हमारे पास में वो भी हैं, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट है, वो बाकी सारे स्टेट्स के पास में समुद्र का जो किनारा है वो उनको व्यापार करने के लिए सहूलियत प्रदान करता है, लेकिन मध्य प्रदेश को हमें अपनी इसी जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो अपने आप को लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करने की जो एक प्रतिबद्धता है या हमारी जो एक नेचुरल पोजीशन हमें मिली हुई है, उसको हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम पूरे देश को एक कैटलिस्ट के रूप में विकास की गति पे आगे बढ़ाने में प्रयास कर सकते हैं। और जैसा अभी मध्य प्रदेश के सरकार ने भी अपने एक और वो दिया था, स्लोगन दिया था, विरासत भी विकास भी, तो हम विरासत को सहेजते हुए विकास की राह में आगे बढ़ेंगे। ये जो सरकार की प्रतिबद्धता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पूर्व में हमारे जितने जो हमारे मानबिंद ऐतिहासिक या सांस्कृतिक मानबिंद रहे हैं, उनको सहेजते हुए हम विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो पिछले दिनों कल्चरल सांस्कृतिक केंद्र है, हमारे धार्मिक केंद्र है, महाकाल लोक है या राम राज्य सरकार का लोक है, जैसे अनेक धार्मिक स्थानों को भी पर्यटन के रूप में बहुत बड़े स्तर पे स्थापित किया गया। और अब देखिए कितना उज्जैन में, महाकाल में कितना बड़े संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं, तो इस तरह की धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर भी हम विकास की गति को बढ़ा सकते हैं और उससे पूरा प्रदेश को फायदा पहुंचता है।
1: बिल्कुल, तो पर्यटन जो है मध्य प्रदेश को विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
0: जी
1: अजय सर, जो युवा है 2047 तक भारत को विकसित होना है, वो अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं, आपका संदेश?
2: देखिए, युवाओं का तो क्या है कि अलग अलग तरीके से, बल्कि दे ही रहे हैं, बल्कि मैं क्या दे सकते हैं क्या, बल्कि अलग अलग तरीके से दे ही रहे हैं, चाहे वो उद्योग की दृष्टि से हो, खेती की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। तो ये तो अभी आज की तारीख में भारत में करीब 35 करोड़ युवा हैं।
1: जी जी
2: हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 साल बाद ये अधेड़ हो जाएंगे ये सब
1: जी जी
2: तो वो भी एक बड़ी चुनौती है जो आज जैसे जापान जैसे देश इसका सामना कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: तो ये दोहरी चुनौती है। अभी जो अलग अलग तरीके से लोग योगदान दे रहे हैं भारत को, अगर इतनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज की है उसमें भी रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े आए कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रही है
0: 7.8%।
2: हाँ, तो वो इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों का भी हमने मुश्किलों को झेला है और अपनी जो रफ्तार को आर्थिक विकास की बनाए रखा है। तो और ये युवाओं के दम पर ही संभव है, बगैर उसका तो हो नहीं सकता है। तो समस्याएं तो हैं उसमें, लेकिन फिर भी ये है कि मेरे ख्याल से युवा अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विकास दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से हो, खेलों की दृष्टि से हो, खेल में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान की दृष्टि से आगे हो, या और भी तमाम जो है अलग अलग क्षेत्र जितने भी हैं उसके अंदर लोग अपने ढंग से योगदान दे रहे हैं। और भारत दुनिया के अंदर एक बड़ी चुनौती दूसरे देशों के लिए बना हुआ है, ये हमारे लिए संतोष की बात है।
1: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्षय सर आपका क्या संदेश है?
0: संदेश मतलब जिस तरह के बताया अजय जी ने कि युवा अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले जो समय में जो उम्र का असर उसमें आएगा उसको लेकर हमें आज से योजना बनानी पड़ेगी। तो उस दिशा में सभी के प्रयास जारी भी हैं। हम भारत का युवा बहुत सक्षम है, प्रतिभावान है। आज ही हमने अखबार में भी पढ़ा कि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं उसमें भारतीय सबसे शीर्ष पर है। 96 यूनिकॉर्न्स जो हैं अमेरिका में वो भारत के हैं। तो ये अमेरिका जैसे देश में जाकर भी भारत के युवा जो हैं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। तो वो भारत में भी पूरी तरह से वो मौजूद है, भारत में भी वो अपनी प्रतिभा का जो है वहाँ यहाँ का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत को उसी का लाभ मिल रहा है जो आज जिस स्थिति में 2014 में जो 11वीं अर्थव्यवस्था थी वैश्विक, आज वो लगभग प्रथम 5 में भारतीय अर्थव्यवस्था आती है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है और उनको समय समय पर उनको प्रोत्साहित करना, उनके लिए योजनाएँ लाना और उनके साथ में खड़े होना, मतलब उनको लगना चाहिए। कई बार चुनौतियां भी आती हैं, अभी जैसे हाल ही में हमने देखा कि मेडिकल की परीक्षाओं को लेकर जो घटनाएं हुई, पेपर आउट हो गए, तो ऐसी घटनाओं से उनका उत्साह नीचे जाता है। तो उसको लेकर भी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उसको लेकर भी सावधानी बरती जाए जिससे कि वो हमारा युवा जो है हतोत्साहित ना हो और भारत को विकसित बनाने की दिशा में वो एक मजबूत मानसिक आधार पर भी एक मजबूत स्तंभ भारत का बने।
1: बिल्कुल कह सकते हैं डिटरमिन्ड रहे, फोकस्ड। बिल्कुल। तो श्रोताओं आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आधारभूत संरचना, कृषि उद्योग, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अजय सर और अक्षत सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
2: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में पारा 43 से 44 डिग्री होने के बाद अब तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं गर्म हवाओं की जगह धीरे धीरे उमस अपना स्थान ले रही है। खेती के नजरिए से ग्रीष्मकालीन मूंग खेतों में तैयार होकर अंतिम दौर में है, वहीं किसान कटाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र के लिए ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि मूंग और उड़द के लिए तहसीलवार कुल 46 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के 13,000 से अधिक, उड़द के लिए 14,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। जिले में किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने हेतु व्यापक स्तर पर मृदा नमूना संग्रहण कार्य किया गया है। नरसिंहपुर जिले में कुल 4,400 मृदा नमूने संग्रहित किए गए हैं। मृदा परीक्षण के माध्यम से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन कर किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले से प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किश्त के रूप में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 296.34 करोड़ रुपए लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान नरसिंह की ये भूमि वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की साक्षी रही है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं गाडरवारा की तुअर दाल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पिछले दिनों नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित जल संवाद कार्यशाला में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वैश्विक जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल भरण की विशिष्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों पीएम श्री शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडरवारा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के परिवहन और स्कूल

शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धरती का आंचल हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगार पल है और एक मौका भी है। आज के दिन हम संकल्प लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा जरूर लगाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी योजनाओं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर में किया गया। शिविर में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को योजना में पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिनव पहल पर जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के माध्यम से जिले के विकास से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा उनके स्वास्थ्य स्वावलंबन और अधिकारों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, स्टोर रूम, मदर रेस्ट रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं आपका आपके अपने प्रोग्राम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में। मैं हूं मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। आपको याद है ना, पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि अगले कार्यक्रम में हम किडनी पर बात करेंगे। डायबिटीज के कारण किडनी पर क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, आइए इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि डायबिटीज से किडनी को किस तरह से नुकसान होता है।
1: देखिए, ऐसा है कि मधुमेह में हमें खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रखना है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कारण ये है कि ये मूलभूत बात लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों रखना है? क्योंकि इसका बुरा असर पड़ता है, जो शोधों में आया है, जो कि सीधा सीधा है, बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो आंखों के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, गुर्दे में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है और पैरों में न्यूरोपैथी होती है। तो ये तीनों ही चीजें अपने आप में विकट परिस्थिति है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि किडनी हमारी शरीर की, जो देखा जाए तो एक छन्नी है जो शरीर की सारी गंदगी को छान देती है और जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो मान लीजिए अगर किडनी को तकलीफ हो गई, छन्नी ने काम करना बंद कर दिया, तो विषैले तत्व तो शरीर में जमा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर आपको तकलीफ देंगे, आपका व्यवहार अंतर आएगा, शरीर में पानी

0: रुकेगा और दूसरी प्रॉब्लम आएगी, यूरिया क्रिएटिनिन आपका बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों में जब भी डायबिटीज का मरीज आता है, टाइप 2 डायबिटीज का, तो उसे तुरंत उसी समय हम स्क्रीन करते हैं पेशाब में माइक्रो एल्बुमिन नाम के प्रोटीन का। तो ये माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन नॉर्मल आदमी में 30 के अंदर होता है। जब भी ये 30 और 300 के बीच में आता है तो हम इसको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं, और उसके आगे जब 300 के ऊपर हो जाता है तो वो मैक्रो एल्बुमिन यूरिया होता है। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी समय समय के हिसाब से बदल जाती हैं, पर मोटे तौर पे ये अंदेशा बताता है कि आपके गुर्दे अब खराब होने वाले हैं।
1: सर, इतनी गंभीर यह समस्या है कि जो भी डायबिटिक व्यक्ति है वह हमेशा ये मन में लेकर चलता है कि मेरी अब किडनी खराब हो ही जाएगी, क्या वाकई ऐसा है?
0: देखिए, अच्छा नियंत्रण जो है वहाँ पे आपके जीवन की खुशियाँ छिपी हुई हैं। अच्छा नियंत्रण अगर आप लेते हैं, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर रखते हैं, नियमित डॉक्टर को दिखाते हैं, संयमित भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि किसी भी प्रकार से गुर्दे में कोई तकलीफ होगी। और आप अच्छे डॉक्टर हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो निरंतर नियम से समय समय पे आपकी गुर्दे की जांच करके देखेंगे। जब भी खराबी आएगी तो वो आपको आगाह करेंगे कि भाई संभल जाओ, दर्द की गोली मत लो, हरे बनने की गोली मत लो, पीले बनने की गोली मत लो, अपने मन से दवा मत लो, और शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर गुर्दे में पथरी है और डायबिटीज है तो और ज्यादा सतर्क हो जाइए, पथरी का इलाज समुचित करवाइए, क्योंकि पथरी के कारण भी गुर्दा खराब होगा, डायबिटीज के कारण भी गुर्दा खराब होगा, इन्फेक्शन होगा उसके साथ साथ, तो चीजें बहुत विकट होने लगती हैं।
1: सर, इलाज की हम बात करते हैं।
0: सबसे पहला इलाज है कि आप शुगर बिल्कुल जैसा किताबों में लिखा है वैसा नियंत्रित करें
1: जी।
0: दूसरा इलाज ये है कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ब्लड प्रेशर की कुछ गोलियां होती हैं, वो दी जाती हैं समुचित मात्रा में, एक योग्य डॉक्टर को वो लिखने दीजिए। तीसरा इलाज ये है कि डॉक्टर ये देखें कोई ऐसा और कारण तो नहीं है जिसके कारण गुर्दा खराब हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि मधुमेह के कारण हो रहा है, कहीं ब्लड प्रेशर के कारण तो नहीं हो रहा, अगर है तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करें, किसी इन्फेक्शन को अगर है इन्फेक्शन तो उसको नियंत्रित करें। तो इस तरह से विवेचना करने पे सही दिशा में इलाज होता है और गुर्दा प्रत्यारोपण की नौबत नहीं आती।
1: हमारे एक श्रोता है, उनका नाम है रीति निगम, उन्होंने अभी अपना पथरी का ऑपरेशन कराया है लेकिन पथरी ने उनकी किडनी पर थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, क्या वह डायबिटिक होने की संभावना है उनको?
0: देखिए, पथरी होने से डायबिटीज नहीं होगा, पर ऐसा हो सकता है कि उनको साथ में दो बीमारियां हों। अगर उन्हें मधुमेह भी है और पथरी की समस्या भी है, मधुमेह भी अनियंत्रित है तो पथरी की समस्या, पथरी से होने वाला इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वो इन्फेक्शन बढ़ेगा तो हालांकि वो पथरी के कारण हुआ है पर मधुमेह उसमें घी का काम करेगा, तो अगर वो आग तेज होगी तो दोनों ही अंगों को जलाएगा वो।
1: श्रोताओं, हमारा लक्ष्य यही है कि हम आपको छोटी छोटी इन समस्याओं से आगाह कराते रहें। आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई परिवर्तन दिखता है जो असामान्य है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन्स रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। अगले कार्यक्रम में हम फिर इस तरह की बातचीत आपको जरूर सुनवाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर सचिन चित्तावार का नमस्कार।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आरंभ करते हैं कैलाश खेर की आवाज में प्रस्तुत इस गीत से।
3: मोहे ऐसी लागी

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में

0: लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी
1: हाँ
5: आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना हूँ तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: करें।

0: सेकेंड वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त श्वेता। बशीर बद्र साहब का एक मशहूर मतलब कहना चाहिए एक लाइन है जिन्हें मैं कहना चाहूंगी, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता, जहां दरिया समुन्दर से मिला दरिया नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, है ना। तो आप भी इस बात के लिए हमसे सहमत होंगे कि हमारा और आपका भी रिश्ता एक प्यार भरा स्नेह भरा रिश्ता है, और आज हम इसी कार्यक्रम से भी इसी तरह जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब हम चाहेंगे आपके पसंदीदा गीत सुनवाएं, जिसके लिए आप हमें फोन करेंगे इन नंबरों पर 2660902, बाहर के श्रोता साथी एसटीडी कोड लगाकर 0755 हमें लगाकर फोन कर सकते हैं और अपने विचार और अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके फोन। जी
2: हेलो।
1: हाँ हेलो, हमारी आवाज आप तक आ रही है?
2: जी दीदी आ रही। नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
2: जी दीदी, मैं अपना पहले परिचय दे दूं फिर।
1: जी जी,
2: मैं दादू वैद्य कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
1: रोशन सिंह यादव, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: रोशन सिंह।
1: हाँ जी,
2: यादव नहीं।
1: अच्छा अच्छा, सॉरी, रोशन सिंह कहाँ से?
2: जी,
1: जगह का नाम?
2: दादू वैद्य कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश।
1: जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में फोन करें गीत सुने में। पहले बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: दीदी फिल्म का नाम तो मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन गाने के बोल हैं चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यारा है तुझ पे।
1: चलिए हम सर्च तो करेंगे, लेकिन बताएं ना आप कौन से फिल्म का गीत है ये? नहीं याद है
2: मतलब मुझे फिल्म का नाम नहीं पता है।
1: चलिए एक और बता दीजिए हमें, है ना, एक और फिल्म का। हाँ, एक और गाना।
2: एक और मैं यही वाला बस सोच के आया था, मतलब

0: आपकी पसंद के तो और भी गीत हो सकते हैं, है ना?
1: जी जी हा? वो मतलब फिल्म का गाना वो भी नहीं है, मतलब गाना है वो भी ऐसे ही
0: जी,
1: कोई फिल्म नहीं है, भला किसी का को हम साथ साथ हैं का है
0: जी, जी जी जी जी बिल्कुल,
1: मतलब ये तो सच है कि भगवान है।
0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, है ना?
1: जी जी जी जी जी जी।
0: तो
1: और दीदी मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: जी दीदी मैं आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है और आपकी आवाज बिल्कुल सुनीता सिंह दीदी जी से मिलती है।
0: हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, है ना?
1: जी दीदी,
0: तो बताइए कैसा है वहाँ मौसम का हाल चाल?
1: दीदी मौसम का हवाएं चल रही हैं, मतलब रोज बादल हो रहे हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज्यादा तो अभी नहीं हो रही है, छिटपुट वर्षा हो रही है।
0: हाँ, बिल्कुल है ना,
1: मतलब गर्मी तो है ही भला।
0: हाँ,
1: गर्मी का क्या कहना है,
0: सही बात है ना। और थोड़ी क्या होता है कि हमें ठंडक तो मिलती है लेकिन उसके बाद थोड़ी उमस भी शुरू हो जाती है ना।
1: जी जी, हल्की बारिश होती है तो फिर से उमस हो जाती है, शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ही मतलब सबकी आधारा है, अब हम ही पेड़ पौधे कटवा रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं कोई, मतलब
0: जी जी जी बिल्कुल
1: जी, है ना, इसीलिए हमें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
0: बहुत
1: मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे दीदी लगे हुए हैं, के हैं, नींबू के हैं, आम के हैं, और भी मतलब बहुत सारे महुए के हैं, कनायर के हैं, मतलब फूल होते हैं जो।
0: बहुत बढ़िया, आपने पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं और आपकी बात सुनकर हमें अच्छा भी लगा और सारे लोगों तक ये संदेश भी पहुंच रहा है कि अपने आसपास पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, है ना?
1: अगर एक तो पेड़ कटाएं तो चाक दीदी लगाएं, हम यही
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम यही चाहेंगे क्योंकि अपने चारों तरफ अगर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से गर्मी कम होगी, है ना? आपने फोन किया,
1: यही अपने श्रोताओं से जो भी सुनना चाहते हैं तो उनसे
0: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी दीदी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ बहन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
0: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
1: जी, तो चंदेल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना।
0: नहीं,
1: तो
0: सही है बहन जी, सही है।
1: हाँ, सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप।
0: बस बहन जी, मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ,
1: जी
0: और मैं कि आप भी बढ़िया हो।
1: बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आपसे बात करके। अपनी जगह का नाम
0: जी,
1: बताएं जरा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
0: ग्राम सनोतिया, जिला गुना,
1: जी
0: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन
1: जी
0: जी।
1: तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
0: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा खानदान,
1: जी
0: और गाने के बोल रहेंगे, नील गगन पे उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
1: बहुत ही प्यारा गाना है ये ना। हाँ बिल्कुल, अभी मौसम भी कुछ इस कदर हो गया है ना, जहाँ आप रहते हैं
0: जी।
1: वहाँ कैसा मौसम है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है।
0: हाँ, बारिश तो नहीं हो रही,
1: हाँ
0: लेकिन बदल है, मतलब मौसम ऐसा ही है, कुछ गर्मी भी है, बदल भी है,
1: जी जी जी
0: बूंदाबांदी भी हो जाती है,
1: हाँ
0: तो मिला जुला मौसम है, यानी बढ़िया मौसम है।
1: हाँ बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या खेती है आपकी, खेती किसानी
0: हाँ
1: करते
0: बहन
1: हैं।
0: जी, मैं खेती किसानी करता हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ, किसान हूँ, और आकाशवाणी सुनता रहता हूँ। इससे क्या है, खेती किसान के लाने बढ़िया कार्यक्रम आते हैं,
1: जी
0: तो वो हमको लाभ दे जाते हैं,
1: जी
0: कहीं
1: जी
0: उनका।
1: जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो
0: जी
1: चलिए,
0: बहन जी,
1: आपने
0: आपका शुभ नाम जानना।
1: मैं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता बोल रही हूँ, है ना।
0: अच्छा,
1: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: तो
1: धन्यवाद।
0: कुछ कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताएं आपके मित्रों के नाम।
0: दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से,
1: जी
0: और फूलचंद पाल जी हैं मनकारी से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं,
1: जी
0: सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा वह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने इतने अपने सारे मित्रों का नाम लिया, हमें भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और
0: जी
1: इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। फोन करने के लिए आपका
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद बहन, नमस्कार।
1: ओ

0: जी नमस्कार।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंज बासोदा जिला विदिशा।
0: जी तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आपने फोन किया है कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने में, है ना?
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल सही जगह लगा।
0: हाँ तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हमें सुनना है बॉर्डर फिल्म का।
0: बॉर्डर फिल्म का गीत,
1: संदेश आते हैं चिट्ठी आती फौजी भाइयों के लिए।
0: बिल्कुल, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाता हूँ मैं, उसी की तैयारी चल रही है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप रेडियो भी सुनते हैं?
1: अरे दीदी कम से कम 18 साल हो गई हमारे लिए रेडियो बिल्कुल सुनते सुनते।
0: हाँ आज मैं बहुत अच्छा लगा, है ना, कि आप हमारे यहाँ।
1: आपके तो हम नियमित श्रोता हैं और पत्र भी डालते हैं, ग्राम सभा है।
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम है, लोक रंग है।
0: हुँ.
1: पूरे सारे कार्यक्रम सुनते हैं और सुझाव भी आपके लिए हम भेजते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चलिए आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: दीदी, नमस्ते नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार मैम। नमस्कार।
0: जी आपका नाम बताएं। हाँ
1: मैं कृष्णवा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूर मनमोजी बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और
1: जी
0: आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने में, है ना? तो पहले
1: अच्छा
0: बताएं
1: बिल्कुल। आप बताओ
0: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: जी,
0: पहले बताएं आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: मुझे जीने नहीं दूंगा गाना सुनना मैं।
0: जीने नहीं दूंगा कौन सा गाना है इसका? अच्छा,
1: बादल रेशमा तुम याद ना आया करो।
0: एक और कोई मतलब बता दीजिए।
1: आपके हिसाब से सुना दो मैडम, आज तो आज आपकी आपकी
0: नहीं
1: फरमाइश
0: नहीं
1: सुनेंगे हम।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं। हर इंसान की बहुत सारी पसंद तो बहुत सारी होती है ना फिल्मी गानों की।
1: हाँ
0: एक और हमें चॉइस बता दीजिए, है ना?
1: अच्छा, ये है ना,
0: हाँ हाँ
1: ये मुद्दत का मिल जाएगा मैडम।
0: हाँ जी बिल्कुल, है ना? सुनाएंगे आपको।
1: यारी
0: हाँ
1: हमारा
0: बिल्कुल मिल जाएगा।
1: मेरी
0: चलिए आपने देखिए गा के भी हमें सुना दिया है ना? चलिए
1: हाँ जी
0: आपने
1: हाँ
0: फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: जी। मेरा नाम बाबू यादव है दीदी,
0: जी
1: और मैं सारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ।
0: जी
1: दीदी
0: बताएं।
1: आपका नाम भूल रहा हूँ, जरा बता दीजिए।
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
1: जी।
0: तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ दीदी, हमको सुना रही है फिल्म मेरा साया का है कि तू जहाँ जहाँ चले जा मेरा साया साथ होगा, लता जी ने गाया हुआ है। जी
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है ना?
1: जी
0: आपकी पसंद भी बड़ी प्यारी है ना? क्या करते हैं
1: और
0: आप?
1: यही दीदी मेरे श्रीमती जी के लिए डेडिकेट रहेगा विशेष
0: बिल्कुल
1: तौर से।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।

0: हाँ नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
0: जी मैं ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ बहन जी।
1: जयपाल यादव
0: जी
1: अच्छा बताएं आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
0: जी आज मुझे एक फिल्म का नाम है जुनून, इसमें गीत है जो प्यार कर गए वो कुछ ऐसा गीत है वो
1: बिल्कुल
0: जुनून फिल्म का है।
1: अच्छा, एक और पसंद का भी गीत बता दीजिए आप, एक और पसंद बता दीजिए अपनी।
0: अच्छा एक और पसंद में
1: हाँ
0: तो एक फिल्म का नाम है जानवर, इसमें गीत है अलका याग्निक जी का गाया हुआ गीत है
1: बिल्कुल
0: मौसम की तरह।
1: बिल्कुल है ना, बिल्कुल
0: जी
1: सुनवाएंगे हम आपको आपकी पसंद की ये सारे मतलब ये गीत।
0: जी
1: क्या करते हैं आप?
0: जी बहन जी, वैसे तो मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, मतलब जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जन योजनाएं हैं उन उन तक गरीब असहाय तबके बच्चों को या परिवारों को लाभ दिलाने का काम करता हूँ और खाद्यान्न विभाग से जुड़ा हूँ।
1: जी, और साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं?
0: बिल्कुल, आपके मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सभी सुनते रहते हैं और जो भी आपके यहाँ से ज्ञान से भरी या मनोरंजन से या जानकारी मिलती है तो वो अपने जीवन में और जो खेती से संबंधित उन किसान भाइयों तक पहुंचाना हमारा प्रयास रहता है कि हम उन तक आपके केंद्र से सुनकर उनको लाभ दिलाएं।
1: हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा, और इसी
0: जी
1: तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। फोन
0: जी
1: करने
0: जी
1: के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं शिवानी मेहरा बात कर रही हूँ, नीमच से।
0: नीमच से बात कर रही हैं जी। तो कैसी हैं आप?
1: अच्छी मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम मूवी का नाम है गुमनाम और गाने बोले मोहब्बत से ज्यादा।
0: गुमनाम। अच्छा अच्छा ये पुरानी वाली मूवी ना?
1: हाँ मैम, ज्यादा पुरानी भी नहीं है।
0: हाँ हाँ
1: हाँ 90 के, मतलब 90 या 2000 समथिंग की है।
0: अच्छा, एक और अपनी पसंद का गीत बता दीजिए, है ना?
1: सलामी मूवी का जब हाले दिल।
0: हाँ जी। तो क्या करती हैं आप?
1: मैं तो कुछ नहीं करती, मैं घर पर ही रहती हूँ।
0: और रेडियो सुनती हैं? मेरे ख्याल से मेरी आपसे और भी बात हो चुकी है ना, इससे पहले भी बात हो चुकी। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने कामकाज के साथ साथ रेडियो भी सुनती हैं, है ना?
1: मैम आप कौन सी मैम बात कर रहे हो?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते। तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

कार्यक्रम फोन करें, गीत सुनें। हमें आपके विचार जानकर और आपके पसंदीदा गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। आशा है आप इसी तरह हमें फोन करते रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। श्री अमित शाह, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में आज

एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा है कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून की अवधि में जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे और राज्य सरकार ने शासकीय सेवा के लिए 2 बच्चों की अधिकतम सीमा निरस्त संबंधी नियम को निरस्त कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। अगली श्रोता मालवा से हैं रतलाम, बलवंत कुमार, राजू वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म आज़ाद से। गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद, अभयनंद, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से, स्वर प्रीति सागर के हैं। गीत लिखा हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना ने, गीत को संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ और शाहिद। अगले श्रोता गांधी बाग अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे आप फिल्म सत्ते पे सत्ता से। इस गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले, किशोर कुमार, आरडी बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती, बासु और साथियों ने। गीत लिखा गुलशन बावरा ने, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। चलिए सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है अंबेडकर चौक खुरई से। श्रोता हैं रामसखी परमानंद, सौरभ, गौरव, रोहित, पूरन, छोटू डुंडुन, इन्हीं के साथ अगले श्रोता किशोरी बोस हैं, प्रियंका बाथरे, बसंत बाथरे, सरोज तिवारी, अजीत, हिमांशी, नितिन, आशीष और ममता। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: मीडियम वेव पर ही आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग हेतु

0: संपर्क करें 8700001-4242 पर
1: 8700001-4242।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर
1: 8700001-4242।
2: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का पांचवा भाग।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, लिचू अपने बेटे जगन्नाथ से पीने के लिए पानी मांगता है। जगन्नाथ पानी लेने जाता है। लिचू अपनी पत्नी की लाश को गिद्धों चीलों द्वारा नोचकर खाए जाने के विभत्स दृश्य को याद करता है। शिबू और लिचू अपने समाज की दयनीय दशा और हड़ताल की भयावहता को लेकर बात करते हैं। जुड़वा भाई रामू और बामू ठाकुर साहब की चापलूसी करके उसके साथ नशा करते हैं। दोनों ठाकुर साहब को मजदूर यूनियन की गोपनीय बात बताते हैं। शिबू और यशवंत के बीच यूनियन नेताओं की मौका परस्ती को लेकर गंभीर चर्चा होती है। तभी शिबू को खांसी उठती है और बलगम के साथ खून निकलता है। यशवंत उसे टीबी होने की बात बताता है। शिबू यशवंत से खुलकर बात करता है। यशवंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब

0: tu naraní, o naraní, tu lo calvas a tu coro naraní,
1: coro ahí hudi,
2: नीता जी आप ही साथ हैं?
3: शिबू की तबीयत ठीक नहीं है, जरा खटिया तक इसे पहुंचाने दे।
2: आइए
3: चल चल खटिया पर लेट जा शिबू।
2: क्या हुआ, क्या हुआ आपको?
3: नारायणी इसे टीबी हो गई है, इसे आराम और अच्छे खाने पीने की सख्त जरूरत है।
2: अच्छे खाने की? घर में खाने के लिए तो होता नहीं, अच्छा खाना कहाँ से लाऊंगी मैं?
3: जैसे भी हो, शिबू की दवा दारू भी बराबर चलती रहनी चाहिए। देख, डॉक्टर ने खास हिदायत दी है।
2: आपने इनकी मदद की, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
3: अरे एहसान कैसा नारायणी, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा शिबू, अपना ख्याल रखना।
0: हाँ यशवंत जी, ठीक कहते हैं, मैं अपना ख्याल।
2: आप ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जी।
0: रोज रोज मीटिंग होती है।
4: अरे भैया, यूनियन का हमको तो कुछ समझ नहीं।
5: मजदूर किसान भाइयों,
4: सुनो सुनो, कुछ कह रहे हैं।
5: आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मजदूर

0: मजदूर हड़ताल में किसानों का क्या काम है।
1: हाँ, सीख।
0: लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूनियन किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ रही है।
1: अच्छा,
0: ये धरती हमारी माँ है। जब तक किसान और मजदूर अपने अधिकारों के प्रति चौकस नहीं होंगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं।
1: ये बात तो सही।
0: हमें एक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।
2: मजदूर किसान एकता
3: जिंदाबाद।
2: मजदूर किसान एकता
3: जिंदाबाद।
2: मजदूर किसान एकता
3: जिंदाबाद।
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
2: इंकलाब।
0: शांत साथियों, शांत। यूनियन चाहती है कि जमीन रखने की सीमा 150 बीघा से घटाकर 60 बीघा कर देनी चाहिए।
1: हाँ, 60 बीघा।
0: जमीन से किसानों को खदेड़ना बंद होना चाहिए। अधिया पर खेती करने वालों को जमीन पर पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कर लेना बंद होना चाहिए। होलसेल व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ब्याज का इंतजाम हो। और भी बहुत से नियम बनाने चाहिए। लेकिन इन मांगों को पूरा करवाने के लिए मजदूरों और किसानों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल को सफल बनाना होगा। किसानों मजदूरों को क्रांति करनी होगी। क्रांति।
2: मजदूर किसान एकता।
4: शास्त्री जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
5: शास्त्री जी, कहाँ है शास्त्री जी? शास्त्री जी तो अभी तक आए नहीं है।
4: क्या, शास्त्री जी अभी तक नहीं आए? तो तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें शास्त्री जी समझ रही थी।
5: यशवंत, लगता है ये महिला पहली बार सभा में आई है। इसे बता कि हम कौन हैं।
1: अरे नारायणी
4: जी,
1: नारायणी ये शास्त्री जी के एजेंट बलबीर स्वामी है।
4: एजेंट? ये एजेंट का क्या मतलब होता है?
1: एजेंट अंग्रेजी का शब्द है नारायणी।
4: अब मैं क्या जानू अंग्रेजी विंग्रेजी।
1: एजेंट को अपनी हिंदी भाषा में दलाल कहते हैं।
0: ए, ए, ए, ए, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और ये किस पे हंस रहे हो तुम लोग?
4: दलाल पर तो जमाना हंसता है, फिर हम तुम पर हंस रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है?
0: क्या कहा? मैं और दलाल? नहीं, मैं तो शास्त्री जी का सहायक हूँ। सहायक?
4: सहायक? लगता है दलाल को अब सहायक कहा जाने लगा है। कोई बात नहीं सहायक जी, बताइए तो जरा हड़ताल कब तक चलेगी?
0: हड़ताल? हाँ, 15 दिन के भीतर कंपनी हमारे आगे झुक जाएगी। कंपनी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, तब हर मजदूर खुशहाल होगा।
2: इस बात की गारंटी दे सकते हैं?
6: हाँ, बताइए क्या गारंटी है इस बात की? बताइए।
0: देखिए, अभी हमारे बीच शास्त्री जी आने वाले हैं और गारंटी भी वही देंगे। भाइयों, शास्त्री जी हमारे बीच आ चुके हैं।
7: अरे
0: आप लोग जोरदार तालियां बजाकर शास्त्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं यूनियन के दलित प्रतिनिधि यशवंत से अनुरोध करूंगा कि वो शास्त्री जी को मजदूरों की ओर से गुलाब के फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत करें। लो, ये हार लो और शास्त्री जी के गले में डाल दो।
1: लाइए बलबीर भाई। शास्त्री जी लीजिए।
8: धन्यवाद साथियों, आज हमने एक दलित के हाथों हार पहनकर दलितों को सम्मान दिया है। हमारी नजर में दलित भी इंसान है, उनके साथ भेदभाव की नीति का खात्मा होना चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है?
8: हम सभी को मिलकर इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।
3: शास्त्री जी
2: जिंदाबाद।
3: शास्त्री जी
2: जिंदाबाद।
3: शास्त्री जी संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
3: शास्त्री जी संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
3: दलित नेता यशवंत भाई
2: जिंदाबाद। जिंदाबाद।
3: दलित नेता यशवंत भाई
2: जिंदाबाद। जिंदाबाद।
8: साथियों, यूनियन आप लोगों के लिए 2 साल से आंदोलन कर रही है। ये हड़ताल आर पार की लड़ाई होगी। मजदूर किसानों को आशंका सता रही होगी कि हड़ताल के लिए धन कहां से आएगा। धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनियन की देश भर में 7 शाखाएं खुल चुकी हैं। हर शाखा से धन आएगा। दिल्ली मुख्यालय में भी मदद करने का आश्वासन दिया है।
4: बलबीर स्वामी ने कहा है कि कंपनी 15 दिनों के अंदर हमारी शर्तें मान लेगी, क्या आप इस बात की गारंटी देंगे?
8: 15 दिन लगे या महीना, कंपनी को हमारी शर्तों के आगे झुकना ही होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई भी मजदूरों का साथ दे रहे हैं। जब किसान भाइयों के हित की बात आएगी तो मजदूर भाई भी किसान भाइयों के साथ खड़े होंगे। इस बात का सबूत आज यहाँ किसान भाइयों की मौजूदगी है।
1: किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता।
8: साथियों, मुझे सूचना मिली है कि सरप्लस मजदूरों की लिस्ट लगा दी गई है, छटनी की जाने वाली है। कंपनी के इस हिमाकत का विरोध करने के लिए हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या हमारे मजदूर हड़ताल के लिए तैयार है?
4: क्या होगा हड़ताल से? कंपनी कहती है कि काम नहीं तो पगार नहीं, पगार बिना हम अपना पेट कैसे भरेंगे? क्या इन भाषणों से? नहीं नहीं, हमें नहीं करनी हड़ताल।
6: हमें नहीं करनी हड़ताल, नहीं करनी हड़ताल।
5: अरे नारायणी, ये तू क्या गजब कर रही है? इस वक्त तेरा शांत रहना ही अच्छा होगा।
7: अरे यशवंत, तू नारायणी के कान में क्या फुसफुसा रहा है रे? ठीक ही तो कह रही है नारायणी। अरे हड़ताल करवा कर क्यों तू चीलों गिद्धों को निमंत्रण दे रहा है?
9: भाइयों, हम नारायणी की बात का समर्थन करते हैं। हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
6: हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
8: साथियों, साथियों, साथियों, मेरी बात सुनो। आज हम हड़ताल की तारीख घोषित करने वाले थे, मगर लगता है कि हमारे बीच कंपनी के कुछ चमचे भी मौजूद हैं, जो कंपनी के इशारे पर मजदूरों के बीच फूट डालना चाहते हैं। हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसे नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, मगर हम कंपनी के इन दलालों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे।
9: भाइयों, ये शास्त्री झूठ बोल रहा है। अरे चलो भाई चलो, पेट पालने का इंतजाम करे, घर पर बच्चे राह देख रहे होंगे। अरे चलो चलो।
6: भाइयों, भाषणों से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है।
8: सारे किए कराए पर पानी फिर गया।
1: क्या करें शास्त्री जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
5: इस पत्थर को क्या देख रहे हो यशवंत?
1: अब्बा,
5: इस पर स्वतंत्रता आंदोलन में 1921 में शहीद हुए अनाम लोगों के नाम खुदे हुए हैं।
1: हाँ, वही पढ़ रहा हूँ। अरुण कुमार उर्फ लाल आजाद, सरयू प्रसाद, भगवान सिंह, रामनाथ सिंह और गरीब हुसैन।
5: अरे यशवंत, अरे अभी तुम नौजवान हो, तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं हमें। तुम्हें बहुत बड़ा लीडर बनना है। तुम यूनियन की वर्दी का सम्मान करना सीखो। पर इन मरे हुए लोगों के नाम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
1: बलवीर स्वामी,
5: हाँ,
1: इस पत्थर पर मरे हुए लोगों के नाम नहीं, बल्कि देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान न्योछावर कर देने वालों के नाम है। इन शहीदों के नाम से ही हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा मिलती है। अगर तुमने इन शहीदों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम शास्त्री के सहायक हो।
5: यशवंत, देखो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को पहचान नहीं सका। इन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो देखो, इनके आगे मैं अपना शीश नवाता हूँ, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा, खैर जाने दो। तुम कह रहे थे कि शास्त्री जी का संदेशा लेकर आए हो?
5: हाँ, शास्त्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त।
1: भला शास्त्री जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
5: भाई ये तो शास्त्री जी ही बताएंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ अपनी साइकिल लेकर अभी चलो।
1: देखो बलबीर, मेरी अपनी कुछ शंकाएं हैं।
5: हाँ,
1: पहले उनका समाधान करो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
5: भाई तुम्हारी तमाम शंकाओं का समाधान शास्त्री जी के पास है, जो भी पूछना उन्हीं से पूछना। अब तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो,
1: ठीक है चलो।
4: सब ठीक हो जाएगा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
5: नारायणी
4: जी,
5: नारायणी,
4: बोलो।
5: मेरे जैसे नकारा इंसान का मर जाना ही बच्चा है।
4: नहीं नहीं।
5: एक तो बेकार और ऊपर से बीमार।
4: पानी दो क्या?
5: नहीं, बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं, टीबी है मुझे, टीबी।

0: दी, उधर समाज की गिद्ध दृष्टि जम गई। आपको मेरी कसम, मैं कभी ऐसी बात मुंह से ना निकाला।
1: नारायणी, मैं जिंदा हूं ही कहां? अरे मैं तो अपनी लाश धो रहा हूं, अपनी लाश। कुछ दिन बाद इस लाश से बदबू उठने लगेगी।
0: नहीं, नहीं।
1: तो तुम खुद ही मुझसे घृणा करने लगोगे। हाँ, घृणा।
0: ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, मेरा ना सही, इस बच्चे का तो ख्याल करो। आप नहीं रहे तो इसे पिता का दुलार कौन देगा, कौन देगा इसे पिता का दुलार?
1: समझता हूँ नारायणी, पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी, मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी?
0: आप तो रोने लगे।
1: अरे नारायणी, रोना तो क्या करूँ, कितना विवश हूँ मैं। अरे मुझे किसी का पति, किसी का पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
0: अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप चिंता ना कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, आपका इलाज कराऊंगी, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, जल्दी अच्छे हो जाएंगे।
1: नहीं नारायणी, नहीं। देखो नारायणी, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता।
0: नहीं, मुझे कोई दुख नहीं।
1: मेरी बात सुनो, तुम मेरी ब्याहता हो, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमाऊं और तुम घर संभालो।
0: लेकिन
1: मगर देखो, मेरी किस्मत देखो, कमाने तुम जाती हो और घर में मैं पड़ा रहता हूं। मैं अपंग बनकर, अपंग बनकर पड़ा रहता हूं।
0: ऐसा ना कहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हमारे दिन भी फिरेंगे और फिर सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। हर रात के बाद भोर का उजियारा होता है, हमारी जिंदगी में भी सुख का उजियारा जरूर आएगा।
1: नहीं नारायणी, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
0: सुख का उजियारा जरूर आएगा, यकीन मानिए, आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।
1: नहीं होगा,
0: अरे मुन्ना जा क्या, मैं इसे चुप कराती हूँ।
1: उसे जाकर चुप करा, मेरी बात छोड़, मैं आराम करता हूँ। जा, तुम मुन्ने को संभाल, जा।
0: ना रो मुन्ने, ना रो, चुप हो जा मेरी लाडली। मैं तेरे लिए मेले से खिलौना लाऊंगी। हाँ मेरे बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना लाऊंगी, गुड़िया लाऊंगी तेरे लिए। चुप हो जा मेरे लाडले, चुप हो जा मेरा बेटा। अरे अरे, और जोर से रोने लगा। लगता है तू भूखा है, मैं तुझे दूध पिलाती हूँ।
1: दूध पिलाती हूँ, दूध पिलाएगी कहाँ से? अरे शरीर में जान होगी तो दूध पिलाएगी ना, दूध पिलाएगी।
2: Oh, my God.

0: सभा को सफल नहीं होने दिया। कंपनी नहीं चाहती कि दलित मजदूरों और दूसरे मजदूरों को उनका अधिकार मिले, और यही वजह है कि हमें बलबीर को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। ये बलबीर कहाँ रह गया?
1: जी वो बाहर किसी से बतिया रहा है, बस आता ही होगा।
2: मैं हाजिर हूँ शास्त्री जी। जी
0: हाँ हाँ बलबीर
2: जी जी,
0: अब हम असल बात शुरू करते हैं।
1: शास्त्री जी आप बात शुरू करें।
0: देख यशवंत, तू दलितों का नेता है
1: जी,
0: सभी तेरा सम्मान करते हैं, तेरी बात मानते हैं।
1: सो तो ठीक है,
0: मुझे लगता है कि तेरे समाज के कुछ लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है।
1: नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसा नहीं है।
0: ऐसा ही है यशवंत, बिल्कुल ऐसा ही है। सभा वाले दिन हड़ताल के विरोध में उस स्त्री ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। वो स्त्री दलित लाइन में ही रहती है ना?
1: कौन? नारायणी?
0: हाँ शायद यही नाम होगा उसका। शायद वो कंपनी के अधिकारियों से मिली हुई है।
1: नहीं शास्त्री जी, नहीं शास्त्री जी, आपका शक बिल्कुल गलत है। नारायणी ऐसा नहीं कर सकती।
2: तो फिर उसने उस दिन हड़ताल का विरोध क्यों किया था?
1: अरे बलवीर, उसके पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है। अगर हड़ताल का मकसद हमारे हित से जुड़ा है तो उसे समझाने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा।
0: गुड, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पैक पिएगा?
1: जी शास्त्री जी, मैं पीता नहीं।
0: पीना भी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है ये शराब। भाई हमने यूनियन का स्थानीय अध्यक्ष बलबीर स्वामी को बना दिया है, क्यों?
1: लेकिन शास्त्री जी, वो पहले वाले अध्यक्ष का क्या हुआ?
2: शास्त्री जी को उस पर विश्वास नहीं रहा। वो कंपनी के साथ मिलकर हड़ताल को बीच में ही खत्म करवा सकता है।
1: फिर तो उसे हटाकर अच्छा ही किया, कंपनी से ज्यादा हमें अपने बीच के गद्दारों से खतरा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा तूने, बिल्कुल ठीक। अब एक बात ध्यान से सुन
1: जी,
0: दलित मजदूरों का जिम्मा तुझ पर रहा।
1: हाँ।
0: बलबीर स्वामी कल जाकर कंपनी के अधिकारियों को हफ्ते भर का नोटिस देगा, ठीक है?
1: जी।
0: अगर नोटिस पर कंपनी ने संज्ञान न लिया तो 20 तारीख से हड़ताल होगी।
1: सो तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन मजदूर मुझसे कुछ सवाल भी कर सकते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दूंगा?
0: कैसे सवाल?
1: वो हड़ताल से होने वाले नफा नुकसान का सवाल उठा सकते हैं।
2: हाँ शास्त्री जी, अब मजदूरों का दिल जीतने के लिए हमारे पास ठोस जवाब तो होना ही चाहिए ना।
0: यशवंत
1: जी,
0: तू अपने इलाके में दलित मजदूरों की सभा का आयोजन कर।
1: ठीक है,
0: मैं बलबीर स्वामी को सब समझा दूंगा। नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता
1: जी।
0: रही बात नफे की, तो हड़ताल होने से नफा ही नफा है। बता कब होगी ये सभा?
1: शास्त्री जी कल शाम को ठीक रहेगा?
0: हाँ ठीक रहेगा।
1: मेरा आपसे एक अनुरोध है।
0: अरे तू तो अपना खास आदमी है, अनुरोध क्यों करता है? तेरा तो हक है हम पर, अपना हक समझ कर क्या है? बोल।
1: इतना सम्मान देने के लिए शुक्रिया शास्त्री जी, वो मैं चाहता हूँ कि नोटिस कल की बजाय परसों दिया जाए।
0: ऐसा क्यों चाहता है तू?
1: शास्त्री जी मैं चाहता हूँ कि नोटिस सभा में सबके सामने पढ़कर सुनाया जाए, इससे मजदूरों के मन में रही सही शंका भी जाती रहेगी और मजदूर दिल खोल कर हमारा साथ देंगे।
0: भाई बहुत खूब, बहुत खूब यशवंत। तू मजदूरों की नब्ज अच्छी तरह पहचानने लगा है।
1: अरे शास्त्री जी।
0: ऐसा ही होगा।
1: अब शास्त्री जी, अगर अब मेरी जरूरत ना हो तो मैं चलना चाहूंगा, वो कल की सभा की तैयारियां भी करनी है ना मुझे।
0: ठीक है यशवंत, तू जा।
1: अच्छा शास्त्री जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। ये तूने बहुत अच्छा किया बलबीर स्वामी, जो इस दलित नेता को अपने वश में कर लिया। अरे स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यशवंत को अपनी मुट्ठी से निकलने मत देना, समझा? ये आदमी हमारे लिए दूर की कौड़ी है। हाँ।
2: आखिर सहायक किसका हूँ? आपका शास्त्री जी, आपका। मैं तो बस आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: बलबीर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे सर पर बना रहेगा।
2: शास्त्री जी, हड़ताल में चंदा भी तो खूब आएगा ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी।
0: देख बलबीर, यूनियन के चंदे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भाई अब अध्यक्ष तू है, अरे यूनियन के फंड का तू जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करना है।
2: धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद। शास्त्री जी, अंधेरा हो चुका है, आप कहें तो अंदर से गिलास और सोडा ले आऊं।
0: जा जा जा, जा ले आ जा।
2: जी शास्त्री जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी अभी।

0: राम राम शास्त्री जी।
1: राम राम। तो आ गया यशवंत
0: जी, बलवीर स्वामी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है।
1: हाँ यशवंत, मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है।
0: शास्त्री जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
1: उस दिन कंपनी के दलालों ने

0: ओफ, देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर नारायणी, हड़ताल हम लोगों के भले के लिए ही हो रही है।
1: क्या हमारे भले के लिए? नेताजी, क्या भूखे पेट रहने में ही हमारी भलाई है? बच्चों को भूख से तड़पता देखने में हमारी भलाई है? नहीं नहीं, ऐसी भलाई ना तो आज तक मैंने कभी देखी है और ना सुनी है।
0: देख नारायणी, कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। त्याग कल के सुनहरे भविष्य की नींव है। और देख, नींव जितनी मजबूत होती है उस पर बनने वाली इमारत उतनी ही टिकाऊ होती है।
1: वाह वाह नेताजी वाह, तो आपने भी धूर्त नेताओं वाले तमाम लटके झटके सीख लिए। आपको तो बधाई देनी चाहिए बधाई।
0: खामोश खामोश हो जा नारायणी, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही नेतागिरी करनी आती है मुझे। अरे मैं तो अपने दलित भाइयों का भला चाहता। अपमान और शोषण की जिंदगी से दलित मजदूरों को उबारना ही मेरा मकसद है नारायणी।
1: अच्छा, तो जरा मैं भी तो सुनूं कि हड़ताल हमारा किस तरह भला करेगी।
0: अब वो यूनियन के अध्यक्ष बलबीर स्वामी आज शाम हम लोगों के बीच आएंगे और वही सारी बातें समझाएंगे।
1: समझाएंगे समझाएंगे या बहकाएंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो हमें हड़ताल में शामिल होने के लिए विवश करेंगे।
0: देख नारायणी, मैं तुझे अपना समझकर समझा रहा हूँ। हाँ।
1: क्या आप मुझे अपना समझते हैं?
0: अरे नारायणी, वो मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। देख मेरी बात मान और शाम को होने वाली सभा में अपनी जुबान बंद रखना, समझी?
1: ठीक है, मैं अपना मुंह सी लूंगी।
0: अच्छा, अब चलता हूँ।
2: अम्मा अम्मा।
3: अरे कौन है रे?
2: मैं हूँ अम्मा, तेरा बेटा भेगू।
3: भेगू बेटा? अच्छा।
2: और अम्मा, ये तेरी पोती पार्वती भी है।
3: अरे अरे अरे, अरे भेगू बेटा, तुझे अपनी बूढ़ी माँ की सुधा आ गई है। अरे बेटा, तुझे देखने को तो हमारी आंखें कब से तरस रही थी। आजा बेटा आजा। ओ पार्वती, आजा
1: दादी।
2: अम्मा, अब हम हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं।
1: हाँ दादी, अब हम आपके साथ रहेंगे।
3: ये क्या कह रही है पार्वती?
1: दादी, बापू को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है।
3: क्या?
2: हाँ अम्मा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य मंत्रियों ने भी श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में आज एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा।

0: इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड, नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून की अवधि में जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज हवा और बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए सुनिए आज का महिला कार्यक्रम।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने परिवार और बच्चों के साथ स्वस्थ और खुश होंगी। सखियों, ये तो आप सभी जानती हैं कि प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास में महिलाओं का योगदान अतुलनीय और बहुआयामी रहा है। वो न केवल मानव जीवन का आधार हैं, बल्कि परिवार से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हर क्षेत्र की धुरी हैं। सखियों, कृषि की शुरुआत भी सबसे पहले महिलाओं ने ही की थी। उन्होंने ही पेड़ पौधों को पहचाना और इधर उधर घूमते हुए मानव को स्थायी रूप से रहना सिखाया और सभ्यता का निर्माण हुआ। सखियों, ये तो आप सभी जानती हैं कि एक स्त्री परिवार की प्रथम शिक्षिका होती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को मानवीय मूल्य, नैतिकता और संस्कृति की परंपराएं सौंपती। माँ, बहन और जीवन साथी के रूप में महिला परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़कर रखती है और समाज को संतुलित बनाती है। नारी में वो शक्तिशाली ऊर्जा है जिसने घर को मंदिर बनाया, संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया और समाज की नैतिक धुरी को स्थिर रखा। हम अगर आज की भारतीय नारी की बात करें तो आज विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, कला और तकनीक हर क्षेत्र में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वे अपने कार्यस्थल पर निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान नारी ने आधुनिकता के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी सहज कर रखा है। नारी पुरातनता की गरिमा और आधुनिकता की क्षमता दोनों का सार एक साथ लेकर चल रही हैं। सखियों, चाहे घर हो, समाज हो या राष्ट्र हो, हमें अगर आपस में प्रेम और सामंजस्य रखना है तो उसके लिए एकजुटता जरूरी है और वो आती है आपसी संवाद, शांति और विश्वास से। इसलिए हम हर साल 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ताकि विश्व के लोगों के बीच आपसी प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। वे सभी एक साथ मिलकर खुशी के साथ रहें और साथ मिलकर इस गीत का आनंद लें।

0: सखियों, अभी आपने गीत का आनंद लिया, अब हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता महिलाओं के लिए योग। इसकी वार्ताकार हैं अपाला स्वामी।
1: योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। यह एक ऐसी पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है। योग भारत की प्राचीन परंपरा और विज्ञान का एक अनमोल उपहार है जिसको अपनाने से संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। योग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं एवं पुरुषों सभी के लिए उपयोगी है, पर महिलाओं के लिए योग का महत्व और भी अधिक है। महिलाओं का शरीर और जीवन चक्र पुरुषों से अलग होता है। वह अपने जीवन काल में किशोरावस्था, गर्भावस्था, मातृत्व, मेनोपॉज जैसे कई चरणों से गुजरती है। इन सभी चरणों में भारी मात्रा में हार्मोनल बदलाव होते हैं। आधुनिक युग में महिलाएं ना केवल घर परिवार बल्कि अपने करियर में भी फोकस कर रही है, जिसके चलते उन पर काम का बोझ और बढ़ गया है। इस कारण से वह अक्सर अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे पाती। इससे उनमें अनेकों शारीरिक व मानसिक समस्याएं, जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, PCOD, PCOS जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, थायराइड डिसऑर्डर, मोटापा, तनाव जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में योग बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। योग विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से शरीर को लचीला बनाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता

0: करता है और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। महिलाएं अक्सर घर व कार्यस्थल पर रोज एक ही तरह के काम बार बार करती है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना। इस कारण शरीर के कुछ हिस्से तो अधिक सक्रिय हो जाते हैं जबकि अन्य हिस्से कम सक्रिय रह जाते हैं। साथ ही शरीर के कुछ हिस्सों की मांसपेशियों और जोड़ों में अधिक दबाव पड़ता है, जिससे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं के लिए सजगता लाए। योगासन शरीर के सभी हिस्सों को समान रूप से सक्रियता व खिंचाव लाता है। इससे शरीर लचीला बनता है, रक्त संचार बेहतर होता है, सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और तनाव को कम करने व संतुलन लाने में मदद मिलती है। एक महिला अपने जीवन के किसी भी चरण में योगाभ्यास की शुरुआत कर सकती है, यह हमेशा लाभकारी ही साबित होता है, पर बेहतर होता है अगर वह अपने किशोरावस्था से ही योग की शुरुआत कर दे। इस उम्र में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। यह ऐसा समय है जिसमें लड़कियां पहली बार हार्मोनल बदलाव को महसूस करती है। इस उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत होती है और अचानक से आए इस बदलाव को सहज रूप से लेना चुनौतीपूर्ण होता है। इससे लड़कियों में कंफ्यूजन, इम्पेशेंस, कंसंट्रेशन में कमी, अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाने की परेशानियां सामने आती है। साथ ही बदलती जीवन शैली के कारण उनमें इररेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या काफी आम होने लग गई है। इन सभी कारणों से मानसिक तनाव, त्वचा समस्याएं, चेहरे पर अत्यधिक बालों का होना, ऐंठन, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी की दिक्कत आती है। ऐसे में नियमित रूप से योग का अभ्यास, जिसमें सूर्य नमस्कार, शीतलीकरण व्यायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुछ ऐसे आसन जैसे वृक्षासन, भुजंगासन, भद्रासन, बालासन, सभी मददगार होंगे। इनसे ध्यान केंद्रित करने में, मन को स्थिर व संतुलित करने में, मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। योग अभ्यास किशोर मन को स्थिरता और अनुशासन सिखाता है। युवावस्था में महिलाओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है अपने करियर व पारिवारिक जीवन में समन्वय स्थापित करना। इस दौरान उनके सर पर काम का बोझ, समाज व परिवार की अपेक्षाओं का बोझ और जीवन के कई पहलुओं को लेकर असमंजस की स्थिति से तनाव बढ़ता है। नींद में भी बाधा आती है। निरंतर योग का अभ्यास आत्म जागरूकता व सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। यह उन्हें सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ऐसे सभी आसन जो पेल्विक एरिया और एब्डोमेन एरिया पर फोकस करते हैं महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। पेल्विक एरिया शरीर का वह हिस्सा है जो ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना और रेक्टम के हिस्से को कवर करता है। इसलिए आसन जैसे वीरभद्रासन, भूनमनासन, मलासन, भद्रासन, हनुमान आसन, इन सभी अंगों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं और फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। फिर जो एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चरण आता है वो है गर्भावस्था। इस दौरान वजन बढ़ना, पीठ दर्द, थकावट और मानसिक चिंता आम समस्याएं होती है। कुछ आसन जैसे कटिचक्रासन कमर व पीठ को आराम देते हैं, मलासन, बद्धकोण आसन, सुप्त बद्धकोण आसन गर्भाशय को मजबूत करता है और प्रसव को आसान बनाता है। इसके अलावा मर्जरी आसन, विपरीत करनी भी प्रसव को सहज बनाने व पीठ दर्द में काफी राहत देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम और सांसों में ध्यान मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस दौरान योग करने से डिलीवरी के समय होने वाले दर्द को भी कम करने में मदद मिलती है। हालांकि गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह व योग गुरु के उचित मार्गदर्शन से ही योगाभ्यास करना चाहिए। इस दौरान सरल और सांस से संबंधित आसन करने चाहिए। पेट पर दबाव डालने वाले और अधिक खिंचाव वाले आसन नहीं करने चाहिए। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें महिलाओं की ओवरीज धीरे धीरे एस्ट्रोजन का उत्पादन कम कर देते हैं और मासिक धर्म की प्रक्रिया समाप्त होने लगती है। यह एक बड़ा बदलाव है जो महिलाओं में कई शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को जन्म देते हैं। इस दौरान थकान, अचानक गर्मी लगना व पसीने आना जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं, मूड स्विंग्स, हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे समस्याएं होती है। इस चरण में प्राणायाम, विशेषकर चंद्रभेदन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम हॉट फ्लैशेस से निजात दिला सकते हैं। इससे चिड़चिड़ापन कम होता है और शरीर में ताजगी और ठंडक का एहसास होता है। वृद्धावस्था में जोड़ों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी, तनाव, रक्तचाप आम है। हालांकि अगर कोई महिला अपने जीवन में पहले से ही योगाभ्यास करती आई है तो इन समस्याओं का कम सामना करना पड़ेगा। इस समय सरल आसन जैसे ताड़ासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, शवासन, भुजंगासन काफी लाभदायक होंगे। सभी आसनों को अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अलावा हल्का फुल्का पैदल चलना, सूक्ष्म व्यायाम के जरिए जोड़ों को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। ध्यान और प्राणायाम भी काफी लाभदायक है। वृद्धावस्था में योग महिलाओं के आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मन को शांत और आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। योग के माध्यम से एक महिला अपने जीवन को और अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकती है। योग अभ्यास के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे योग करते समय सांस लेने की तकनीक, मुद्राएं और बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। गलत तकनीक से करने से नुकसान भी हो सकते हैं। योग का अभ्यास शुरू करने से पहले किसी योग विशेषज्ञ और चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वह आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उपयुक्त योगासन और अभ्यास की सिफारिश कर सकते हैं। सभी आसनों को समय देकर आराम से एवं ध्यानपूर्वक करना चाहिए। योग करने के लिए सुबह का समय और स्वच्छ एवं शांत स्थान सबसे उपयुक्त होता है। इस समय पेट खाली होना चाहिए, आरामदायक, लचीले और हवादार कपड़े पहनने चाहिए। इन कपड़ों से आपकी त्वचा सांस ले पाएगी और पसीना सूखेगी। इससे योग करते समय कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और एकाग्र रहने में मदद मिलेगी। योग का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब इसे स्वस्थ जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए। संतुलित आहार, समय पर सोना जागना और सकारात्मक सोच जीवन में योग के प्रभाव को और अधिक गहरा बनाते हैं। तो आइए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ, सुखमय और संतुलित जीवन का आनंद लें।
1: सखियों, अभी आपने वार्ता सुनी महिलाओं के लिए योग। इसकी वार्ताकार थी अपाला स्वामी। उम्मीद है आपको ये वार्ता जरूर पसंद आई होगी। सखियों, अब हम चर्चा करेंगे पंक्चुअलिटी पर। आप सभी जानती हैं कि समय की पाबंदी एक बहुत ही अच्छी आदत है जिसे हमारे संस्कारों का एक अहम हिस्सा माना जाता है। समय पर किसी काम या मीटिंग में पहुंचना सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जब हम समय पर पहुंचते हैं तो जाने अनजाने में हम सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सखियों, जो लोग समय के पाबंद होते हैं उन पर लोग आँख बंद करके भरोसा भी करते हैं। डिसिप्लिन और समय प्रबंधन किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। अगर हम स्वयं इस बात पर अमल करते हैं तो हमें देखकर यही संस्कार हमारे बच्चों में भी आते हैं। हम हमेशा हर जगह समय पर पहुंचते हैं तो बच्चे भी समय की पाबंदी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चों में समय से उठने, समय से खाने, समय से खेलने और सोने की आदत डालें ताकि वो आदत उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बने। और सखियों, आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि एक चार्ट बनाकर उनके कमरे की दीवार पर लगा दें। ताकि उन्हें हर काम का समय याद रहे। छोटे

बच्चों की सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए रात में ही बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, बैग तैयार करके रखवा दें। जब बच्चे बचपन से ही समय पर काम करने के आदी हो जाते हैं तो उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर काम करने पर उनकी प्रशंसा भी करें और छोटे छोटे पुरस्कार देकर उनका उत्साह भी बढ़ाएं ताकि वो हर काम खुश होकर करें।

सखियों, गर्मी का मौसम है, ऐसे में हर जगह पानी की किल्लत होने लगती है। लेकिन हम दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके पानी की हर एक बूंद को बचा सकते हैं। ये केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं बल्कि भविष्य के जल संकट से बचने का प्रभावी कदम है। सखियों, ब्रश या मुंह धोते समय नल खुला ना छोड़ें, उपयोग के दौरान ही नल चलाएं। ऐसा करने से हर मिनट हम कई लीटर पानी बचा सकते हैं। नहाते समय शॉवर की जगह बाल्टी और मग का उपयोग करें, इससे पानी की खपत सीमित रहती है। फ्लश का उपयोग केवल जरूरत के अनुसार ही करें। घर में टपकते हुए नलों, पाइपों, फ्लश की मरम्मत तुरंत करवाएं। टपकने वाले नलों से सालाना कई लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तभी करें जब वे पूरी तरह से भरे हों। आरओ का वेस्ट पानी एक बाल्टी में इकट्ठा करें। इसका उपयोग पोछा लगाने, बर्तन धोने या पौधों में डालने के लिए करें। सब्जियों या फलों को धोने के बाद बचे हुए पानी को फेंकने के बजाय गमलों में डालें। अपने घर की छतों पर आने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए अंडरग्राउंड टैंक या हार्वेस्टिंग सिस्टम में इकट्ठा करें। ये ग्राउंड वाटर को बढ़ाने में अत्यधिक मददगार है। इस प्रकार सखियों, हम सभी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर जल संरक्षण में अपना सहयोग दे सकती हैं। सखियों, मन करता है कि हम आपसे और भी बातें करें, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का। तो सखियों, आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सखी निरंजना को दे विदा लेने की अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

श्रोताओं, आवश्यक सूचना सुनिए। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आकाशवाणी

भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharati.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे अर्चना जाटव के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये गारी।

0: स्मिता घांगरेकर के गाए भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी

अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सुन पाते हैं हार्टलेस फिल्म का गीत केके की आवाज में। गीत लिखा है सीमा सैनी ने और संगीत गौरव डागोनकर का है।

केके की आवाज़ में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रईस फिल्म से, जिसके बोल लिखे हैं मनोज यादव ने और धुन बनाई है जैम 8 ने।

0: केके की आवाज़ में अभी आपने रईस फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं उनके दिल में खास जगह रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कार्यकाल की सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलकर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं।
1: हम सबका सौभाग्य है आज भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सर्वाधिक अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा, 25 करोड़ लोगों को मकान दे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर काम करता है, वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। विदेशी मेहमानों ने इंदौर का मशहूर पोहा जलेबी का नाश्ता भी चखा। सम्मेलन में आज साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श होगा और शाम को द्विपक्षीय बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था, जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को तत्काल पोर्टल से हटाने और नया प्रारूप प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि नटराजन ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई, जिसके आधार पर कल उनका नामांकन रद्द किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर व दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन से इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की जिला स्तरीय समन्वय समिति DLC की बैठक आज आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और ITI मंडला द्वारा कल सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट, सुरक्षा सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, तो सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
5: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
7: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
7: अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
8: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
9: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम वो हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
10: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

सबसे पहले सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदड़े, आरती जोंदड़े की और सपना संगीता रोड इंदौर से ये गीत पसंद करने वाले हमारे श्रोता है लाल फतेह चंदानी, लीला, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए हमें पत्र मिला है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से ये हमारे श्रोता हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और गोला बाजार बक्सर से इस गीत को पसंद किया है। बीना देवी आर्य, सबिता देवी आर्य, पूनम, पूजा, एस एन आर्य, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू, राजा बाजार चौक बिहिया खारा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी, बीना और प्रतिज्ञा केशरी आप सभी सुनना चाहते हैं। पारस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं ससुराल फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन इस गीत को पसंद किया है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। साथ ही साथ इस गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दंतरिंगी से भागवत वर्मा ने। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ससुराल फिल्म का ये गीत।

हंसते जख्म इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत मदन मोहन का है और गीत लिखा है कैफी आजमी ने। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ये हैं। और बत्ता परिवार के सदस्यों के नाम हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम मोहम्मद राही, महराज जहां, ये हमारे श्रोता है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से और डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। ये हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। इसी के साथ इन्हीं के पत्र में हमारे जो अन्य नाम शामिल हैं वे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। प्रमिलागंज आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। रूपाली मालवीय, अर्चित मालवीय और सुमन मालवीय, ये हैं होशंगाबाद रोड भोपाल के हमारे श्रोता। और इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं प्रेम पर्वत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ ने। जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीत जयदेव का है।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर काम करता है, वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज़ादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5 बजे से। 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की योगदान से है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर। क्षमा कीजिए, सांध्यकालीन सभा में रात 8:35 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। सात बजकर 21 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनवाया जाएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है तुम सही हो मार्गी। ये नाटक आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसके लेखक है विमल कांत येंडे और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए सरवर हुसैन का सारंगी पर बजाया राग पूर्या कल्याण। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और ओटीटी एवेव्स पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में सुनवाते हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे अर्चना जाटव के गाए लोकगीत।

अर्चना जाटव के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे स्मिता घांगरेकर की गाए भजन।

अर्चना जाटव के सर में क्षमा कीजिए, स्मिता घोंगरेकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कुछ भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं और प्यार हो गया फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। गीत जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत तैयार किया है नुसरत फतेह अली खान ने।

परदेश फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाज़ में अब सुनते हैं इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत, जिसके लिए संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीरा कपूर की आवाज़ों में, गीत लिखा है समीर ने और संगीत संदेश शांडिल्य का है।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: आर यू।
1: कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम, अलका याग्निक और करीना कपूर की आवाज़ों में। संगीत संदेश शांडुल्य का था और गीत समीर का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। समय हो चला है इस घंटे की खास खबरों का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। यह विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने की बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। उद्योगपतियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशा।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं। मैं आपका दोस्त जावेद इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामेन, आज के कहकशां प्रोग्राम में महफिल समा सीरीज के तहत हम बात करेंगे फर्द की जिंदगी में तौबा की अहमियत मौजू पर, और साथ ही लुत्फंदोज होंगे मखमली आवाजों वाले गुलूकारों की कव्वालियों से। दोस्तों, किसी बर्तन में कोई अच्छी चीज डालने के लिए जरूरी है कि पहले उसको अच्छी तरह साफ कर लिया जाए और उसमें कोई गंदगी बाकी न रहे। इंसान का दिल भी एक बर्तन की तरह है जिसकी

0: दिया है।
1: सामईन, अभी आप गुलूकार शमीम बानो की आवाज में कव्वाली समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था अनवर फरुखावादी का। दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी फर्द की जिंदगी में तौबा की अहमियत के बारे में। सामईन, तौबा के लिए पिछले किए पर निदामत के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए दोबारा गुनाह ना करने का अज्म भी जरूरी है। आदमी अपने दिल में ये इरादा रखे कि वो आइंदा कभी इस गलती का आदा ना करेगा। इस बात का नाम तौबा नहीं कि अभी गलती किए देते हैं, फिर कभी गुनाह हो गया तो फिर तौबा कर ली जाएगी। इस तरह की सोच इस बात की अलामत है कि वो जबान और दिल की रफाकत के साथ पशेमानी का इजहार नहीं कर रहा है और अपनी तौबा में सादिकुल कौल नहीं है। दोस्तों, कुछ गुनाह और कोताहियां बंदों के हुकूक से मुताल्लिक हैं। ये हुकूक दो तरह के हैं, माली और गैर माली। इंसान से मुताल्लिक माली हुकूक में कोताहियों की तौबा ये है कि साहिब हक को उसका हक अदा कर दिया जाए या उससे मुआफ करा लिया जाए। किसी का देना बाकी हो, बिला इजाजत किसी की चीज इस्तेमाल कर ली हो, किसी को उसके हक से महरूम कर दिया हो, मीरास में अपने हक से ज्यादा ले लिया हो, ये तमाम सूरतें माली हक तल्फी की हैं। इनका अदा करना जरूरी है, और अगर अदा करने के लायक ना हो तो जरूरी है कि उससे माजरत करे और उसको राजी करके अपना गुनाह माफ करवा ले। बाज हुकूक गैर माली होते हैं, जैसे किसी को गाली दी या किसी को बुरा भला कहा, किसी की गीबत की, बहतान लगाया। ये तमाम बातें हक तल्फी और गुनाह के दायरे में आती हैं। इन गुनाहों की तौबा ये है कि जिसके साथ ज्यादती की है उससे अपनी गलती की माफी मांगी जाए। ये जरूरी नहीं कि इस बात की भी वजाहत की जाए कि उसने उसके बारे में क्या क्या कहा है और क्या कुछ ज्यादती की है, बल्कि मुबहम तौर पर मुआफ करने वाला यूं कह दे कि तुमसे जो कुछ भी गलती हुई हो मैं उसे मुआफ करता हूं, तो ये भी काफी है। एक एक गलती का शुमार कराना जरूरी नहीं। अगर खुदा के किसी बंदे के हक में ज्यादती हो गई हो तो वो बड़ा हो या छोटा, ज्यादा बाइज्जत हो या कम मुअज्ज़ज़, उज्र ख्वाही में तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूकुल इबाद में होने वाली कोताहियां अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे जब तक के खुद साहिब मामला माफ ना कर दे। यहां तक के शहादत और अल्लाह के रास्ते में जान की सुपुर्दगी जैसा अजीम अमल भी इंसान को इंसान के हक में होने वाली कोताहियों से बचा नहीं सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जंग लगी तलवार। सुनिए आज इसकी पांचवी कड़ी।
2: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, लिचू अपने बेटे जगन्नाथ से पीने के लिए पानी मांगता है। जगन्नाथ पानी लेने जाता है। लिचू अपनी पत्नी की लाश को गिद्धों चीलों द्वारा नोचकर खाए जाने के विभत्स दृश्य को याद करता है। शिबू और लिचू अपने समाज की दयनीय दशा और हड़ताल

भयावहता को लेकर बात करते हैं। जुड़वा भाई रामू और बामू ठाकुर साहब की चापलूसी करके उसके साथ नशा करते हैं। दोनों ठाकुर साहब को मजदूर यूनियन की गोपनीय बात बताते हैं। शिबू और यशवंत के बीच यूनियन नेताओं की मौका परस्ती को लेकर गंभीर चर्चा होती है। तभी शिबू को खांसी उठती है और बलगम के साथ खून निकलता है। यशवंत उसे टीबी होने की बात बताता है। शिबू यशवंत से खुलकर बात करता है। यशवंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब

0: 나라니? 어 나라니? 들어갈 와서도 골 나라니?
1: 골뱅이 후지!
2: नेताजी आप ही साथ हैं?
3: शिबू की तबीयत ठीक नहीं है, जरा खटिया तक इसे पहुंचाने दे।
2: आइए
3: चल चल खटिया पर लेट जा शिबू।
2: क्या हुआ आपको?
3: नारायणी इसे टीबी हो गई है, इसे आराम और अच्छे खाने पीने की सख्त जरूरत है।
2: अच्छे खाने की? घर में खाने के लिए तो होता नहीं, अच्छा खाना कहाँ से लाऊंगी मैं?
3: जैसे भी हो शिबू की दवा दारू भी बराबर चलती रहनी चाहिए, देख डॉक्टर ने खास हिदायत दी है।
2: आपने इनकी मदद की, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
3: अरे एहसान कैसा नारायणी, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। अच्छा शिबू अपना ख्याल रखना।
0: यशवंत जी ठीक कहते हैं, मैं अपना ख्याल।
2: आप ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जी।
0: रोज रोज मीटिंग होती है।
4: भैया यूनियन का हमको तो कुछ समझ नहीं।
5: मजदूर किसान भाइयों
4: सुनो कुछ कह रहे हैं।
5: आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मजदूर हड़ताल में किसानों का क्या काम?
4: हाँ ठीक,
5: लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूनियन किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ रही है।
4: अच्छा,
5: ये धरती हमारी माँ है, जब तक किसान और मजदूर अपने अधिकारों के प्रति चौकस नहीं होंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं।
4: ये बात तो सही,
5: हमें एक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।
6: मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।
5: शान साथियों शान, यूनियन चाहती है कि जमीन रखने की सीमा 150 बीघा से घटाकर 60 बीघा कर देनी चाहिए।
4: हाँ 60 बीघा
5: जमीन से किसानों को खदेड़ना बंद होना चाहिए।
7: बिल्कुल,
5: अधिया पर खेती करने वालों को जमीन पर पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कर लेना बंद होना चाहिए। होलसेल व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ब्याज का इंतजाम हो, और भी बहुत से नियम बनाने चाहिए। लेकिन इन मांगों को पूरा करवाने के लिए मजदूरों और किसानों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल को सफल बनाना होगा। किसानों मजदूरों को क्रांति करनी होगी, क्रांति।
6: मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता।
2: शास्त्री जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
8: शास्त्री जी कहाँ है? शास्त्री जी तो अभी तक आए नहीं है।
2: क्या शास्त्री जी अभी तक नहीं आए? तो तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें ही शास्त्री जी समझ रही थी।
8: यशवंत लगता है ये महिला पहली बार सभा में आई है, इसे बता कि हम कौन है।
3: अरे नारायणी
2: जी,
3: नारायणी ये शास्त्री जी के एजेंट बलबीर स्वामी है।
2: एजेंट? ये एजेंट का क्या मतलब होता है?
3: एजेंट अंग्रेजी का शब्द है नारायणी।
2: अब मैं क्या जानू अंग्रेजी बंग्रेजी?
3: एजेंट को अपनी हिंदी भाषा में दलाल कहते हैं।
5: ए, ए, ए, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और ये किस पे हंस रहे हो तुम लोग?
2: दलाल पर तो जमाना हंसता है, फिर हम तुम पर हंस रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है?
5: क्या कहा? मैं और दलाल? नहीं नहीं, मैं तो शास्त्री जी का सहायक हूँ। सहायक?
2: सहायक? लगता है दलाल को अब सहायक कहा जाने लगा है। कोई बात नहीं सहायक जी, बताइए तो जरा हड़ताल कब तक चलेगी?
5: हड़ताल? हाँ, 15 दिन के भीतर कंपनी हमारे आगे झुक जाएगी। कंपनी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, तब हर मजदूर खुशहाल होगा।
6: इस बात की गारंटी दे सकते हैं?
2: हाँ,
6: बताइए क्या गारंटी है इस बात की? बताइए।
5: देखिए अभी हमारे बीच शास्त्री जी आने वाले हैं और गारंटी भी वही देंगे। शास्त्री जी हमारे बीच आ चुके हैं।
0: अरे
5: आप लोग जोरदार तालियां बजाकर शास्त्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं यूनियन के दलित प्रतिनिधि यशवंत से अनुरोध करूंगा कि वो शास्त्री जी को मजदूरों की ओर से गुलाब के फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत करें। लो ये हार लो और शास्त्री जी के गले में डाल दो।
3: लाइए बलवीर भाई। शास्त्री जी लीजिए।
7: धन्यवाद धन्यवाद साथियों। साथियों आज हमने दलित के हाथों हार पहनकर दलितों को सम्मान दिया है। हमारी नजर में दलित भी इंसान है, उनके साथ भेदभाव की नीति का खात्मा होना चाहिए।
9: क्या बात है, क्या बात है।
7: हम सभी को मिलकर इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।
10: शास्त्री जी
11: जिंदाबाद।
10: शास्त्री जी
11: जिंदाबाद।
10: शास्त्री जी संघर्ष करो,
11: हम तुम्हारे साथ हैं।
10: शास्त्री जी संघर्ष करो,
11: हम तुम्हारे साथ हैं।
10: दलित नेता यशवंत भाई
11: जिंदाबाद। जिंदाबाद
10: दलित नेता यशवंत भाई
11: जिंदाबाद। जिंदाबाद
7: साथियों। साथियों यूनियन आप लोगों के लिए 2 साल से आंदोलन कर रही है। ये हड़ताल आर पार की लड़ाई होगी। मजदूर किसानों को आशंका सता रही होगी कि हड़ताल के लिए धन कहां से आएगा। धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनियन की देश भर में 7 शाखाएं खुल चुकी हैं। हर शाखा से धन आएगा। दिल्ली मुख्यालय ने भी मदद करने का आश्वासन दिया है।
2: बलबीर स्वामी ने कहा है कि कंपनी 15 दिनों के अंदर हमारी शर्तें मान लेगी। क्या आप इस बात की गारंटी देंगे?
7: 15 दिन लगे या महीना, कंपनी को हमारी शर्तों के आगे झुकना ही होगा। साथियों मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई भी मजदूरों का साथ दे रहे हैं। जब किसान भाइयों के हित की बात आएगी तो मजदूर भाई भी किसान भाइयों के साथ खड़े होंगे। इस बात का सबूत आज यहाँ किसान भाइयों की मौजूदगी है।
9: किसान मजदूर एकता।
7: मुझे सूचना मिली है कि सरप्लस मजदूरों की लिस्ट लगा दी गई है, छटनी की जाने वाली है। कंपनी के इस हिमाकत का विरोध करने के लिए हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या हमारे मजदूर हड़ताल के लिए तैयार है?
2: क्या होगा हड़ताल से? कंपनी कहती है कि काम नहीं तो पगार नहीं। पगार बिना हम अपना पेट कैसे भरेंगे? क्या इन भाषणों से? नहीं नहीं, हमें नहीं करनी हड़ताल।
6: हाँ, हमें नहीं करनी हड़ताल, नहीं करनी हड़ताल।
8: अरे नारायणी, ये तू क्या कसम कर रही है? इस वक्त तेरा शांत रहना ही अच्छा होगा।
12: अरे यशवंत, तू नारायणी के कान में क्या फुसफुसा रहा है रे? ठीक ही तो कह रही है नारायणी। अरे हड़ताल करवा कर क्यों तू चीलो गिद्धों को निमंत्रण दे रहा है?
13: भाइयो, हम नारायणी की बात का समर्थन करते हैं। हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
6: हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
7: साथियों साथियों साथियों मेरी बात सुनो। आज हम हड़ताल की तारीख घोषित करने वाले थे, मगर लगता है कि हमारे बीच कंपनी के कुछ चमचे भी मौजूद हैं, जो कंपनी के इशारे पर मजदूरों के बीच फूट डालना चाहते हैं। हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसे नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, मगर हम कंपनी के इन दलालों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे।
13: भाइयों, ये शास्त्री झूठ बोल रहा है। अरे चलो भाई चलो, पेट पालने का इंतजाम करे, घर पर बच्चे राह देख रहे होंगे। अरे चलो चलो।
6: भाइयों, भाषणों से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है।
7: अरे भाइयों सुनो, अरे सुनो, अरे भाइयों मेरी बात सुनो।
13: वही शास्त्री की बात।

0: सारे किए कराए पर पानी फिर गया।
1: क्या करें शास्त्री जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: इस पत्थर को क्या देख रहे हो यशवंत? इस पर स्वतंत्रता आंदोलन में 1921 में शहीद हुए अनाम लोगों के नाम खुदे हुए हैं।
3: हाँ वही पढ़ रहा हूँ, अरुण कुमार उर्फ लाल आजाद, सरयू प्रसाद, भगवान सिंह, रामनाथ सिंह और गरीब हुसैन।
2: अरे यशवंत, अरे अभी तुम नौजवान हो, तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं हमें, तुम्हें बहुत बड़ा लीडर बनना है, तुम यूनियन की वर्दी का सम्मान करना सीखो। भाई इन मरे हुए लोगों के नाम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
3: बलवीर स्वामी,
2: हाँ
3: इस पत्थर पर मरे हुए लोगों के नाम नहीं बल्कि देश के लिए अपना सब कुछ अपनी जान न्योछावर कर देने वालों के नाम है। इन शहीदों के नाम से ही हमें अपने देश के लिए अपने समाज के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा मिलती है। अगर तुमने इन शहीदों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम शास्त्री के सहायक हो।
2: यशवंत देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को पहचान नहीं सका। इन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ, देखो देखो इनके आगे मैं अपना शीश नवाता हूँ, ठीक है?
3: अच्छा अच्छा खैर जाने दो। तुम कह रहे थे कि शास्त्री जी का संदेशा लेकर आए हो?
2: हाँ शास्त्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं अभी और इसी वक्त।
3: भला शास्त्री जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
2: भाई ये तो शास्त्री जी ही बताएंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ अपनी साइकिल लेकर अभी चलो।
3: देखो बलवीर मेरी अपनी कुछ शंकाएं हैं।
2: हाँ
3: पहले उनका समाधान करो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
2: भाई तुम्हारी तमाम शंकाओं का समाधान शास्त्री जी के पास है, जो भी पूछना उन्हीं से पूछना। अब तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो।
3: ठीक है चलो।
4: सब ठीक हो जाएगा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
5: नारायणी
4: जी,
5: नारायणी
4: बोलो।
5: मेरे जैसे नकारा इंसान का मर जाना ही अच्छा है।
4: नहीं नहीं
5: एक तो बेकार और ऊपर से बीमार।
4: पानी दो क्या?
5: नहीं बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं, टीबी है मुझे, टीबी। एक दिन मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी ये महामारी।
4: शुभ शुभ बोलो जी, औरत तभी तक जिंदा रहती है जब तक उसका सुहाग बना रहता है। इधर पति ने आंख मूंदी, उधर समाज की गिद्ध दृष्टि जम गई। आपको मेरी कसम, मैं कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना।
5: नारायणी मैं जिंदा हूं ही कहां, अरे मैं तो अपनी लाश ढो रहा हूं, अपनी लाश। अरे कुछ दिन बाद इस लाश से बदबू उठने लगेगी।
4: नहीं, नहीं।
5: तो तुम खुद ही मुझसे घृणा करने लगोगी।
4: नहीं,
5: हाँ घृणा।
4: ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, मेरा ना सही, इस बच्चे का तो ख्याल करो। आप नहीं रहे तो इसे पिता का दुलार कौन देगा, कौन देगा इसे पिता का दुलार?
5: मैं समझता हूँ नारायणी, पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी, मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी?
4: आप तो रोने लगे।
5: अरे नारायणी रोना तो क्या करूँ, कितना विवश हूँ मैं। अरे मुझे किसी का पति, किसी का पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
4: अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप चिंता ना कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, आपका इलाज कराऊंगी, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हाँ जल्दी अच्छे हो जाएंगे।
5: नहीं नारायणी नहीं। देखो नारायणी मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता।
4: नहीं मुझे कोई दुख नहीं है।
5: मेरी बात सुनो, तुम मेरी ब्याहता हो, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमाऊं और

0: तुम घर संभालो।
1: लेकिन
0: मगर देखो मेरी किस्मत देखो। कमाने तुम जाती हो और घर में मैं पड़ा रहता हूँ। मैं अपंग बनकर पड़ा रहता हूँ।
1: नहीं, नहीं, ऐसा न कहिए।

0: सुक्का उजियारा जरूर आएगा।
1: नहीं महारानी नहीं, ऐसा नहीं होगा।
0: सुक्का उजियारा जरूर आएगा, यकीन मानिए आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।
1: नहीं होगा,
0: अरे मुन्ना जा क्या, मैं इसे चुप कराती हूँ।
1: जा, तू इसे जाकर चुप करा, मेरी बात छोड़, मैं आराम करता हूँ। जा, तू मुन्ने को संभाल, जा।
0: मैं देखती हूँ। ना रो मुन्ने, ना रो, चुप हो जा मेरी लाडली। मैं तेरे लिए मेले से खिलौना लाऊंगी। हाँ मेरे बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना लाऊंगी, गुड़िया लाऊंगी तेरे लिए। चुप हो जा, चुप हो जा मेरी लाडली, चुप हो जा मेरा बेटा। अरे तू तो और जोर से रोने लगा, लगता है तू भूखा है। मैं तुझे दूध पिलाती हूँ।
1: दूध पिलाती हूँ? दूध पिलाएगी कहाँ से? अरे शरीर में जान होगी तो दूध पिलाएगी ना, दूध पिलाएगी।
2: Oh, my God.

0: राम राम शास्त्री जी।
1: राम राम। तो आ गया यशवंत
0: जी, बलवीर स्वामी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है।
1: हाँ यशवंत, मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है।
0: शास्त्री जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
1: उस दिन कंपनी के दलालों ने सभा को सफल नहीं होने दिया। कंपनी नहीं चाहती कि दलित मजदूरों और दूसरे मजदूरों को उनका अधिकार मिले, और यही वजह है कि हमें बलबीर को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। ये बलबीर कहाँ रह गया?
0: जी वो बाहर किसी से बतिया रहा है, बस आता ही होगा।
2: मैं हाजिर हूँ शास्त्री जी। जी
1: हाँ हाँ बलबीर
2: जी। जी
1: अब हम असल बात शुरू करते हैं।
0: शास्त्री जी आप बात शुरू करें।
1: देख यशवंत, तू दलितों का नेता है
0: जी,
1: सभी तेरा सम्मान करते हैं, तेरी बात मानते हैं।
0: सो तो ठीक है।
1: मुझे लगता है कि तेरे समाज के कुछ लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है।
0: नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसा नहीं है।
1: ऐसा ही है यशवंत, बिल्कुल ऐसा ही है।
0: चीपो,
1: सभा वाले दिन हड़ताल के विरोध में उस स्त्री ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। वो स्त्री दलित लाइन में ही रहती है ना?
0: कौन? नारायणी?
1: हाँ शायद यही नाम होगा उसका। शायद वो कंपनी के अधिकारियों से मिली हुई है।
0: नहीं शास्त्री जी, नहीं शास्त्री जी, आपका शक बिल्कुल गलत है। नारायणी ऐसा नहीं कर सकती।
2: तो फिर उसने उस दिन हड़ताल का विरोध क्यों किया था?
0: अरे बलवीर, उसके पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है। अगर हड़ताल का मकसद हमारे हित से जुड़ा है तो उसे समझाने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा।
1: गुड, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पैक पिएगा?
0: जी शास्त्री जी, मैं पीता नहीं।
1: हाँ पीना भी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है ये शराब। भाई हमने यूनियन का स्थानीय अध्यक्ष बलबीर स्वामी को बना दिया है, क्यों?
0: लेकिन शास्त्री जी, वो पहले वाले अध्यक्ष का क्या हुआ?
2: शास्त्री जी को उस पर विश्वास नहीं रहा। वो कंपनी के साथ मिलकर हड़ताल को बीच में ही खत्म करवा सकता है।
0: फिर तो उसे हटाकर अच्छा ही किया। कंपनी से ज्यादा हमें अपने बीच के गद्दारों से खतरा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तूने, बिल्कुल ठीक। अब एक बात ध्यान से सुन
0: जी,
1: दलित मजदूरों का जिम्मा तुझ पर रहा।
0: हाँ।
1: बलबीर स्वामी कल जाकर कंपनी के अधिकारियों को हफ्ते भर का नोटिस देगा, ठीक है?
0: जी।
1: अगर नोटिस पर कंपनी ने संज्ञान न लिया तो 20 तारीख से हड़ताल होगी।
0: सो तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन

0: मजदूर मुझसे कुछ सवाल भी कर सकते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दूंगा?
1: कैसे सवाल?
0: वो हड़ताल से होने वाले नफा नुकसान का सवाल उठा सकते हैं।
2: हाँ शास्त्री जी, अब मजदूरों का दिल जीतने के लिए हमारे पास ठोस जवाब तो होना ही चाहिए ना।
1: यशवंत
0: जी,
1: तू अपने इलाके में दलित मजदूरों की सभा का आयोजन कर।
0: ठीक है,
1: मैं बलबीर स्वामी को सब समझा दूंगा। नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता
0: जी।
1: रही बात नफे की, तो हड़ताल होने से नफा ही नफा है। बता कब होगी ये सभा?
0: शास्त्री जी, कल शाम को ठीक रहेगा?
1: हाँ ठीक रहेगा।
0: मेरा आपसे एक अनुरोध है।
1: अरे तू तो अपना खास आदमी है, अनुरोध क्यों करता है? तेरा तो हक है हम पर, अपना हक समझ कर क्या है? बोल।
0: इतना सम्मान देने के लिए शुक्रिया शास्त्री जी, वो मैं चाहता हूँ कि नोटिस कल की बजाय परसों दिया जाए।
1: ऐसा क्यों चाहता है तू?
0: शास्त्री जी, मैं चाहता हूँ कि नोटिस सभा में सबके सामने पढ़कर सुनाया जाए। इससे मजदूरों के मन में रही सही शंका भी जाती रहेगी और मजदूर दिल खोल कर हमारा साथ देंगे।
1: भाई बहुत खूब, बहुत खूब यशवंत। तू मजदूरों की नब्ज अच्छी तरह पहचानने लगा है।
0: अरे शास्त्री जी।
1: ऐसा ही होगा।
0: अब शास्त्री जी, अगर अब मेरी जरूरत ना हो तो मैं चलना चाहूंगा, वो कल की सभा की तैयारियां भी करनी है ना मुझे।
1: ठीक है यशवंत, तू जा।
0: अच्छा शास्त्री जी, नमस्कार।
1: नमस्कार। ये तूने बहुत अच्छा किया बलबीर स्वामी, जो इस दलित नेता को अपने वश में कर लिया। अरे स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यशवंत को अपनी मुट्ठी से निकलने मत देना, समझा? ये आदमी हमारे लिए दूर की कौड़ी है। हाँ।
2: आखिर सहायक किसका हूँ? आपका शास्त्री जी, आपका। मैं तो बस आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: बलबीर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे सर पर बना रहेगा।
2: शास्त्री जी, हड़ताल में चंदा भी तो खूब आएगा ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी।
1: देख बलबीर, यूनियन के चंदे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भाई अब अध्यक्ष तू है, अरे यूनियन के फंड का तू जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करना है।
2: धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद। अब शास्त्री जी, अंधेरा हो चुका है, आप कहें तो अंदर से गिलास और सोडा ले आऊं।
1: जा जा जा, जा ले जा।
2: जी शास्त्री जी, जी, जी, अभी लाया।

0: ओफो, देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर नारायणी, हड़ताल हम लोगों के भले के लिए ही हो रही है।
1: क्या हमारे भले के लिए? नेताजी, क्या भूखे पेट रहने में ही हमारी भलाई है? बच्चों को भूख से तड़पता देखने में हमारी भलाई है? नहीं नहीं, ऐसी भलाई ना तो आज तक मैंने कभी देखी है और ना सुनी है।
0: देख नारायणी, कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। त्याग कल के सुनहरे भविष्य की नींव है। और देख, नींव जितनी मजबूत होती है उस पर बनने वाली इमारत उतनी ही टिकाऊ होती है।
1: वाह वाह नेताजी वाह, तो आपने भी धूर्त नेताओं वाले तमाम लटके झटके सीख लिए। आपको तो बधाई देनी चाहिए बधाई।
0: खामोश खामोश हो जा नारायणी, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही नेतागिरी करनी आती है मुझे। अरे मैं तो अपने दलित भाइयों का भला चाहता। अपमान और शोषण की जिंदगी से दलित मजदूरों को उबारना ही मेरा मकसद है नारायणी।
1: अच्छा, तो जरा मैं भी तो सुनूं कि हड़ताल हमारा किस तरह भला करेगी।
0: अब वो यूनियन के अध्यक्ष बलबीर स्वामी आज शाम हम लोगों के बीच आएंगे और वही सारी बातें समझाएंगे।
1: समझाएंगे समझाएंगे या बहकाएंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो हमें हड़ताल में शामिल होने के लिए विवश करेंगे।
0: देख नारायणी, मैं तुझे अपना समझकर समझा रहा हूँ। हाँ।
1: क्या आप मुझे अपना समझते हैं?
0: अरे नारायणी, वो मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। देख मेरी बात मान और शाम को होने वाली सभा में अपनी जुबान बंद रखना, समझी?
1: ठीक है, मैं अपना मुंह सी लूंगी।
0: अच्छा, अब चलता हूँ।

0: अम्मा।
1: अरे कौन है रे?
0: मैं हूँ अम्मा, तेरा बेटा भृगु।
1: भृगु बेटा?
0: और अम्मा ये तेरी पोती पार्वती भी है।
1: अरे अरे अरे भृगु बेटा, तुझे अपनी बूढ़ी माँ की सुधा आ गई है। अरे बेटा, तुझे देखने को तो हमारी आंखें कब से तरस रही थी। आजा बेटा, आजा। ओ पार्वती, आजा
2: दादी।
0: अम्मा, अब हम हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं।
2: हाँ दादी, अब हम आपके साथ रहेंगे।
1: ये क्या कह रही है पार्वती?
2: दादी, बापू को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है।
1: क्या?
0: हाँ अम्मा,
2: अब हम यहीं रहेंगे। बापू को यहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा।
1: ना पार्वती, ना, यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा बेटा।
0: ये तुम क्या कह रही हो अम्मा?
1: हम सच कह रहे हैं बेटा। अरे मजूरन की हड़ताल होने वाली है ना।
2: क्या?

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। यह विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच बन जाएगा, वहां से भी तबादला किया जाएगा। और प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। मैं हूं आपका दोस्त आयुष सक्सेना। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है और इसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा स्रोत, सुरक्षा और विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत की विशेष स्थिति यह है कि उसके अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में भारत ने संतुलित और सावधानीपूर्ण रुख अपनाते हुए शांति और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। इस संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, व्यापारिक मार्गों पर खतरा और दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने क्या रुख अपनाया है और भारत सरकार ने अपने नागरिकों तथा राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। भारत के लिए ये स्थिति काफी संवेदनशील है क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों के साथ काफी अच्छे रहे हैं। एक ओर अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है, वहीं इजराइल रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत का करीबी सहयोगी है। दूसरी तरफ ईरान भी भारत के लिए ऊर्जा और तेल के स्रोत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ऐसे में भारत ने इस पूरे संघर्ष के दौरान संतुलित और शांतिपूर्ण रुख अपनाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने शुरुआत से ही कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीतिक माध्यम से होना चाहिए। भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता दूसरे देशों में और पश्चिम एशिया में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर रही है। वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, कामगार और व्यवसायी रहते हैं। संघर्ष बढ़ने के बाद भारत ने अपने दूतावासियों के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की और लगातार स्थिति पर नजर रखी। जरूरत पड़ने पर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी भी की गई। विदेश मंत्रालय लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है ताकि लोग सुरक्षित क्षेत्रों में रहें और अनावश्यक यात्राओं से बचें। इसके अलावा भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं क्योंकि भारत अपनी जरूरत का काफी तेल विदेशों से आयात करता है और पश्चिम एशिया तेल आपूर्ति का प्रमुख क्षेत्र है। युद्ध बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत, महंगाई और परिवहन लागत पर भी पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है
1: परिवहन।
0: इसके अलावा भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं क्योंकि भारत अपनी जरूरत का काफी तेल विदेशों से आयात करता है और पश्चिम एशिया तेल आपूर्ति का प्रमुख क्षेत्र है। युद्ध बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी देखने को मिली है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत, महंगाई और परिवहन लागत पर पड़ा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा व्यापारिक मार्गों का है। पश्चिम एशिया के समुद्री रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि संघर्ष बढ़ता है और समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो भारत के व्यापार और आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत ने अब तक काफी संतुलित और समझदारी के साथ स्थिति को संभालने की कोशिश की है। भारत की विदेश नीति हमेशा शांति, संवाद और वैश्विक स्थिरता पर जोर देती रही है। यही कारण है कि भारत लगातार सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील कर रहा है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि कैसे ये संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका प्रभाव देश विदेश के बाजारों पर भी दिखाई देता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अगर हम भारतीय रुपये की बात करें तो जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित माने जाने वाली संपत्तियों और मुद्राओं की ओर रुख करते हैं। ऐसी परिस्थिति में विदेशी निवेश का प्रवाह प्रभावित हो सकता है जिसका असर रुपये की स्थिति पर पड़ता है। रुपये में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव आयात और निर्यात पर भी दिखाई देता है। इस विषय पर आगे भी हम चर्चा करेंगे एक प्यारे से गीत के बाद।

में चर्चा की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस अपील की जिसने देशभर में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कुछ समय के लिए संयम और जिम्मेदारी के साथ आर्थिक निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बचत करने, सोने की अनावश्यक खरीदी से बचने, स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने तथा संसाधनों को सोच समझकर उपयोग करने की बात की है। लेकिन सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी अपील क्यों की? दरअसल भारत अपनी जरूरत के एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। कच्चा तेल, सोना और कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं विदेशों से आती हैं। जब पश्चिम एशिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल की कीमतों में असर पड़ता है। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत को अब वही तेल खरीदने के लिए पहले से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। इसी तरह भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में से एक है। जब हम विदेशों से अधिक सोना खरीदते हैं तो उसके बदले भी बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च करते हैं। यदि ऐसे समय में तेल और सोने दोनों का आयात बढ़ जाए तो देश के विदेश मुद्रा भंडार पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक ताकत का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसी के माध्यम से देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, आवश्यक वस्तुओं का आयात करता है और आर्थिक संकटों का सामना करता है। इसलिए सरकार चाहती है कि वर्तमान परिस्थितियों में देशवासी थोड़ा सावधानी बरतें ताकि अनावश्यक आयात कम हो और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। यदि करोड़ों लोग थोड़ी थोड़ी बचत करें, पेट्रोल और डीजल का समझदारी से उपयोग करें और विदेशों से आने वाली वस्तुओं की खरीद कम करें तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने इसे केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी और देश हित से जुड़ा विषय बताया है। अब बात करते हैं कि हम युवा इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि देश की बड़ी समस्याओं का समाधान केवल सरकार या बड़े व्यवसाय ही कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में देश की ताकत उसके नागरिकों से बनती है और युवाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम अपने जीवन में कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी दूरी के लिए वाहन का उपयोग ना करना, सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग को अपनाना, बिजली और पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता देना और सोच समझकर खर्च करना। हम स्थानीय व्यापारियों और भारतीय निर्माताओं को समर्थन करके भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। जब हम स्थानीय वस्तुएं खरीदते हैं तो न केवल रोजगार बढ़ता है बल्कि देश का पैसा देश के भीतर ही घूमता है। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है, सही जानकारी का प्रसार। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैलती हैं। एक जागरूक युवा के रूप में हमें केवल विश्वसनीय जानकारी साझा करनी चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, देशभक्ति केवल विशेष अवसरों पर व्यक्त किए जाने वाली भावना नहीं है। सच्ची देशभक्ति तब दिखाई देती है जब हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जो समाज और देश दोनों के लिए लाभदायी हों। यदि हम ऊर्जा बचाते हैं, संसाधनों का सम्मान करते हैं, जिम्मेदारी से खर्च करते हैं और देश हित को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो यही हमारी व्यवहारिक देशभक्ति होती है। और जब करोड़ों युवा ऐसा सोचने लगते हैं तो कोई भी चुनौती देश की प्रगति को रोक नहीं सकती।

दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, भारत पर उसके प्रभाव और प्रधानमंत्री जी की अपील के बारे में चर्चा की। लेकिन इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा किसी भी देश के विकास की नींव होती है। उद्योगों को चलाने से लेकर परिवहन, कृषि और हमारे दैनिक जीवन तक हर क्षेत्र ऊर्जा पर निर्भर है। इसलिए किसी भी देश के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि उसे लगातार और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर निर्भरता की। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों में से एक है, लेकिन अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब ये है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं या तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। पश्चिम एशिया के देशों से भारत बड़े मात्रा में तेल खरीदता है, इसलिए जब इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि भारत लगातार अपनी ऊर्जा के साधनों में बदलाव लाने और नए विकल्प खोजने के प्रयास करता रहता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है। इसे आप देश की ऊर्जा आपातकालीन व्यवस्था भी कह सकते हैं। भारत ने विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े भूमिगत भंडार लगाए हैं जहाँ कच्चे तेल का संग्रह किया जाता है। यदि किसी कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति बढ़ती है या अचानक कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो इन भंडार का उपयोग करके कुछ समय तक देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम किसी आपात स्थिति के लिए घर में आवश्यक वस्तुओं का कुछ अतिरिक्त

भंडार रखते हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों, केवल तेल के भंडार बनाकर रखने से ही भविष्य की सारी चुनौतियों का समाधान नहीं होता। इसलिए भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और हरित हाइड्रोजन जैसे स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि वे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता को भी कम करते हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में स्वच्छ और प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग और अधिक बढ़ाया जाए, ताकि देश ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, ऊर्जा सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम भी बिजली की बचत करके, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करके और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाकर इस दिशा में योगदान दे सकते हैं। युद्ध और वैश्विक संकट हमें ये याद दिलाते हैं कि किसी भी देश की वास्तविक ताकत केवल उसकी सेना या अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि उसकी तैयारी, आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता में होती है। और भारत ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत ने हमेशा शांति, संवाद और सहयोग का मार्ग अपनाया है। साथ ही देश ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, संसाधनों का सम्मान करें और अपने दैनिक जीवन में ऐसे निर्णय लें जो देश हित में हों। इन्हीं विचारों के साथ मैं आयुष सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। आशा है कि दुनिया में शांति, आपसी मेलजोल और सहयोग का वातावरण बना रहे तथा भारत निरंतर प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल इसी समय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अंतराल के बाद हमारा अगला कार्यक्रम।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
3: तू नई साड़ी ली ले?
5: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
8: कवि हेमंत देवलेकर।
9: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म चौदहवीं का चांद से, आवाज मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत सरस्वती चंद्र फिल्म से, मुकेश की आवाज है, गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म में लता मंगेशकर के साथ मुकेश को। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

फिल्म संगीत का ये गीत आप सुन रहे हैं साजन फिल्म से। एस पी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का। इसके बाद आप सुनेंगे संगम फिल्म में लता मंगेशकर के साथ मुकेश को।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। यह विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया, वहीं तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिंचियान को मात दी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
0: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।

0: जी बताती हूँ। श्रोताओ, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाए पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
0: जी
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी,
1: हैं। फिर क्या होता है विमलेश जी?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
0: जी
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
0: जी
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए। आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।
2: साइरेंस

0: केरल प्रदेश में थेकड़ी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहाँ बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा।

0: मल जी,
1: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
1: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके,

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली।

0: आई।
1: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ जैसा कि पिताजी कहते हैं उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चला

0: बूढ़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत कभी खुशी कभी गम, अलका याग्निक के साथ सोनू निगम की आवाज़ है। गीत लिखा अनिल पांडे ने, संगीत है संदेश शांडिल्य का।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं मैंने प्यार किया मैं लता मंगेशकर के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम को। गीत लिखा है देव कोहली ने, संगीत है राम लक्ष्मण का।

उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। लीजिए एक सूचना आपको दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों पर एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopearbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी के राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। आईसीसी ने डॉक्टर सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए एक नजर डालते हैं आज के शेष कार्यक्रमों पर और कल प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर में 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे ग्राम सभा। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर अमर बहादुर सिंह से ली गई भेंट वार्ता, खरीफ फसलों हेतु मिट्टी की तैयारी में सावधानियां और बुंदेली समाचार लोकरंग। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर। रात 9:30 चर्चा का विषय, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। रात 10:00 नाटक तुम सही हो गार्गी, इसके लेखक हैं विमल कांत एंडे, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। इसका समय रहेगा रात्रि 10:00। 10:30 पर ब्रिक्स कृषि सम्मेलन पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ये तो थे हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले आकाशवाणी और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल 8:30 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:02 पर। 9:15 पर राजेश लाल के गाए भजन आप सुन सकेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रमों में। रात सुबह 9:30 नाटक पसंद अपनी अपनी, इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी, रूपांतरकार दिनेश रॉय। 10:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीत सागर, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 संग्रहालय से में सुनिए जंग लगी तलवार का भाग 6। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होंगे।

दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 बजे आपकी फरमाइश होगी। फिल्म संगीत संध्या सभा में 5:33 पर, 6:30 पर आनंद लिया जा सकेगा। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा। 7:21 पर कल शाम आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ममता वाजपेयी से ली गई भेंट वार्ता, मानसून के दौरान किचन

गार्डन और बगीचे की देखभाल और बुंदेली समाचार रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष साइंस एंड टेक 8:35 पर फिल्म संगीत होगा। 9:30 बजे फिल्म संगीत और 10 बजे आपकी फरमाइश का आप आनंद ले सकेंगे। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में रहमत अली खां का राग रागेश्वरी में सरोद वादन आपको सुनवाया जाएगा।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम को श्री मोदी ने भारत मंडपम में भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और केवल यही नहीं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में

0: लगातार इस देश का नेतृत्व करते रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में समावेशी मानव विकास के चार प्रमुख स्तंभों मानव पूंजी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण और सभी के लिए समानता पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विचार विमर्श करेंगे। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के तहत प्रदर्शित उत्पादों में रुचि दिखाई। रीवा के जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम और अन्य किस्मों का स्वाद लेकर प्रतिनिधियों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की। मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मृगनैनी, प्रकृत शिल्क, हेम्प क्लोदिंग के स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भी मेहमानों ने प्रशंसा की। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में कथित अनियमितताओं के आधार पर कल खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 10 वर्षों में रतलाम जिले में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्राप्त हुआ है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव पूर्ण जांच और सुरक्षित मातृत्व देने का अभियान रतलाम जिले में भी 10 साल पूरा कर चुका है। अब तक हजारों माताओं और नवजातों को इस योजना से नवजीवन मिला है। रतलाम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% प्रसव पूर्ण जाँच का लक्ष्य सफलतापूर्ण हासिल भी किया जा रहा है। विशेषकर आदिवासी अंचल में समय रहते उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके कार्ड पर लाल स्टीकर भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रसव के 45 दिन बाद तक निरंतर फॉलो अप और महीने की 9, 8 और 27 तारीख को महिलाओं को लैब टेस्ट पूरी तरह निशुल्क हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में अच्छी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएगा वहां से भी तबादला अनिवार्य होगा। वहीं 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही पंचायत में जमे सचिवों को प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5 करोड़ 39 लाख से अधिक हितग्राहियों को 74 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा

बड़ा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर तथा दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया के साथ पूजा अर्चना एवं कन्या पूजन किया। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शहडोल जिले में जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मंदसौर में 132.67 करोड़ रुपए की लागत से 1000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल खंडवा में आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना परिसर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 50 ग्राम कोटवारों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। और कटनी में छात्रों की सुरक्षा एवं बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले की जर्जर एवं मरम्मत योग्य 82 शालाओं का कायाकल्प किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल के सब सुनैया भैया बहनी इनका गणेश भाई के राम राम। सुनैया भैया बहनी यसाई तहिमक गर्मी का देखत कीन अपने स्वास्थ्य के ख्याल राखी अजहूँ काम चिंती हो ता सकारे सकारे निपटा ली। काहे से हमार किसान भाई असाईत अपने अपने खेत के सफाई माँ जुटे हाँ, गोबर के खाद खेत माँ डारत लाग हाँ और अपने अपने खेत के गहरी जुताई माँ लगे हाँ। बारिश के पहले अपने घर के छवाई किसान भाई कह लें जब उन्हें खेत माँ धान के रोपा लगावे का है तो वह खेत के तर तैयारी अभिने से कह ली। खेत का दुई बाह जुताई दी जब उन्हें खरपतवार नष्ट हो जाए। सुनैया भैया बहनी 10 जून का सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावा जाता है। विश्व कईक परस्पर जुड़ी समस्या से जूझत लाग है जैसन के शांति विकास विश्वास और शासन मां बढ़त खाई। मानवता एक ठे ऐतिहासिक मोड़ मां खड़ी है जहां बढ़त अस्थिरता और परिवर्तन के सामना करे का पड़त है। एकजुटता संवाद और सहयोग के आवश्यकता पहले से कहूं अधिक स्पष्ट है। समुदाय के बीच में भेदभाव का समाप्त करब सांप्रदायिक समझ अविश्वास का बढ़ावा दे के राष्ट्रन के बीच सहयोग का मजबूत करब आ वैश्विक एकता के संवाद करब सबसे निकहा प्रभावशाली मनई द्वारा साझा किए जाए वाला लोकतंत्र के प्रति जागरूकता अप्रचारक का बढ़ावा देत है। यह हमारे समाज के समाधान के नीता साझा आधार बहाली के सेतु है जो कि अंतमा विश्व शांति

मानव कल्याण, विकास और प्रगति में योगदान देते है। समुदाय के बीच संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस समुदाय की विविधता के महात्म के बारे में जागरूकता बढ़ावत है। संवाद सांप्रदायिक सम्मान और वैश्विक एकता का बढ़ावा दे के अवसर प्रदान करत है, जेमा अधिक से अधिक समुदाय आ एकता से जुड़ी दुनिया का बढ़ावा मिलत है। सुनैया भैया बहनी, सभ्यताओं के बीच संवाद के शुरुआती केंद्रन में ईरान के इम्फान में स्थित खानियन समुदाय रहा, जेकर स्थापना 1902 में भयत है। सफा खने वह स्थान आए जेखा हाजी आगा नूरलाह आउखर उनकर बड़ा भाई स्थापित किहिन। या ऐसा स्थान रहा जौने जागा मुस्लिम ईसाई एक दूसरे के से अपन अपन धर्म के बारे में चर्चा करत रहे। एक ही बाद साफा खने ईसाईन के बीच संवाद मर आधारित एक पत्रिका के प्रकाशन कीन गा, जो कि ईरान भारत और इंग्लैंड में वितरित कीन गए। यह संस्था के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र वर्ष के सफलता का आगे बढ़ा हुआ है। संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव की सिफारिश का और अधिक कार्यान्वित करत है। फाउंडेशन के मानव रहा कि सभ्यता के बीच संवाद, आपसी समझ, सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा के नीता अनुकूल समझा जाता है। एकर उद्देश्य होता है कि संघर्षन के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का बढ़ावा दे आ सुगम बनाऊ। सांस्कृतियन, देशन और धर्मन के बीच तनाव का के समाधान करब। मुस्लिम समाज और विश्व भर के अन्य समाज के बीच अत्यंत आवश्यक संवाद का बढ़ावा दे के और अधिक सुगम बनावा जाए। शैक्षणिक अनुसंधान में योगदान दे के विश्व शांति के विषय में व्यापक बहस का समृद्ध करब आए। सुनिए भैया बहनी, देखिए यह साहित्य खेती किसानी से कुछ उसासी मिली ता आ गर्मी अहिमक पड़त लागी। इनसे देखी मौसम का देखत कीन काम करी। कालिन कमल काका बतावत रहे कि दादू छोटकबा लड़का घूमे गा रहा ता ओखर अचानक तबियत बिगड़ गई, उल्टी दस्त जाए लाग, जाना नियरे के अस्पताल में ले जाए के दवाई करवाएं ता अब ठीक है। काका यहीं से लड़कन बच्चन की या गर्मी के मौसम में ख्याल रखब रखे चाहिए। मनई इतना व्यस्त हो जाता है कि लड़कन के ख्याल नहीं रख पावे, या फिर जो कुछ होगा तो परेशानी के सामना तो सियानन का करेगा पड़त है। हमार पड़ोसी केमला भैया के लड़का के तबीयत अचानक बिगड़ गए, वो हमारे पास आए अब अपन समस्या बतावे लागे, तो हम उनसे कहें कि जितना जल्दी हो सके तो अस्पताल ले जाए के डॉक्टर का दिखाई दी। काहे से दो रोजी से ऊ घरे माँ रख के चुटुक वेदिया करत रहें। केमला भैया आ हम दोनों जने जल्दी से अस्पताल लग गए तो डॉक्टर जांच पड़ताल करके केमला भैया का बताएं कि एक ही शरीर में पानी की कमी हो गई, अपना का तुरंत दिखावे चाहिए, तो अपना घरे माँ अटकर पंचे इलाज करत रहन है दवा। ऐसने में जो ज़्यादा तबीयत बिगड़ जात ता फिर देखी लेकर देख पड़ जात। इनसे लापरवाही बिल्कुल न बरते चाहिए, काहे से लेट लपेट से समस्या बढ़ा थी घटत नहीं आए। सुनिए भैया बहनी, गर्मी के मौसम में लड़का बच्चन के विशेष ख्याल रखे चाहिए। देखा यह जाता है कि लड़का सगली दोपहर खेलत रहा था, यहीं से उनका दोपहर के खेले न जाए दी, घरे के भीतरे रहा, जो कहाँ जाए का है ता सकारे सकारे तर तैयारी कर लें चले जा। दोनों सगली दोपहरी इस जोश बागें ना शरीर में पानी की कमी ना हो, ऐसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी, लड़का बच्चन का घाल पानी पियाई। घरे से बैबे निकलत समय शरीर का पूरी तरह से ढक ली, अगमछा से काने का बांधी रही, जौने तात तात हवा शरीर में ना लागे पावे, नहीं ता लमका लगे के डेर बनी रहती। घर से कुछ नाश्ता पानी कई के निकली, खाली पेट तो बिल्कुल ना चली। भोजन में तेल मसाला वाली चीज कम खाई, ज़्यादा से ज़्यादा सुपाच्य भोजन करी, गरिष्ठ भोजन कम करी, काहे से ऐसे तबीयत बिगड़े के डेर बनी रहती। तेल मसाला वाली चीज़ ज़्यादा रहती, कुछ मनाई यह सोचा था कि एक दिना के

ऐसे का होत है आ हुमस के तेल मसाला वाली चीज खाए लेन वह फिर उनका नुकसान कर जात है। या बिल्कुल ना सोचे चाहे कि एक दिन खाए एक दिन के खाए कुछ नहीं होता है। जब अपना का मालूम है कि यह चीज खाए से हमका नुकसान करत है तब फिर वह चीज हम ही खाई ना चाहिए, दूसरा पकवान खा ली। देखी जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहब ता कौने उमेर के परेशानी ना हुई, काहे से ज्यादातर परेशानी लापरवाही बरतें से होती। भैलो पर उस सलोने काका के यहाँ गैन तय अपने गुरुआ रकरन का घामे न बांधे रहे ता सलोने काका से कहन कि अपना तब बड़ा नागा काम कह रहे हैं। तब कहन कि दादू का होगा, हम तो अपने जान में कौनो नागा काम नहीं किए आहन। काका ये बताई इतना चंचनौहन घाम किए है अपना गुरुआ रकरन का घामे में बांधे हैं, ऊ बोल नहीं पावा पर जीव धारिताओं माही भला बताई जो यह घामे में अपने घंटा ठाड़ रही तो का हुई कैसन। तो कहन कैसन बात कहाँ करते हैं दादू, यह घामे में एक घंटा ता दूर को आधा घंटा भर खड़ा रही तो उखर प्राण पर घेरू न रही। बिल्कुल ठीक कहित लाग है काका, तो ऐसने ध्यान अपने पशुवन के रखे चाहिए, अपना का छाया माँ बांधे चाहिए। बैबे बांधाए कहे तो टटिया के छाया बना दी जो ऊन लौका से बचे रहें। मनई ता आपन दुख दर्द बोल के बताए देते है पर जानवर यह गुण नहीं होता है, उनके कष्ट का हमका पाचन का समझे चाहिए, काहे से उन्हों का तकलीफ होता है। सलोने काका कहें कि दादू तू ता बड़ा निकहा बत कहाँ चाले, ऐसे मनई का सीख मिली ऐसे बत कहाँ तब मुरारी काका के इनथे जो डॉक्टर के टीम आई तय वह चालत रही। एक एक बात ही का इतना निकहा तरीका से समझावत रहें कि सगलेन के समझ माँ उनखर बात ही आई आती। शिविर में जो मरीज रहें उनसे उनखर समस्या पूछा फिर वह समस्या के बारे में बतामा, बात इतना सहज तरीका से पूछिन कि आपन समस्या बताबे माँ कौन उमेर के समस्या नहीं भय, बलुक बेझिझक हम आपन परेशानी का उनके समूह बताए पाएं। देखिए दुई जने के बीच में जो वार्तालाप चलत है वही का संवाद कहा था, असंवाद ऐसा हो चाहिए जो उन्हें मनई के निकहा से बात समझ में आ जाए। हिंदी साहित्य लेखन में संवाद के विशेष महात्म है। इतनी बात सुनते सलोने काका बोल पड़े, दादू यह संवाद आई का जो मनई बरबत कहाँ आपूस माँ करत है वही का ना संवाद कहा था। सुनैया भैया बहनी, हम सलोने काका का बताएं कि विश्व संवाद एवं विकासात्मक सांस्कृतिक विविधता दिवस सांस्कृतिक संवाद विविधता के महात्म का बतावे के निता अजुबे के दिन यानी 10 मई का मनावा जाता है। यह दिवस आपूस में शांति भाईचारा आपसी मेलजोल का बढ़ावा देते है। दूसरे अधिक मनई जब आपूस में बातचीत करा था वही का संवाद कहा था, आपन विचार कि भाव का निकाह से बतावे के निता संवाद एक ठे निकाह माध्यम आए। जब संवाद चेतन सजीव सामाजिक रोचक होता है वह उतना ही ज्यादा आकर्षण पैदा करत है। अवा संवाद का बोले सुनई माँ उतना ज्यादा मनई का नीक लागत है। संवाद से मनई का तर्क करे की ताकत मिला थी। नाटक कहानी माँ वार्तालाप के उपयोग ज्यादा से ज्यादा किए जाते है, ऐसे नाटक कहानी रोचक बन जाता। वार्तालाप संक्षिप्त सरल अकि मुहावरेदार हो तो वह पाठक माँ गहिल प्रभाव छोड़ा थी। यहीं से संवाद का उपन्यास एकांकी नाटक का प्रभावशाली बनावे के निता निकहा माना जाता है। एक ही माध्यम से उपन्यास एकांकी में जो पात्र होता उनकर सोच चिंतन शैली तार्किक क्षमता आ उनके सही चरित्र के पता चल जाता है। पै या बात के ध्यान रखे चाहिए कि वार्तालाप में वास्तविकता हो चाहिए, बनावटीपन न हो। काहे से निकाह संवाद लेखक वह कहावत है जो कि निकाह संवाद नाटक एकांकी आकि कथा कहानी में कुशलता हासिल करत है। सुनिए भैया बहनी, संवाद लेखन में यह बात के विशेष ध्यान रखे चाहिए कि वार्तालाप के वाक्य रचना सजीव सहज सारगर्भित हो, अड़गड़ शब्दन के प्रयोग कम से कम की जाए। निकाह संवाद रचना करे के खातिर कुछ बातिन के ध्यान रखे चाहिए, जैसन संवाद में रुचकता सहजता हो छोट हो, संवाद विषय से संबंधित हो, उचित स्थान में मुहावरा की लोकोक्ति का प्रयोग हो जौने संवाद सजीव बन जाए। संवाद के शुरुआत अंत रोचकता से भरा हो। सुनैया भैया बहनी,

संवाद के माध्यम से मनईमा बोलचाल भाषा के विकास के साथ साथ संवाद बोलय वाले मनईन के अंदर केहू से बोलय के क्षमता के विकास होता है। जैसन पाठशाला में छोट छोट लड़का बच्चा जब नाटक में भाग ले था अब अपने संवाद का निसंकोच भावना से बोल के प्रस्तुत कर था तब उनके अंदर स्पष्ट बोलचाल भाषा के गुणन के विकास होता है। वो अपन बात का केहू के सामने बिना डर भय के साथ व्यक्त कर सका था। संवाद के माध्यम से उनके अंदर भाषा के डर भाग जाती। सुनिए भाई बहनी, अपन संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपने देश में मेर मेर के त्योहार मनावा जाता है। यहीं से एक त्योहारन के देश कहा जाता है। इतना भर नहीं धर्मन सगले धर्मन के मनई आपूस में प्रेम भाईचारा का बनाए कि एक साथ रहा था। मेर मेर के क्षेत्रीय बोली पहनावा नृत्य संगीत विविधता में एकता के संदेश दे थी। कैसे हिया हर प्रदेशन के अपन अपन सांस्कृतिक परंपरा अलोकाचार है। यह विविधता अपने देश का सुंदर पारस्परिक सांस्कृतिक देश बनावा थी। अपने यहाँ केहू के परंपरा के उल्लंघन नहीं करता ही बलुक सबको आपन जीवन शैली या सांस्कृतिक धरोहर के साथ मिलजुल के रहा था। सुनिए भैया बहनी, आपन संस्कृति बहुत पुराना है या कबहू रुक नहीं बलुक दिनों दिन यह संस्कृति के विकास होता है। विश्व के सगले देशन के अलग अलग भाषा पहनावा अमेर मेर के सांस्कृतिक विभिन्नता है। तव अपने देश के संस्कृति में एकता के झलक देखे का मिला थी। भारत के संस्कृति स्मारक कला वस्तु के संग्रहण के साथ साथ कईक परंपरा विचारण के संग्रहण आए। सुनिए भैया बहनी, हमार संस्कृति ऐसा खूब फूले फलय एकर खुशबू के बगिया चौतरफा महकत रहा है।

0: सुनैया भैया बहनी, अबे मनई सुनत रहा ज्योति तिवारी के गाई सोहर।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर 12 साल में।

0: करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो

0: संपर्क करें 8700014242 पर
1: 8700014242।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज

0: से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सुनैया भैया बहनी, रवि की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन जुताई के बहुतय निकास समय होते है। गहरी जुताई माटी पलटे वाला हालांकि प्लाऊ से करे चाही, काहे से माटी का ये पलट देत है। आज अधिका उत्पादन के निता आ फसलन का कीट व्याधि से बचावे का हो तो खेत के माटी का रोग व्याधि से मुक्त रखे खातिर गहरी जुताई बहुत निकही मानी जाती। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के करे से निदा नाशक कीटनाशक वगैरह में होए वाला खर्चा का कम कीन जा सकत है। आप पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। जो किसान भाई जैविक खेती करा था उनके नीता गहरी जुताई बहुत निकही मानी जाती। काहे से खेतन में पानी सोखे के वजह से सिंचाई कम करे का पड़ता है। आप फसलन का निकहा नमी मिला थी। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कठोर माटी के नीता बहुत उपयुक्त समझी जाती। गहरी जुताई से मेर मेर के लाभ मिलत है। खेत के माटी जब पलट तीन जाती ता किरबन का जो अंडा हाँ वो बैवे आ जाता मर जाता। खरपतवार के जो बीज हो था वो गहले चले जाता और जो ऊपर रह जाता उनका चिड़ई चुरुंगिन चुन लेती हैं। जैसे खेतन में खरपतवार कम हो जाते है और जो फसलन के अवशेष रहत है वह गहले चला जाता है। आ जब पानी बरसत है ता सड़ के खाद बन जाते है जो कि माटी की उर्वरा शक्ति का बढ़ावत है। गर्मी में गहरी जुताई जे किसान भाई करे रहा था और जब पहल बरसात के पानी गिरत है तो पानी खेते से बहवे नहीं बह पावे बल्कि खेते में सूख जाता है। इसे जल स्तर में बढ़ोतरी होती। खेतन में माटी का सूर के घाम निकाह तरीके से मिलत है ता जब खेतन में किसान भाई फसल बोवा था तो फसलन में कीट व्याधि लागे के संभावना कम रहा थी। कुछ किसान भाई ऐसा हाँ जिनके पास गहरी जुताई करे वाले यंत्र उपलब्ध हैं पर जेके पास यंत्र नहीं आए तो शासन के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर बनावा गया है। वहाँ संपर्क करके अपना पाँचे किराए से ले सकित हैं। एक ही नेता अपने जिला में स्थित नज़दीकी कस्टम हायरिंग सेंटर संपर्क कर सकी थे। गहरी जुताई करे के नेता कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन किसान का प्रोत्साहन दे के नेता हलधर योजना घाल चलावा थी ता उहू के फायदा हमारे किसान भाई ले सका था। हलधर योजना के संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत की जाती एक माध्यम से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा कराई के नीता प्रोत्साहित किन जाते हैं। एक माध्यम से सामान्य किसान का 2 हेक्टर हरिजन आदिवासी किसानन का 4 हेक्टर तक लाभ दिन जात है। प्रति हेक्टर के हिसाब से 2,000 रुपया के अनुदान राशि किसान भाइन का के खेते अनुदान किसान भाइन के खाते में विभाग द्वारा भेजा जाता है। किसान भाई या योजना के लाभ लेकिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आकि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कई के आवेदन कर सका था। अनुदान के राशि जुताई करे के जांच परख करे के बाद उप संचालक कृषि जिला मुख्यालय द्वारा दिन जाती। यहीं से हम किसान भाई से कहे चाही थे कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई में देरी ना करे चाही। अधिक पैदावार लेक नीता गहरी जुताई जरूर करवावा। जमने खेते में मनई रोपा लगाई थी वह खेत के नीता गहरी जुताई बहुत निकही मानी जाती। गोबर के खाद यदि किसान भाई के पास है तो गहरी जुताई करे के पहले खाद का खेते में छितराई दे एक बाद जुताई करी ता

खाद खेते में निकाह से मिल जाती। आ माटी के उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हो से उपराज निकाह मिलती। अजों खेत उबड़ खाबड़ हो था खेतन का गहरी जुताई कई के समतल बनावा जा सकत है। सुनिए भैया बहनी, अपने आपन देश संस्कृति आप पर्व प्रधान माना जाते है। बड़े बुजुर्गन के आदर सेवा सत्कार कराब हमारे संस्कृति के अभिन्न अंग आए। जेखर जैसन नाता हो ओके साथ वह मेर के व्यवहार प्रेम राखब हमका पांचन का छोटे से सिखावा जात है। यहीं से मनाई प्रेम भाईचारा के साथ मिलजुल के रहत है आ मिलजुल के त्यौहार मनावत है। देखी ऐसन कौनो महीना ना हो कि कौनो ना कौनो त्यौहार ना मनावा जाए। कहा कि मतलब यह आए कि अपन देश संस्कृति प्रधान के साथ है साथ त्यौहार का एक साथ बिना भेदभाव के मनावा था। इतना भन नहीं ये त्यौहार हमका पांचन का जोड़े के काम करा था और आपस में भाईचारा प्रेम के बीज बोवा था। ईर्ष्या देश का भगावे के काम करा था। तो देखिए भैलो हमारे देश में कौनो पर्व जब मनावा जाता है ओ मां एक रूपता का बढ़ावा मिलत है। कुछ त्यौहार ऋतु और मौसम के अनुसार मनावा जाता है और कुछ त्यौहार सांस्कृतिक घटना विशेष से संबंधित होता। आइए अब सुन लीजिए एक थे नरेश सिंह बघेल के गाई भोला गीत।

अब होत लागी चले के जूना तो चले के पहले बता दी चौपाल कार्यक्रम के पता ता लिखी चौपाल के चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा पिन है 48001 यह पता में रही अपना पाँचन के पाती के परिखाव आवाज्ञा देई चौपाल के सब सुनैया भैया बहनी इनका लालन भाई के राम राम जय जवान जय किसान।

0: सीरीज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के यू आर लिसनिंग टू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्राइन इंटरव्यूअर वॉज डॉक्टर श्रीराम चौलिया दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आर यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार की 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है फिल्म संगीत पहला गीत हिना फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें गीत और संगीत है रविंद्र जैन का

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025 से बीच में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार

0: हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई

0: सी है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता है। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

0: जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉन नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua hai. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा किसी सरकार का नहीं रहा किसी दल का नहीं रहा देश के जन जन का सपना बन चुका है संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है
3: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved, praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest

0: Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round at the women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वजीर आजम बनने पर वजीर आजम मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा एरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क की आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तिसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा है, न कि सियासी मजबूरी का।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमत अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबिना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फायद अंजाम देने वाले वज़ीर-ए-आज़म बनने पर सताइश की गई है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मजमूई तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमत अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,398 दिन तक फराइज अंजाम दिए थे। काबिना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के प्रति जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संग मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और मसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के प्रति हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और यह फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता हूं और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस दौरान मरकजी काबिना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंड डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के आवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगमील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिसकिन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इकतसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिसनाई के पपुआ न्यूगिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इकतसादी एतबार से गुनागुनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद

0: और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: ये 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इनसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सके, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तक नामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 आईआईटी की जदीद कार्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीर हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरजीबाती स्कीम पीएलआई के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरखास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार पीएलआई स्कीम के आम शोबों से ताल्लुक रखती हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मुकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमू तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेदात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कंपोजन वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहे पर दस्तखत के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरज़ूएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया है।

0: da casa, chefe.
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहले शेखर जी आपके साथ हैं, शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल नारायण जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की हस्तक्षेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। और रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैमाने इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए। और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका के विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही है, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।
2: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास है और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
3: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने के जो हाथ बांध कर हमने सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्युनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था, सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि वो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 सालों में मैं देखता हूं।
2: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
3: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे हाथ में तड़ पर बुलाने के लिए

0: जो कोशिश है उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो है, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, जो कोल्ड स्टोरेज के जो नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा ये रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई पिछली का जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेहड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, पर भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर हम देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के, और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कमी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है, बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच भी नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज की तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे एक्सप्रेस वे की आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनी उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को हाईरोड मिल गए हवाई नेटवर्क के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीजें जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनहेरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते हैं उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर, आज देखें यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे हैं, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट में विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो

आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को,

0: एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षक की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, कई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाली चीजें दूर होती जा रही है आदम जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री के नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। हम देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से बनाया जाए, आपने जिक्र किया, अभी अगले हफ्ते ही जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा पुनः मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सबको लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में

0: जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवने थे, भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी,
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा है कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भारत, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किए जा रहे हैं, जो भी नए निश्चय लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है अरुण जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारत के भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है नाटक तुम सही हो गार्गी। इसके लेखक हैं विमल कांत एंडे, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल।
6: प्रस्तुत है नाटक तुम सही हो गार्गी, लेखक विमल कांत एंडे, प्रस्तुत करता राकेश ढोंडियाल।

0: अरे भाई क्या हुआ, चाय मिलेगी या नहीं, ये बाहर से पीकर आना पड़ेगा। आधा घंटा हो गया, एक कप चाय नहीं मिली।
1: आ रही हूँ भाई। तुम तो बस ऑफिस से लौटे नहीं कि चीख पुकार मचाने लगते हो, बड़ी मुश्किल है।
0: अरे मुश्किल क्या, घड़ी देखो 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे से आ गया था
1: मैं। इतना वक्त तो लगता ही है ना चाय बनाने में।
0: अब बस भी करो भाई, जब मैं ऑफिस से आया था तब तुम स्टडी रूम में थी, चाय बनाने तो अभी गई हो ना।
1: अगर मैं स्टडी रूम में थी भी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
0: मुझे तुम्हारे स्टडी रूम में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहाँ रहकर जो तुम करती हो ना, मतलब जो गलत फहमियां पाल रखी है उसे लेकर जरूर प्रॉब्लम होती है। अरे गार्गी मैडम, जमीन पर रहो, जमीन पर। ये सपने देखना छोड़ो कि तुम कोई बहुत बड़ी कहानीकार या साहित्यकार हो, पता नहीं क्या क्या बन गई हो। अरे मजाक नहीं है ये सब है, स्कूल कॉलेज की मैगजीन में कभी कोई चीज छप जाए या किसी तटपुंजी पेपर में कोई कहानी कविता छप जाए तो कोई प्रेमचंद या गालिब नहीं बन जाता है?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, किसी महिला लेखक का नाम तो तुम्हें याद आया नहीं होगा। अरे तुम्हें तो प्रेमचंद या गालिब के अलावा कोई नाम याद भी नहीं है। और कोई महिला, वो भला क्या लिख पढ़ सकती है बेचारी। महिलाएं तो बनी ही है केवल तुम लोगों के घर संभालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, खाना बनाने, कपड़े धोने और सेवा करने के लिए। तुम लोगों के अहम को तो केवल यही सोचकर, यही मानकर संतुष्टि मिलती है ना? कभी नहीं सोचते कि महिलाएं अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती।
0: अरे अजय अजय, अब कहां की बात को कहां ले जा रही हो तुम्हें? अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, गलती हो गई भैया, माफ करो, सॉरी। अच्छा ये बताओ कि कोई नई कहानी लिख रही हो है, जो चाय बनाने के चक्कर में बीच में छोड़कर उठना पड़ा इसलिए खींच रही हो?
1: ही कागज पर कलम घसीट रही थी, शायद कोई कहानी ही बन जाए।
0: अरे यार अब बस भी करो है, माफी तो मांग ली ना। तुम्हारी ये बड़ी खराब आदत है, बात को खींचती बहुत हो। अरे रबर को भी ज्यादा खींचने से वो भी टूट जाता है मैडम। खाने में क्या बना रही हो आज तुम?
1: देखते हैं क्या बन सकता है जल्दी से।
0: जल्दी से क्यों, आज कोई प्रोग्राम है क्या? अरे अभी तो बस 6 ही बजे है ना।
1: हाँ मगर मुझे आज कहानी खत्म करनी है, आज रुक गई तो कहानी का अंत जो सोच रहा है शायद याद ना रहे। बड़ी मुश्किल कुछ अच्छा सोचा है, शायद इससे पूरी कहानी उठ जाएगी।
0: हे भगवान, कहानी उठ जाएगी जैसे अभी सो रही है। पता नहीं कहानी लिखने की क्या खप्त सवार हुई है। अरे कोई मजाक की कहानी लिखना, ये सब कुछ किया धरा है उस नालायक समीर का। वाह भाभी क्या लिखती है, आप देखना एक दिन बड़ी लेखक बनेंगी, हम सबका नाम रोशन करेंगी, नालायक कहीं का। अरे खुद तो गार्गी को चढ़ाकर चला गया और भुगतना पड़ रहा है मुझे। चल बेटा तो फिर और कर ले, पढ़ी लिखी से शादी।

0: समीर, ये जरूरी नहीं कि हर बार केवल लड़के ही गलत हों। मैंने जो तुम्हें बताया उससे क्या लगता है?
1: भाभी, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की बिना किसी ठोस वजह के इतना बड़ा कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ वो लड़का तो भला इतनी आसानी से इतना बड़ा कलंक लेने को राजी कैसे हो सकता है? भाभी, बात कुछ जमी नहीं।
2: कौन सी बात नहीं जम रही छोटे सरकार, हम भी तो सुने। अरे ये बेचारा समीर अपने बड़े भाई के सामने क्या राय देगा? मैडम ये अच्छी तरह जानता है कि इसका भाई कितना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है।
1: भाभी और भैया, आप एक दूसरे पर छींटा कशी छोड़िए, नहीं तो मैं चला।
0: अरे अरे नहीं समीर, हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों मिस्टर वर्मा?
2: यस यस मिसेज वर्मा, बिल्कुल मजाक कर रहे थे, मगर मजाक मजाक में एक बात तो सही निकली गई कि बंदा इंटेलिजेंट है।
1: भैया फिर से।
2: अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, कौन सी बात थी जो जम नहीं पा रही थी देवर भैयाई को?
1: भैया, भाभी की कहानी के मुख्य पात्र की शादी को केवल 4 महीने ही हो पाए हैं, मगर
2: मगर क्या?
0: मगर ये कि लड़की और उसके घर वालों ने मिलकर कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया, और कारण भी कोई खास नजर नहीं आ रहा।
2: क्या मजाक है, ये कैसी कहानी है? कहीं ऐसा भी होता है कि बिना किसी खास वजह के तलाक का केस, और वो भी 4 महीने के अंदर?
1: तभी तो मैं भाभी से कह रहा था, जरूर कोई खास वजह होगी, तभी तो बात तलाक तक पहुंची, और वो भी लड़की वालों की तरफ से।

0: मुझे लगता है लड़का कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना भैया?
1: बिल्कुल। अरे गड़बड़ क्या, कोई दूसरा चक्कर होगा। बेचारी लड़की, अरे उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा तलाक से।
2: बेचारी लड़की, अरे तो मर्दों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि लड़कियां तो हमेशा बेचारी नजर आने लगती हैं। सारी गड़बड़ी लड़कों की ही लगती है। मैं पूछती हूँ, क्या लड़की का कोई चक्कर नहीं हो सकता? वो गलत नहीं हो सकती?
1: हो सकता है मैडम, जरूर हो सकता है, मगर आप भूल रही हैं, अगर प्रॉब्लम लड़की की है तो तलाक लड़के वालों की पहल पर होता है। अरे यहाँ तो मामला ही उल्टा है।
2: तुशीर, तुम सही कह रहे हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल ये कहानी एक हकीकत है। जब मैंने सुनी मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्या कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की ऐसा भी कर सकती है?
1: देखो बात तब तक साफ नहीं होगी जब तक तुम सिलसिलेवार पूरी बात नहीं बताओगी। आखिर हुआ क्या, तलाक की नौबत 4 महीने में क्यों आ गई? मगर अभी तो फैसला आना बाकी होगा ना।
2: तो शेर, तलाक फाइल भी हुआ और फैसला भी 6 महीने के भीतर आ गया, तलाक मिल गया।
1: समझा, मगर ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई गंभीर मामला ना हो। हमें पूरी बात बताओ, शायद पूरी चर्चा के बाद कोई अच्छा हल कहानी का सूझ जाए।
0: हाँ हाँ,
2: चलो यही सही। ये ऐसे दो परिवारों के बीच घटी घटना है जो हम तुम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं। दोनों ही परिवार शिक्षित अच्छी पृष्ठभूमि वाले हैं। लड़के के परिवार में 2 लड़के और माता पिता, और लड़की के परिवार में लड़की की माँ और मामा और उनका परिवार। लड़की इकलौती है और उसके पिता नहीं है। दोनों ही परिवारों ने बच्चों की शिक्षा में अपना जीवन लगा दिया। MBA के बाद लड़का बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिकारी के रूप में, और BE के बाद लड़की इंजीनियर के पद पर काम पाने में सफल रहे। दोनों को अलग अलग शहरों में नौकरी मिली। जैसा होता ही है, रोजगार पाने के बाद, अच्छी आर्थिक स्थिति में आने के बाद, लड़की की माँ योग्य दामाद और लड़के के अभिभावक सुशील सुंदर शिक्षित बहू की तलाश में जुट गए। सारी औपचारिकताओं के बाद वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। तुशीर, यकीन मानो, विवाह में जो भी सम्मिलित हुए सबने न केवल अभिभावकों को बधाई दी बल्कि वर वधु को भी बधाई देते हुए कहा कि भाई तुम्हारी तो राम सीता और शिव पार्वती की जोड़ी है।
1: अच्छा वाह, अगर ऐसा था तो फिर बीच में तलाक कहाँ से आ टपका?
2: तुशीर, मैंने जो जाना जो समझा वो ये है कि उसके पीछे लड़की का अति महत्वाकांक्षी होना है। जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति उसका नजरिया, उसकी सोच, सभी ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। शायद इसीलिए उसकी बुद्धि ने उससे नाता तोड़ लिया। वो इतनी स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो गई कि उसे अपनी सोच के आगे सब कुछ निरर्थक लगने लगा।
1: गार्गी, अरे क्या बेकार की बातें कर रही हो, ऐसा भी होता है कहीं? अरे लड़की चाहे कैसी भी हो, उसकी महत्वाकांक्षा कितनी भी बड़ी चढ़ी हो, मगर वो अपना जीवन या अपना विवाह दांव पर नहीं लगाती, और वो भी इतनी जल्दी।
2: ठीक कहते हो, मगर आजकल की लड़कियों के तौर तरीके, सोच और यहाँ तक कि उनकी आत्मनिर्भरता की स्थिति ने उनमें बड़ा बदलाव ला दिया है। आज की नौजवान पीढ़ी के लिए करियर सबसे ज्यादा अहम हो गया है। तो शेर, यकीन जानो, मेरी सोच तुम्हारी सोच से अलग नहीं है। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही मैं भी सोचती हूँ, मगर इस घटना ने मुझे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया।
1: गार्गी, बात अभी भी अधूरी है, खुल के बताओ ना भाई।
0: हाँ,
2: इस मामले में मुझे कई बार तुम्हारी बातें याद आई। तुशीर, तुम कहते हो ना गार्गी, आजकल की लड़कियां अजीब होती जा रही हैं। एक हाथ में मिनरल वाटर की बॉटल, दूसरे में मोबाइल पकड़े, मॉडर्न कपड़े और वो हिंग्लिश, यानी न हिंदी न अंग्रेजी, अजीब बातचीत की शैली। ये सब परिवर्तन आज की लड़कियों, उनके क्रियाकलापों के साथ साथ उनकी सोच पर भी होता जा रहा है। खैर, विवाह की पहली रात नवविवाहित लड़की ने अपने पति के सामने अजीब सी शर्त रखी।
1: पहली रात शर्त?
2: हाँ, पहली ही रात, और शर्त भी बेतुकी। उसने कहा, हम लोग अभी अलग अलग ही रहेंगे जैसा कि शादी के पहले थे। पहले मुझे अपना करियर बनाना है, अपनी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचना है, ये सब उसके बाद भी हो सकता है। तुशीर, तुम सोच रहे होगे कि ये सुनकर लड़के पर क्या बीती होगी।
1: हाँ बिल्कुल, अभी मैं यही पूछने वाला था।
0: अजीब बात है,
2: सन्नाटे में रह गया लड़का। सिर्फ इतना ही पूछ पाया, अगर करियर को इतना महत्व देना था तो शादी क्यों की? जानते हो तुशीर,

0: जवाब क्या मिला?
1: क्या?
0: लड़की ने कहा, वो तो माँ और मामा का मन रखने के लिए जरूरी था, वरना उसका वश चलता तो वो शादी ही नहीं करती।
2: भाई वाह, शादी भी की तो माँ और मामा के कारण। देवी जी तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। अजब तमाशा है, घर की कुछ फिल्मी लगती है लड़की।
1: भाभी, अगर लड़की नहीं चाहती थी शादी करना तो क्या उस पर दबाव डाला गया था? करियर बनाने की बात तो हजम नहीं होती भाभी, यहां कोई दूसरा ही चक्कर लगता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की कहीं और शादी करना चाहती हो और मां और मामा के दबाव के कारण मजबूरन उसे कहीं और शादी करनी पड़ी हो? भैया, आपको क्या लगता है?
2: हाँ, संभावना तो है ही, और करियर वाली बात तो अच्छा खासा मजाक आती है भाई।
1: हाँ,
0: मुझे भी अटपटा लगा था जानकर, कहां करियर और कहां शादी। अगर करियर को महत्व देना ही था तो शादी कुछ सालों के लिए और टल जाती, माँ और मामा को मना लेती, उनके सामने अपनी इच्छा रखती। आखिर शादी का इतना बड़ा आयोजन बिना इच्छा के जबरदस्ती हो सकता है भला? मैंने मामले की तह में जाने की कोशिश की। मुझे पता चला कि लड़की की माँ सालों से अपने भाई के यहाँ ही रहती है। लड़की और उसकी माँ दोनों ही मामा पर आश्रित हैं। लड़की के मामा ने भाई होने का फर्ज अच्छी तरह निभाया है, दोनों का पूरा ध्यान रखा है। मामा के ही कारण भांजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाई और अब नौकरी कर रही है। मगर दूसरी तरफ शायद लड़की के लालन पालन या संस्कार देने में लड़की की माँ और मामा दोनों से ही थोड़ी चूक हो गई। पिता के ना रहने के कारण सोच में आत्म केंद्रित भाव और जिद्दीपन ने लड़की के मन में गहरी पकड़ बना ली। तुषिर, तुम तो जानते ही हो, उम्र के इस पड़ाव में जब आधुनिकता भौतिकवादी सोच किसी भी आत्मनिर्भर युवा से जुड़ती है तो उसे लगता है उसकी सोच, उसका भविष्य उसकी मुट्ठी में है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हो गार्गी।
0: हाँ, दरअसल आज के युवा नौकरी पाते ही खुद को बंधन मुक्त और महत्वपूर्ण मानने की भूल कर बैठते हैं, जबकि जीवन के अनेक पड़ाव और कड़वे अनुभव उनके सामने आने शेष होते हैं।
2: तुम ठीक कहती हो गार्गी, पहले ऐसी सोच नौजवान लड़कों में ही थी, मगर अब बराबरी का दावा करने वाली लड़कियों में भी कम नहीं है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ?
0: तो शेर, लड़के लड़कियों से ज्यादा भावुक होते हैं, किसी भी तरह का झटका सहने की शक्ति उनमें कम होती है, ये तो तुम जानते ही हो ना।
2: हाँ।
0: लड़के ने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने के पहले अपने स्तर पर धैर्य पूर्वक जीवन की ऊंच नीच, करियर से जुड़े सच और भविष्य के प्रति आशावान रहने की सोच जैसे हर बिंदु पर लड़की को समझाने और मनाने की पूरी कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 10 दिनों के बाद ही दोनों को अपने अपने ड्यूटी पर ज्वाइन होना था। तनाव मुक्त दोनों ही रहे होंगे, या फिर लड़का ज्यादा तनावग्रस्त रहा होगा। लड़की को फिर भी ये तसल्ली तो रही होगी कि जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। लड़के ने लगातार फोन करके, यहां तक कि वीकेंड जाकर उसे समझाने मनाने की भी बहुत कोशिश की, मगर लड़की टस से मस होने को तैयार नहीं हुई।
1: भाभी, बात पक्की है, जरूर चक्कर कोई दूसरा हुआ। क्यों भैया?
2: हाँ यार, अब तो पता नहीं क्यों मुझे भी यकीन होने लगा है, अब भला कोई लड़की बिना किसी कारण के ऐसा कर सकती है? फिर क्या हुआ गार्गी?
0: 1 महीना होने को 2 दिन बाकी थे कि अचानक लड़की के मामा और माँ ने लड़के वालों के यहाँ जाकर उनसे साफ शब्दों में तलाक की मांग की। माँ और पापा अवाक रह गए। पूछा, क्या हुआ ऐसा जो आप लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? हमें बताइए, हम देखते हैं, अगर लड़के की कोई गलती हो तो उसे समझाएंगे। तलाक किसी भी मामले का हल नहीं है, और फिर अभी समय ही कितना हुआ है, शादी को 1 महीना भी तो पूरा नहीं हुआ। अभी दोनों बच्चे हैं, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, अगर हुई है तो हम सभी मिलकर उसे सुधार लेंगे। लड़की के मामा ने जवाब दिया, हमारी लड़की आपके लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, हम कारण आपको नहीं बताना चाहते, बस हमें तलाक चाहिए। वकील से कह दिया है, पेपर मिलते ही लड़के के साइन करवा के भेज दीजिए।
1: वाह भाई वाह, क्या शादी और क्या तलाक, फिर क्या हुआ अभी?
0: होना क्या था, माँ बाप ने लड़के से जानकारी ली तो सच्चाई पता चली, मगर लड़के के पिता संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वो लड़की से मिलने भी गए उसके शहर में जहां वो काम कर रही थी। लड़की ने उनसे बात करने से मना कर दिया। उसने कहा वो उनके लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। शादी उसने माँ और मामा के कहने पर की थी। मामा की बड़ी इच्छा थी कि वो उनकी पसंद से शादी करे। चूंकि मामा के यहाँ माँ वर्षों से रहती आई है, वो भी यही चाहती थी। बस इसलिए उसने शादी के लिए हाँ की। लड़की को समझाने बुझाने के सारे प्रयास व्यर्थ गए। अगले 20 दिनों में ही तलाक के पेपर लड़के के परिवार को मिल गए। पेपर पढ़कर तो लड़के के घर जैसे धमाका ही हो गया। तलाक का कारण लड़के की नपुंसकता बताया गया था। रोष और ग्लानी से भरे लड़के के माँ बाप ने लड़की वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। ये भी कहा कि इस झूठे आरोप वाले तलाक के पेपर पर वो लड़के के हस्ताक्षर नहीं करवाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाकर लड़के की मेडिकल रिपोर्ट जमा करेंगे और सारा मामला साफ हो जाएगा।
2: यस, बिल्कुल सही है। अरे मजाक थोड़ी है तलाक, ऐसे कैसे हो जाएगा?
0: मगर हो गया तुशीर। लड़की के मामा ने कहा जब हमारी लड़की आपके लड़के के साथ रहना ही नहीं चाहती तो तलाक के अलावा रास्ता ही क्या है। तलाक का कारण भी जानबूझकर इसलिए दिया गया है कि इससे तलाक जल्दी मिल जाता है, नहीं तो तलाक मिलना भी आसान नहीं है, वर्षों लगते हैं। और फिर कारण कोई भी हो, जब हमारी लड़की को तलाक चाहिए तो कारण भी तो ऐसा देना पड़ेगा जो तलाक जल्दी दिलवाए। इसीलिए नपुंसकता का कारण दिया है।
2: और लड़के के माँ बाप मान गए उनकी बात?
0: नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते के अंदर दहेज की मांग के आरोप के साथ वकील का नोटिस, धमकियों का सिलसिला और लड़की और उसके माँ बाप की गिरफ्तारी का अंदेशा जोर पकड़ने लगा। मामले की संवेदनशीलता और इससे होने वाले परिणामों के अंदेशों ने लड़के के परिवार को तोड़ दिया। लड़का दूसरे शहर में माँ बाप से अलग और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इस आशंका से लड़के के माँ बाप ने उसे पेपर्स पर साइन करवा दिए। कोई विकल्प ही शेष नहीं था। तुम जानते हो समीर, हमारे देश में सैकड़ों केस बरसों बरस तक फैसलों का इंतजार करते रहते हैं, मगर पता नहीं कौन सी ताकत होती है जो कुछ मामले फटाफट निपटाती है कि यकीन ही नहीं होता इतनी त्वरित गति से फैसला होगा। खैर, तलाक मिल गया और सारा मामला निपट गया।
1: बाप रे, लेकिन आगे क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, अभी शादी को साल भी नहीं बीता था और तलाक हो गया। लड़का और उसका परिवार गहरे तनाव में आत्मग्लानी के साथ जी रहे हैं। लड़का अब तक ये झटका झेल नहीं पाया है, बीमार है। कंपनी से कहकर उसने अपनी पोस्टिंग देश के बाहर करवा ली, मगर वहां भी तनाव और संताप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस पर लगाया गया झूठा आरोप उसे चैन नहीं लेने दे रहा है।
2: और लड़की?
0: ये लड़की मजे में है तुशीर, अपने और परिवार के निर्णय को सही साबित करने के लिए जहां तहां तलाक की झूठी वजह का बखान करने वाली लड़की और उसका परिवार, वो तो ठीक होगा ही होगा। आगे क्या होगा, माँ और लड़की के मामा क्या करेंगे, ये पता नहीं चल पाया।
1: मगर भाभी, समाज या बिरादरी से तो ये बात छुपी नहीं है ना। लड़की के परिवार वाले और यहां तक कि खुद लड़की अगर ऐसी बातें कर रही है तो ये फिर उसके लिए भी तो अच्छा नहीं है और लड़के का जीवन तो अकारण ही बर्बाद।
0: ठीक कह रहे हो समीर, एक पढ़े लिखे सुसंस्कृत लड़के और प्रतिष्ठित सामाजिक स्थिति वाले परिवार के लिए ये हालात कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लड़के के माँ बाप ने सबसे पहले ये कोशिश की कि लड़के को उसकी वर्तमान स्थिति से उबारा जाए। उन्हें डर था कहीं उनका लड़का आत्मग्लानिवश कुछ कर न बैठे। बीच में परिचितों और रिश्तेदारों की पूछताछ और ताक झांक लगातार उनकी हिम्मत तोड़ती रही और फिर से उन्हें अपने आप को संभालना पड़ा। हर घड़ी यही लगता कहीं कोई उनके बेटे या बहू के बारे में तलाक के कारण न पूछ बैठे, कोई अप्रिय चर्चा न छिड़ जाए।
2: मगर गार्गी, जब तलाक का कारण झूठा है, केवल तलाक के लिए बनाया गया है, तो लड़के के परिवार वालों को सच सबके सामने लाना ही चाहिए, क्यों समीर? हाँ भैया।
0: कहना आसान है समीर, मगर करना मुश्किल है। जरा सोचो, लड़की, उसकी माँ, उसका पूरा परिवार इस बात का प्रचार जोर शोर से कर रहा है कि उनकी लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, मजबूरी में लड़की को तलाक दिलवाना पड़ा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। तो भला लड़के वालों की बात सुनेगा कौन? और तुम

0: तो पहले लड़की की ही तरफदारी कर रहे थे ना, और तुशीर तुम तो उसे बेचारी लड़की कह रहे थे। मैंने पहले ही कहा था लड़कियों के प्रति सहानुभूति दर्शाना आम होता है, ऐसे में लड़के के या उसके परिवार की बात ना तो कोई मानेगा और ना कोई सच्चाई समझने की कोशिश करेगा। तुम्हें सोचो क्या ये संभव है कि लड़का और उसका परिवार लोगों को लड़के की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता फिरे या ये कहता फिरे कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं?
1: कह तो तुम ठीक ही हो, मगर क्या ये गलत नहीं होगा कि इतना बड़ा झूठा कलंक सिर पर ढोया जाए?
0: बस कहानी यही आकर रुक गई। लड़की या उसका परिवार क्या करेगा, लड़के वालों का अगला कदम क्या होगा, यही कहानी का अंत है। सोचो सोचो तुम लोग और बताओ।
2: भाभी, मुझे लगता है इस मामले को फिर से कोर्ट में ले जाना चाहिए। आखिर हार मानने से कैसे काम चलेगा? लड़की और उसके परिवार को पता तो चले कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने का परिणाम क्या होता है।
1: समीर, यहां मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर यह मामला फिर से कोर्ट में जाता है तो पहली बात तो यह है कि दोनों परिवारों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लोग तमाशा देखेंगे, फिर से आरोप प्रत्यारोप और लोगों के लिए नया तमाशा बनेगा, और इससे ज्यादा नुकसान लड़के के परिवार को ही उठाना पड़ेगा। लोग लड़के पर लगे तलाक के कारण का चटखारे लेकर बखान करेंगे और वो टूट जाएगा। और कहीं लड़की वालों की ओर से कोई झूठी एफआईआर दर्ज होती है तो नई मुसीबत का सबब बनेगी। समीर, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर और हर कसौटी पर कसकर इस बंधन की नींव रखी है। इसे दो परिवारों की आत्माओं का बंधन माना जाता है। यह सामाजिक संरचना और समाज को गतिशील बनाने के लिए एक मर्यादित परंपरा के रूप में स्थापित है। मगर अगर आपसी तालमेल नहीं है, मन एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो शादी विवाह अर्थहीन होकर रह जाती है। अब हमारी शादी को ही देखो, पूरे 12 साल हुए हैं, क्यों गारगी? हम लड़ते हैं, रूठते हैं, मान जाते हैं, मगर शादी के पवित्र बंधन को लांघने या नकारने का विचार ना तो कभी मेरे मन में आया और ना ही तुम्हारी भाभी के मन में। अब यहां तो ठीक उल्टा है। शादी की पहली ही रात लड़की अपने पति से कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अजीब लगता है भाई। मेरी राय में तो कहानी का अंत यह होना चाहिए कि इसे हम समय के भरोसे छोड़ दें। गार्गी, समय बड़े से बड़े घाव भर देता है। हर समस्या का समाधान वक्त के गर्भ में होता है। समय ही तुम्हारी कहानी के पात्रों को कोई ना कोई हल जरूर सुलझाएगा। वैसे गार्गी, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना?
0: तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, मगर मेरी सोच तुम दोनों से मेल नहीं खाती। समीर के सुझाए अंत के साथ कई परेशानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा कोई केस आसानी से नहीं निपटता, और इस बार अगर लड़के वालों को केस दायर करना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, तो निश्चित है कि यह मामला लंबा खिंचेगा। ये बात तो तुम लोग समझ गए होगे कि लड़की वाला पक्ष न केवल साधन संपन्न है बल्कि कोर्ट के दांव पेंचों से वाकिफ भी है। बस फिर होगा ये कि और ज्यादा अपमान, और ज्यादा जगह जाई, ये सब कुछ अलग से होगा। और तुशीर, अगर तुम्हारा सुझाव भी माना जाए तो इससे भी समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि समाधान की बाट चुनने के लिए समय गंवाना बुद्धिमानी नहीं है। और फिर ये भी तो तय नहीं है कि इस समस्या का हल कितने समय के बाद निकल कर आएगा। क्या ये उचित होगा कि वक्त के भरोसे एक ऐसा परिवार, खासकर वो लड़का जो निरपराध है, यूं ही तनाव के बीच जीता रहे? क्या ये उसके प्रति नाइंसाफी नहीं होगी?
1: हाँ गार्गी, तुम ठीक कहती हो। वक्त के, भाग्य के या फिर ईश्वर के भरोसे समस्या नहीं हल होने वाली। लेकिन आखिर में होगा क्या?
0: जैसा मैंने बताया है कि तलाक का फैसला तो हो गया, इससे जाहिर है कि लीगली अब ये शादी टूट गई। लड़की ने पहले ही लड़के के साथ ना रहने का निर्णय ले रखा है, यानी मानसिक रूप से अब दोनों में आपसी मेल की कोई संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बस एक ही रास्ता बनता है कि लड़के का परिवार उसके पुनर्विवाह के लिए तुरंत कोशिश करे। मुझे मालूम है तुम दोनों यही कहना चाह रहे हो कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तलाक में दर्शाए गए कारण को गलत साबित करने वाले मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ अगर कोशिश की जाए तो ये संभव हो सकता है। थोड़ा कठिन जरूर होगा, लड़की वालों को यकीन दिलाना मुश्किल हो सकता है, मगर फिर भी ये हो सकता है। लड़के वालों को बिना कोई बात छिपाए लड़के की फिर से शादी करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आखिर उनको सफलता जरूर मिलेगी। झूठ आखिर झूठ होता है, आज नहीं तो कल इसका अंत होगा। लड़के की शादी से दो फायदे होंगे, पहला ये कि लड़का और उसका परिवार आत्मग्लानी से मुक्त हो जाएगा और दूसरा ईश्वर ने चाहा तो उनके परिवार में आने वाली संतान खुद ही आरोप लगाने वालों के लिए करारा जवाब होगी। यही और मात्र यही कहानी का अंत मुझे नजर आता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या बात है क्या बात है गार्गी। मुझे लगता है कि तुम्हें मैं हमेशा अंडर एस्टिमेट करता रहा अब तक। अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। अरे मुझे आज तो कहना ही पड़ेगा तुम सही हो गार्गी।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक तुम सही हो गार्गी, लेखक विमलकांत एंडी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज देश और दुनिया की नजरें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पर टिकी हैं, जहां वैश्विक स्तर के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स देशों सहित करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, नीति निर्माता और कृषि विशेषज्ञ जुट रहे हैं। इस वर्ष भारत बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की थीम के तहत इस बड़े मंच का नेतृत्व कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा और बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच यह सम्मेलन न केवल भारत बल्कि दुनिया के छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज हमारे रेडियो स्टूडियो में इस विषय के बड़े स्तंभ और नीतिगत मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री सिराज हुसैन जी, जो कि पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव हैं और वर्तमान में ICAR में सीनियर विजिटिंग फेलो हैं। आपकी विशेषज्ञता सरकारी नीतियों, खाद्य प्रशासन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लागू करने में है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता सैनी जी, जो जानी मानी कृषि अर्थशास्त्री और ऑर्कस पॉलिसी रिसर्च की फाउंडर व CEO हैं। आपकी विशेषज्ञता डेटा ड्रिवन कृषि, ग्रामीण आजीविका, जेंडर इंक्लूजन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल पर है।
2: इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत दास सर, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
1: आप अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे है।
2: सर, आपके पास केंद्रीय सचिव के रूप में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है और भारत की इस बार की जो ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है वो रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देशों की खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर मुख्य नीतिगत प्राथमिकताएं क्या कुछ होनी चाहिए, इस बारे

0: हमें हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, दो चार चीजें बहुत अहम है। एक तो ये है कि कैसे इंडिया की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ब्रिक्स के कई देशों के मुकाबले में हमारी उत्पादकता कम है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश है। और कुछ देश इसमें ऐसे हैं ब्रिक्स के मेंबर जिनकी उत्पादकता हमसे भी कम है, तो उनको हमसे सीखने का मौका मिल सकता है। दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि कई ब्रिक्स देश ऐसे हैं जैसे ब्राजील है या रूस है या अर्जेंटीना है, जिनकी आबादी बहुत कम है और उनका खेती का रकबा बहुत ज्यादा है, तो उनके यहाँ फूड सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनमें हमारा देश भी शामिल है, जहाँ फूड सिक्योरिटी एक बहुत अहम चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरीके से वो इजिप्ट के लिए, इथियोपिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और हम कह सकते हैं कि ईरान के लिए भी किसी हद तक चैलेंज है, क्योंकि ईरान भी हमसे बहुत चावल इंपोर्ट करता है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो पूरी तरह काफी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, तो एक दूसरे से सीखने का काफी मौका मिल सकता है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। सर, इस सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं पर रखा गया है। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो नीतियों को लागू करने के आपका अपना जो अनुभव है उसके आधार पर क्या मानते हैं कि ब्रिक्स देश मिलकर इन छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आपस में सहयोग कर सकते हैं?
1: देखिए, ये जो छोटे और सीमांत किसान का मसला है ना, ये तो हमारा मसला है जी। और किसी हद तक चाइना का मसला हो सकता है। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि ब्राजील में, रूस में, अर्जेंटीना में तो बहुत बड़े बड़े फार्म है, उनकी तो आबादी बहुत कम है। उनके ये नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो खेती ही नहीं है, तो ये मसला कहाँ से होगा? ईरान में भी ये मसला नहीं है
0: जी।
1: लेकिन हमारे देश में औरतों का कंट्रीब्यूशन कृषि में बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में जो उनके मर्द हैं वो दूसरे राज्यों में जाके अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, जिसमें उनको निस्बतन बेहतर मजदूरी मिल जाती है। तो काफी हद तक औरतें हमारे यहाँ कृषि में काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ आप देखिए कि इनहेरिटेंस लॉज भी अमेंड हुए, और उनमें ये कहा गया कि औरतें भी अब इनहेरिट कर सकती हैं जमीन को, कृषि की जमीन को, लेकिन कई राज्यों ने उसको भी लागू नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आज भी अगर किसी की मौत हो जाती है और उसकी लड़की की शादी हो चुकी है तो उसकी लड़की को वो जमीन नहीं मिलेगी
0: जी। ये एक बड़ा मसला है
1: जी।
0: जी हेलो
1: जी जी
0: जी अगला सवाल है मेरा सर, भारत के पास FCI जैसी एक विशाल खाद्य भंडारण और वितरण प्रणाली मौजूद है, क्या ब्रिक्स के अन्य देश भारत के इस बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से कुछ सीख सकते हैं ताकि वैश्विक स्तर पर जो जीरो हंगर की समस्या है उसको कम किया जा सके?
1: देखिए, ये बात सही है कि हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है
0: जी।
1: मगर ये कार्बोहाइड्रेट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है
0: जी।
1: हम प्रोटीन की या और न्यूट्रिएंट्स की फूड सिक्योरिटी अभी तक नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। और कई देश इसमें ऐसे हैं जिसमें इजिप्ट है, ईरान है, जहां कई तरह के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं उन देशों में भी। तो हमारे यहाँ जो ये FCI का रोल है वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, बल्कि वो प्रोक्योरमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो प्रोक्योरमेंट का रोल इजिप्ट वगैरह में इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास इतना उत्पादन नहीं है कि वो उस सरप्लस उत्पादन को प्रोक्योर करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन उनके यहाँ भी काफी बड़े प्रोग्राम चलते हैं जिसमें वो लोगों को मिसाल के तौर पर नान प्रोवाइड करते हैं और कुछ और खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब कई देशों में फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए देश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी इसके बारे में अक्सर अर्थशास्त्री लिखते रहते हैं कि बजाय इसके कि इतना बड़ा फूड कॉर्पोरेशन का सिस्टम आप चलाएं, प्रोक्योरमेंट करें, फिर हजारों किलोमीटर उसको ले जाएं गेहूं और चावल को, वहां फिर से स्टोर करें, उससे बेहतर ये है कि आप सीधा कैश ट्रांसफर करिए। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार तो प्रोवाइड नहीं करती है, मिसाल के तौर पर दालें
0: जी,
1: लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुद उन दालों को प्रोक्योर करता है उत्पादन करने वाले प्रदेशों से और उन दालों को उन राज्यों तक सप्लाई करता है जहां उसका उत्पादन नहीं होता है। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है जिसको मुझे लगता है कि ब्रिक्स के देश डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। और ब्राजील वगैरह में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेके काफी काम हुआ है, तो उसको भी हमें समझना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए।
0: सर, इस इंदौर के आज के सम्मेलन में आज पहले ही दिन भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, तो भारत और रूस, चूंकि रूस एक बड़ी शक्ति है और काफी बड़ा लंबा हमारे सहयोग भी रहा है भारत और रशिया का, तो इस ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं भारत और रशिया के बीच में आने वाले समय में?
1: देखिए, हम रूस से एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं
0: जी,
1: तो हमारे लिए रूस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सनफ्लावर ऑयल वहां से इम्पोर्ट करते हैं जी। तो और हम भी रूस को कई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और ज्यादा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह, हमारा एक्सपोर्ट रूस को बढ़ सकता है। तो ये दोनों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो इस पे डिस्कशन करें, कोई किसी डील तक पहुंचे। असल में पूरी दुनिया में जो ये जियो पॉलिटिक्स है, इसने दुनिया को इस तरह से बांट रखा है, हमको इस तरह से प्रेशराइज करता रहता है अमेरिका के, आप रूस से ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, तेल नहीं खरीदेंगे, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई हैं
0: जी। अगर हम खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की बात करें तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंसेज हैं जो कि कई सारे देशों के साथ मिलकर लिए जाते हैं, इनका क्या महत्व आपको लगता है?
1: देखिए, ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे कंट्रीज से बातचीत करने से कई चीजें बेहतर समझ में आती हैं, कई चीजें हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका फराहम कर सकती हैं। उन कंट्रीज को ये मालूम हो सकता है कि हमारा देश कई चीजों में कितना एडवांस हो चुका है, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज बहुत जल्दी जल्दी तेजी से ग्रो हो रही हैं, तो प्रोसेस फूड के प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के सम्मेलनों से ये मौका मिलता है दोनों जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि वो अपने देश की स्ट्रेंथ को किस तरीके से औरों को समझाएं और क्या मौके हो सकते हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन को इस तरह से बनाएं कि हमारे यहाँ जंग होने से भी वो डिस्टर्ब ना हो। अब आप देखिए कि ये जंग हो रही है जो इसराइल ने और अमेरिका ने करी है ईरान पे, इसकी वजह से पूरा जो हमारा बासमती चावल का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित है, ईरान इतना बड़ा हमारा इंपोर्टर था वो प्रभावित है। तो ये सब चीजें ना हो, हम समझते हैं कि ये अहम बैठक है
0: जी। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो यहाँ की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए इस स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन किस प्रकार से नए अवसर खोल सकते हैं, इस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, मध्य प्रदेश सोयाबीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है और वहाँ सोयाबीन की उत्पादकता 1 टन पर हेक्टेयर से भी मगर कम ही चल रही है, जबकि वो अर्जेंटीना में, ब्राजील में 3 टन पर हेक्टेयर है। वहां पर ये डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि क्या वजह, हालांकि वहां पर जो भी सोयाबीन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो हमारे जो मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट हैं वो ब्राजील और अर्जेंटीना से बात करें कि समझें कि उनके यहाँ नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन कहाँ होता है, उसकी क्या उत्पादकता है, उसकी क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो कई तरह की चीजें डिस्कस हो सकती हैं इस तरह के सम्मेलनों में। मक्का का भी उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है मगर वो इन देशों से काफी कम है, तो उसको भी समझने की जरूरत है कि क्या ऐसी तब्दीलियां लाई जाए कि मक्का का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ाया जा सके।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर। अब अगर हम इस पूरे ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही ऑर्गेनाइज की गई है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारी नई टेक्निक्स और इनोवेशंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेसिफिकली हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कई सारे इनोवेशन उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में किए हैं, तो उनके विजन को और भारत की जो कृषि का एक स्ट्रक्चर है जिसमें इनोवेशन भी बहुत कुछ हो रहा है, उन सबको किस प्रकार से आप देखते हैं?
1: नहीं, ये अच्छा है। देखिए, लगातार इनोवेशन से, साइंटिफिक डिस्कवरी से ही कृषि आगे बढ़ती है, तो हम समझते हैं कि हमारे देश में जितना कृषि में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको और बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि ऐसी वेराइटीज आए जो सूखे को रेजिस्ट कर सकें, बाढ़ को रेजिस्ट कर सकें। अब इस साल एल नीनो की वजह से सूखा पड़ने की संभावना है, जो वैरायटीज रिलीज हुई हैं पिछले 2-3 साल में वो किसानों तक पहुंचाई जाएं, तो ये काफी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जब कृषि मंत्री जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम सिंचाई का एरिया बढ़ाने, तो ये बहरहाल उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यहाँ भारत सरकार के स्तर पर भी इस तरह की चीजें जब वो करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हमारी उत्पादकता और बढ़ जाएगी।
2: इस चर्चा में अब हम रुख करते हैं अपने अगले एक्सपर्ट की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं
0: हमारे साथ मौजूद है श्वेता सहनी जी, जो कि एक कृषि अर्थशास्त्री हैं। श्वेता जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि एक कृषि अर्थशास्त्री के रूप में आप

0: बात को कैसे देखती है कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम किसान की आर्थिक स्थिति और उसकी रोजी रोटी में किस प्रकार से सुधार आएगा?
1: थैंक यू, आपने मुझे इस ये मौका दिया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ब्रिक्स या कोई भी एक जो ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, जब एक हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम अलग अलग देशों को इकट्ठा करते हैं, तो आइडियाज का, टेक्नोलॉजीज का एक आदान प्रदान का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है। कई बार बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं देशों के बीच में, वो भी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सॉल्व करे जाते हैं। तो अगर मैं एक किसान हूं और इस मीटिंग का मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाइम ऑफ द ईयर है जब ग्लोबली बहुत ज्यादा सप्लाई चेन डिसरप्टेड हैं, इस दौरान अगर हम ये मीटिंग करते हैं, ये वो ब्लॉक है जो G7 कंट्रीज, जो वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है, ये जो ब्रिक्स देशों का ब्लॉक है इसका GDP कवरेज उससे भी कहीं ज्यादा है। तो इस ब्लॉक के इकट्ठा होना एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। इंडिया इसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, वो बहुत ही बड़ा एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और मध्य प्रदेश में होल्ड करने का हमने ये पढ़ा है, मध्य प्रदेश कह रहा है कि 2026 फार्मर वेलफेयर ईयर है और ब्रिक्स मीटिंग को वहां होल्ड करने के लिए वी फील बिल्कुल सही लोकेशन भी चूज करी गई है। तो टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान, ट्रेड का फैसिलिटेशन होना, ये सारे फायदे लो हैंगिंग हैं और दिख रहे हैं अगर ये बातचीत अच्छी रही, जो बहुत उम्मीद है रहेगी एग्रीकल्चर के लेवल पे, तो फायदे आते दिख रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक है मैम। अगला सवाल है मेरा क्लाइमेट चेंज और मौसम के अनिश्चित मिजाज को लेकर, जिसके चलते खेती पर भारी आर्थिक चोट पहुंचती है। ब्रिक्स देश आर्थिक रूप से व्यावहारिक और क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु अनुकूल फूड सिस्टम बनाने के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हैं?
1: मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी, जो हमारे ब्रिक्स देश है वो प्लस इंडिया, इंडिया पीछे नहीं है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे सीड हो, चाहे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन हो, इस सारे के अंदर इंडिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो आदान प्रदान होगा, ये हम सिर्फ एज इंडियंस इनसे सीखेंगे नहीं, हम भी इनको अपना एक्सपीरियंस, बल्कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स का एक्सपीरियंस है, इनको बता पाएंगे। क्योंकि रशिया जैसे कंट्री फॉर एग्जाम्पल उनका लार्ज होल्डर है, लेकिन चाइना स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, तो हमारे पास भी बहुत सक्सेस स्टोरीज है इनके साथ शेयर करने के लिए। बट ये बिल्कुल सही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना, AI का यूज करना एडवाइजरीज बनाने के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाना। अब इन लोगों के पास GM क्रॉप्स हैं जो शायद हमारे देश में अभी दिख नहीं रही आती हुई, तो और क्या ही हम कर सकते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्लाइमेट रेजिलियंस के टूवर्ड्स, और इवन सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ क्लाइमेट का थ्रेट नहीं है, जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी है। तो इन दोनों नजरियों से ये ब्लॉक की मीटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है।
0: अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या है और क्या कुछ बड़ी भूमिका हो सकती है ब्रिक्स देशों के बीच इस कॉन्फ्रेंस को लेकर आगे आने वाले?
1: देखें, हमारे पास 145 मिलियन फार्मर्स हैं
0: जी,
1: इनका एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1 हेक्टेयर है। हमने एग्री स्टैक और अलग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPIs के थ्रू इन सब फार्मर्स को एक जगह एक डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रही है। इनके थ्रू हम इनको एडवाइजरीज भी भेजेंगे, इनसे हम इनपुट्स भी लेंगे। तो हमने एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली क्रिएट किया है। आज की डेट में अभी इसके फायदे दिख नहीं रहे हैं, बट आने वाले सालों में विस्तार भी आ रहा है, हमको दिखेगा। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI के समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम सारे देश एक दूसरे से सीख सकते हैं कि कैसे AI को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल सॉइल के अंदर हम किस टाइम पे पानी दें और कब ना दें। वो वैसी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है, इंडिया में भी करती है, बट वो स्केल नहीं कर रही है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। तो कैसे हम इसको इकोनोमाइज कर सकें, तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
0: बिल्कुल ठीक है मैम। इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर एक विशेष सत्र भी रखा गया है, और कृषि क्षेत्र में जेंडर इंक्लूजन की यदि हम बात करते हैं, तो आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का बदलाव जरूरी है और इस समिट से क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है?
1: देखें, जेंडर के अंदर हमारे पास अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखें, तो ज्यादातर जितनी लाइफ स्टॉक की एक्टिविटीज है वो वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड करती है, और हमारे यहाँ पे गाय और भैंस की जो मिल्क यील्ड है जनरली, जो पहली चीज तो देसी और कमर्शियल हाइब्रिड के बीच में देसी की तादाद बहुत ज्यादा है,

0: और एवरेज एनिमल की यील्ड बहुत कम है. तो हम लोग इस ब्रिक्स मीटिंग के जरिए लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज के अंदर एंड नॉट जस्ट डेयरी के अंदर बट बी कीपिंग के अंदर, फिश एक्वाकल्चर के अंदर बहुत कुछ आदान प्रदान हम सीख सकते हैं. कैसे ही एक वैल्यू चेन बनाई जाती है ताकि हम नेट कैसा ले, अगर हमने फिश को कैच कर लिया तो उसको कैसे सॉर्टिंग करें. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे इंडियन फार्मर मात खाता है और इन देशों के बहुत लर्निंग्स हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं. तो जेंडर के लिए, एलाइड एक्टिविटीज के लिए कैसे ही सॉर्टेड सीमन हम सब्सिडाइज कर सकते हैं, इन सारे नजरियों के लिए ब्रिक्स की मीटिंग हमको लगता है और एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत यूजफुल रहती है.
1: बिल्कुल ठीक है मैम. और निश्चित ही ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस है अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति कहीं ना कहीं करती हुई दिख भी रही है क्योंकि एक दिन हो चुका है और आज दूसरा सत्र है. मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैम आपसे. एफएओ के अनुसार जो आंकड़े हैं हमारे, दुनिया में लगभग 2 अरब से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और ब्रिक्स देश जो की दुनिया की लगभग आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी जीरो हंगर को हासिल करने के लिए कृषि उत्पादकता और बाजार लिंकेज को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है?
0: तो आप एक चीज देखें, जब हमारे पास एग्रीकल्चर होता है तो जो लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, ये तीन चीजें सबसे जरूरी होती हैं. तो हमारे पास जो लैंड है वो सीमित है और जिस रेट पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड खराब हो रहा है या खेती से बाहर जा रहा है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करने का एक्सेप्ट और हमें क्रॉप की यील्ड बढ़ानी ही पड़ेगी. सो क्रॉप के अंदर न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन हमको जरूरत पड़ेगी और ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे यील्ड, क्योंकि अगर हम कोई भी अपनी क्रॉप देखें, सोयाबीन देखें, डेयरी की यील्ड देखें, तो हम आधे पे लगभग बैठे हैं ग्लोबल एवरेज के. तो ये देश ऑफकोर्स जीएम के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ एक जरिया नहीं है, कई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है जो ये दूसरे देश देखते हैं. सो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे देश के लिए सेंट्रल रहेगी. लैंड एक बॉटलनेक बनेगा. तो ये जो आदान प्रदान ऑफ आइडियाज है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत यूजफुल रहता है कि कैसे हम सेम पीस ऑफ लैंड से उतनी वैल्यू जनरेट कर सके कि हम तकरीबन 1.4-1.5 बिलियन लोगों का पेट भी भर सके प्लस हम दुनिया में भी दे सकें. हमने सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा है, हमारे अपने चावल, हम अपनी 22 से 23 मिलियन टन हर साल चावल बाहर भेजते हैं. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ चावल है. कैसे हम इन वैल्यू चेन्स को डीपन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो उगता है और थोड़े सरप्लस में हम बाहर भेजें. तो ये आदान प्रदान नॉट जस्ट न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी बट इनकम्स ऑफ फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव रहेगा.
2: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि
1: हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत दास सर जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, काफी लंबे समय से एक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. सर आपसे मेरा सवाल है कि बदलते भू राजनीतिक हालातों और सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों को देखते हुए ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार में सहयोग को बढ़ाना इस वक्त कितना जरूरी हो गया है?
3: सर्वप्रथम अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपके साथ इस वार्तालाप में सम्मिलित होने से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. आपने जो सवाल पूछा है यह आज के हालात में बहुत ही प्रासंगिक है. विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है
1: जी,
3: खासकर अनाज के क्षेत्र में हो या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हो. तो जो ब्रिक्स के देश हैं, यदि उन पे हम अपनी निगाह दौड़ाएं तब हम यह पाएंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, ब्राजील हुआ, रशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये सब कृषि उत्पाद में काफी आगे हैं, काफी सक्षम हैं
1: जी.
3: इतना ही नहीं, इनमें से कुछ देश तो फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो फार्म मशीनरी है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं
1: जी.
3: लेकिन यह भी वास्तविकता है कि ब्रिक्स देशों के आपस में जो कृषि व्यापार है
1: जी,
3: उसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं, अवसर हैं, उनको पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है
1: जी.
3: और इसमें तरह तरह के कारण है इसके लिए. एक तो यह है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स हैं या खाद्य सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स हैं
1: जी,
3: इनमें समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है. फिर सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हुआ उसमें

0: भी काफी भिन्न तरीके के सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं, फिर जो बाजार की जानकारी है यह भी पर्याप्त तरीके से उपलब्ध नहीं है, फिर
1: जी
0: जो नियामक प्रक्रिया हुआ या पद्धति हुआ जिस

0: देश एक दूसरे के एसपीएस स्टैंडर्ड्स को रिकग्नाइज करें और फिर बाजार की जानकारी और उपलब्ध हो
1: जी,
0: तब इससे ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार में अवश्य बढ़ोतरी होगी। तो इस लिहाज से जो ब्रिक्स देशों की मीटिंग भारत की अध्यक्षता में चल रही है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट मैं समझता हूँ।
1: बिल्कुल ठीक है सर आपने। सर भारत इस बार जो ब्रिक्स की ये बैठक चल रही है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने 2021 की जो अपनी पिछली चेयरशिप है उसके नतीजों को आगे बढ़ाते हुए कृषि व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में क्या कुछ भूमिका अभी तक निभाई है और अब ये जो करंट मीटिंग चल रही है इसको लेकर क्या कुछ आप देखते हैं इसका भविष्य?
0: देखिए, हर एक वर्ष ये ब्रिक्स की मीटिंग होती है और कुछ कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनती है ब्रिक्स देशों में
1: जी।
0: और एक वर्ष से अगले वर्ष और उससे फिर अगले वर्ष में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है
1: जी।
0: और जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी 2021 में और अभी जो मुद्दे हैं ब्रिक्स देशों के सामने में उसमें काफी हद तक मैं समझता हूं कि समन्वय है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब 2021 की ब्रिक्स मीटिंग हुई थी भारत की अध्यक्षता में, उसमें यह तय किया गया था कि जो एक ये है ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म
1: जी,
0: उसको सुदृढ़ किया जाएगा। और इस बार की मीटिंग में यह जानकारी आ रही है कि कैसे और सुदृढ़ किया जाए, तो उसमें एक जो मुद्दा रहेगा जिसको कहते हैं नॉलेज टू एक्शन हब, मतलब सहयोग किया जाए ब्रिक्स देशों के अनुसंधान की संस्थाओं के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ, फिर जो एक्सटेंशन सिस्टम्स हैं अलग अलग ब्रिक्स देशों में, फिर जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, और इस टाइप के इस किस्म की सहयोग से यह उम्मीद की जा सकती है कि जो रिसर्च से जो ज्ञान आता है
1: जी,
0: उसको वास्तविक तौर पर किसान अपने खेत में कैसे इस्तेमाल कर सके। तो यह चीज, इस चीज की बातचीत हुई थी 2021 में और उसके अब कॉन्क्रीट नतीजे इस मीटिंग में आएंगे। एक और मैं उदाहरण देता हूं कि 2021 की मीटिंग में यह तय किया गया था कि ब्रिक्स देश जो इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कहते हैं एसपीएस स्टैंडर्ड्स, उनको ब्रिक्स देश हार्मोनाइज समन्वय लाने की कोशिश करेंगे आपस में
1: जी।
0: और इस बात को फिर से दोहराई जाएगी यह उम्मीद की जा सकती है और कुछ प्रैक्टिकल तरीके के उदाहरण के द्वारा यह बतलाया जा सकता है कि किस प्रकार समन्वय लाया जा सके अलग अलग ब्रिक्स देशों के एसपीएस स्टैंडर्ड्स में और उनके सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स में। तो यह कहना उचित होगा कि 2021 में जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी उनमें से कुछ मुद्दों पर इस मीटिंग में और आगे ले जाया जाएगा
1: जी। सर मेरा अगला सवाल है, आपकी जो हालिया पुस्तक है जिसमें आपने गैट और डब्ल्यूटीओ वार्ताओं की रणनीतियों पर चर्चा की है, ब्रिक्स देशों के बीच कृषि सब्सिडी, मार्केट एक्सेस और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए वैश्विक व्यापार मंचों पर किस प्रकार की आम सहमति बननी चाहिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं?
0: धन्यवाद मेरे पुस्तक का रेफरेंस लाने के लिए। जब हम देखते हैं कि विश्व व्यापार के निगोशिएशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कृषि निगोशिएशंस चले थे 2003 से 2008 के बीच में, तब उन निगोशिएशंस में एक कोएलिशन बनी थी कुछ देशों की
1: जी,
0: जिसके लीडरशिप में ब्राजील, हिंदुस्तान, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये सब थे और इन लोगों ने, इन देशों ने जब हाथ मिलाया तब विकसित देश की सब्सिडी पर काफी सहमति बन गई थी कि किस प्रकार इन सब्सिडीज को घटाया जा सकता है। लेकिन जब विकसित देशों ने पाया कि वो उनको कंसेशंस देना पड़ेगा तब वे इन वार्ताओं से अलग हट गए
1: जी।
0: लेकिन यह जानना जरूरी है कि जब ये देश जो कि ब्रिक्स के भी सदस्य थे और अभी भी हैं, जब

0: उन्होंने हाथ मिलाया
1: जी,
0: जब वे एक होकर उन्होंने निगोशिएट किया, तब जो विश्व के बड़े बड़े ताकत है, यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, उनकी एक न चली। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है कि यदि ब्रिक्स देश एक होकर निगोशिएट करें तब उनकी आपसी ताकत निगोशिएटिंग टेबल पर बहुत बढ़ जाती है, और यह एकमात्र तरीका है जिससे कि वो ट्रेड निगोशिएशंस में विकसित देशों के सामने अपनी बात सुदृढ़ तरीके से रख सकते हैं और अपनी बात विकसित देशों को मना भी सकते हैं। इसीलिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स देशों का, जिसमें विश्व व्यापार के निगोशिएशंस में वो एक राय लेकर एक आम सहमति बनाकर आगे बढ़ सकते हैं।
1: मेरा अगला सवाल है, इंदौर सम्मेलन के चार प्रमुख विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवाचार शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर कृषि तकनीकों के आदान प्रदान में आने वाली बौद्धिक संपदा आईपीआर या फिर व्यापार संबंधी अड़चनों को ब्रिक्स देश मिलकर कैसे सुलझा सकते हैं?
0: देखिए, जो कृषि क्षेत्र का भविष्य है
1: जी,
0: वो जैविक प्रौद्योगिकी से डिटरमिन होगा, जीनोमिक्स से डिटरमिन होगा, जीन एडिटिंग से डिटरमिन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिटरमिन होगा। तो इन सब चीजों के बारे में ब्रिक्स देश आपस में यदि सहमति बना सकें तब यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
1: जी बिल्कुल ठीक है सर, आपने निश्चित रूप से ब्रिक्स से कॉन्फ्रेंस अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होगी। इसी आशा के साथ आज हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। वाकई आज आप तीनों विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके ये साफ हो गया कि इंदौर का यह ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सिर्फ बैठकों का दौर नहीं बल्कि दुनिया की आधी आबादी के पेट भरने, हमारे अन्नदाताओं की आय बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने का एक महासंकल्प है। ब्रिक्स वाटिका में लगने वाले पौधे इस बात का प्रतीक है कि हम एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। श्री सिराज हुसैन जी, श्वेता सैनी जी और श्री अभिजीत दास जी, आप तीनों ने आज अपने बहुमूल्य समय और विचारों से हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को लाभान्वित किया, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, इंदौर की मालवी संस्कृति और मेहमान नवाजी के बीच चल रहे इस सम्मेलन से जो कुछ भी अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे खेतों और खलिहानों को समृद्ध करेगा। आज के इस विशेष चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन पर विशेष कार्यक्रम, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पहले में हिंदी में समाचार और फिर उसके बाद अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मिंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी जीएमएसएस जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिंचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो

घड़ी में 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:53 पर इन्हीं मीटर्स पर आपसे फिर भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।